惜别山，magar jan ummati，

0: क्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीयपरीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करणक्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखण्डतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1%तमो भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मंत्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्री शाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्री शाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सहापि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयं आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मंत्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत् सुरक्षा कार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत् सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार

0: गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and

0: लेवल छोड़ ऑफर्स देख।
1: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेंट।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
7: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
6: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
7: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट of Jammu and Kashmir.

0: बढ़ने के लिए चंद कदम उठाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और जब हम आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद यही होती है कि हम मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे।
1: जरूर पहुंच जाएंगे, और पहुंचने की कोशिश करना ही जिंदगी का नाम है।
0: देखिए, सबको साथ चलें तो मंजिल आसान हो जाती है। कुछ और भी बात होगी, लेकिन उससे पहले समीन तक आगाज में एक खूबसूरत सा नगमा हमने क्यों करके रखा है, जरूर पूछा देते हैं और उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं।

0: और इस नगमे में भी कुछ और इशारे थे, जैसे तन्हाई के, चुप के, खामोशी के। और ये सारे इशारे हमें जो कुछ बता रही हैं, जो कुछ बता रहे हैं, वो ये हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप तन्हा नहीं हैं।
1: और अकेले तन्हा हम रह भी नहीं सकते हैं, ये सोसाइटी इसीलिए बनी है। दपान दछुन अच्छु खोर सथस खोर अच्छु दछन सथस बकार लगान अकिया थे इकने इंसान का हिंते काम करे थन। जो काम हम करते हैं, बेशक हम जीनियस हो सकते हैं, बहुत ही टैलेंटेड हो सकते हैं, मगर कौन जोन कौन पान छुन इंसान सुकुनते लगान, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है, आसपास खामोशी तोड़ने वाला होना चाहिए। बात हम कर रहे थे कि हमने खामोशी जो है, खामोशी से बड़ी बड़ी कभी हमारे आसपास की दीवारें हो जाती हैं। हम दीवारें तो एक ही छत के नीचे बांट लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के दिलों के दरवाजे खोलना भूल जाते हैं कभी कभी। फुरकान, क्या पड़ोसी का मतलब सिर्फ हदूद का तायुन करना है या उन हदूद में मौजूद इंसान

0: खामोशी जो है, खामोशी से बड़ी बड़ी कभी हमारे आसपास की दीवारें हो जाती हैं। हम दीवारें तो एक ही छत के नीचे बांट लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के दिलों के दरवाजे खोलना भूल जाते हैं कभी कभी फुरकान। क्या पड़ोसी का मतलब सिर्फ हदूद का तायुन करना है या उन हदूद में मौजूद इंसानों के दुख सुख का हिस्सा बनना है? मसला ये है कि हमने फासलों को तो नाप लिया है, मगर इन फासलों के बीच में पुल बनाना छोड़ दिया। आज सुबह की ये पहली किरण हमें यही याद दिला रही है कि जैसे सूरज सबके लिए एक सा तुलू होता है, शायद इंसानी रिश्ते भी इसी तरह के होते हैं। अगर हम अपनी अना की दीवारें गिरा दें तो शायद पड़ोस सिर्फ एक पता ना रहे बल्कि एक खानदान बन जाए।
1: देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की और हमारे समय भी समझ गए होंगे कि हम पड़ोसियों पर बात कर रहे हैं और बात करेंगे हमसायों पर। और हमसाया जो है, देखिए लफ्ज इतना दिलचस्प है, ये दो लफ्ज का मुरक्कब है और जिसका मतलब होता है कि हम और साया। यानी हम और साया का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के बहुत ही करीब। यानी अगर हम बात करें तो हम यानी कि साया, और जब हम इस चीज़ पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि हम साया वो है जो हमारे सबसे करीब।
0: अपना साया कभी कभी अपना साया भी साथ छोड़ देता, लेकिन अगर हमसाये की बात करें तो हर वक्त इसकी ज़रूरत होती है। तो फिर आज इस दीवार को क्यों ना थोड़ा सा झुकाएं। और आप सब अभी शायद आज की चाय पी रहे हैं या कुछ लोग चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए आज की इस चाय के साथ इन बरसों की जमी हुई बर्फ पिघलाने का आगाज करते हैं। आइए ताल्लुकात की सुबह फिर से तुलू करते हैं। जिंदगी के सफर में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कोई दूर का मुसाफिर होता, कोई अजीज रिश्तेदार, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हमारी चौखट से जुड़ा है, जो हमारे दुख सुख का सबसे पहला गवाह है, हमारा पड़ोसी। पड़ोसी सिर्फ दीवारों का साझ ही नहीं होता, ये तो इंसानियत का वो इम्तहान है जिसमें हम रोजाना शरीक होते हैं।
1: देखिए, कहा जाता है कि आपका जो दायरा है इस हमसायगी का, इस ये जो पड़ोसी हमारे होते हैं, और अक्सर हमने सुना है कि इसका जो दायरा होता है आपके चारों तरफ से कम 40-40 गज तक होता है। यानी कि यूं अगर आप समझें कि एक तरफ से भी जाएं और दूसरी तरफ, यूं कहें कि चारों तरफ से अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आप घर में हों, कहीं रहते हों, आपके घर वाले, घर के आसपास रहने वाले आपके हमसाए हैं। लेकिन बात की जाए आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में भी, हम जब ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो हर तरफ से हमें हमसाया और उन लोगों से रابطہ पड़ता है, वास्ता पड़ता है जो हमारे साथ उठते बैठते हैं। देखिए, हम जब सफ़र कर रहे होते हैं और सफ़र में जो हमारा साथी होता है वह भी हमारा हमसाया होता है, और इसी तरह हर एक जगह, जब हम हमारी काम की जगह होती है या चलते फिरते जहाँ भी हम जाएं, हमारा हमसाया हर वक्त हमारे साथ होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक शख्स को नाम से या उसके काम से जाने कि यही हमारा हमसाया है, बल्कि आप जहाँ भी जाएं हर वक्त ये सोचते रहें कि या तो मैं किसी का हमसाया हूँ या मेरा कोई हमसाया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने फुरकान, लेकिन फिलहाल हम अपनी जो अपनी कम्युनिटी, अपने मोहल्ले की बात करेंगे, अपने आसपास के लोगों की बात करेंगे जिनकी हर वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है और जिनके हक के बारे में हमारे इस्लाम में भी काफ़ी ताकीद की गई है। और जिसके बारे में इतनी ताकीद की गई हो उसके साथ अगर हम बदसलूकी करते हैं तो समझ लीजिए खुद ही कि हम अपने खालिक को कितना नाराज़ कर सकते हैं। जो हमारे हमसाए हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इनके फ़राइज है, हमारे मतलब जो पड़ोसी है, पड़ोसियों के हकूक है, वो क्या है? ये कोई बहुत मुश्किल फ़लसफ़ा नहीं है फुरकान, बहुत सादा सी इंसानियत है। तकलीफ़ से इज्तनाब करें, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका कूड़ा करकट करकट या आपकी आवाज़, किसी भी चीज़ से पड़ोसी को अज़ियत नहीं पहुँचनी चाहिए। और आजकल हम सब यही करते हैं, जब भी आए रात के टाइम में, अगर घर से बाहर होंगे, 1 बजे रात को अगर हम घर आएंगे तो इतना शोर शराबा मचाते हैं, दरवाजे गेट इतनी ज़ोर से खोलते हैं, गाड़ी के हॉर्न्स बजाते हैं कि महलस मजे हम बाकी लोग ऐसे हमसाए छासा तुम छासा शुंगित कहाँ छासा बीमार बच छासा कुछ एग्जाम आसा या नींद का वक्त होता है तम भी छने से अमे ख्याल था वहाँ कहीं। अगर पड़ोसी बीमार हो तो तैमारदारी करें, ज़रूरी है। अगर वो किसी मुश्किल में है तो उसका साथ दें, उसे सिर्फ तब ना याद करें जब आपको उसकी ज़रूरत हो। और पड़ोसी के घर की पर्दादारी सबसे अहम है, इसके घर के दीवारों, इसके मामलात और इसकी निजी जिंदगी का एहतराम हम सब का फ़र्ज है। और तोहफे तहाइफ का बदला, तबादला और खंदा पेशानी से मिलना, ये वो छोटी छोटी खुशबुएं हैं फुरकान जो रिश्तों को तरोताज़ा रखती हैं।
1: बिल्कुल सही, और جب تک

0: अपने रिश्तों को, अपने पड़ोसियों को उन रिश्तों की तरह ना निभाएं जिनसे हमारी ज़िंदगी समझ रही हो। आप देखिए, कभी कभी आपको अपना जो पड़ोसी होता है वो आपको ऐसी बात बता देता है या आपकी ऐसी रहनुमाई कर देता है जो शायद आपको कोई और उस्ताद कर सकता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि आपके घर के साथ जो घर है और आपके कंधे के साथ जो कंधा है, वो आपका आईना है और वो आपका राजदार भी है, वो आपका आईना भी है और वो आपको ज़िंदगी चलाने में मदद भी करता है। और आप उसको ऐसा कैसे पहुंचा सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी के हर कदम पर आपका साथ दे रहा हो और आपके अच्छे में भी और आपके बुरे में भी हर वक्त साथ होता है और हर वक्त वो इस कोशिश में रहता है कि आपकी तकलीफ़ मेरी अपनी तकलीफ़ है और वो ये ना चाहे कि आप मेरे हमसाये को कोई तकलीफ़ हो और मैं खुशियाँ मनाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। इंसानियत का जो ये फ़लसफ़ा है, ये एक ऐसा फलसफा है जिसको साथ चले तो जिंदगी खूबसूरत है।
1: होना तो वैसे यही चाहिए था और होता भी यही रहा है फुरकान, लेकिन आजकल की डेट में अगर देखें तो ये सारा जो ये जो तस्वीर है सारी, इसका रुख पलट चुका है। आज हमें पूछना पड़ेगा खुद से, क्या हम वाकई एक अच्छे पड़ोसी हैं? आज की इस मशीनी जिंदगी में हम अपने घरों में तो कैद हो गए, लेकिन हम अपने साथ रहने वाले इंसानों से दूर भी हो गए हैं। हम ये भूल गए कि अगर रात को हमारे घर में चूल्हा ना जले तो सबसे पहले दस्तक पड़ोसी देता है। आए आज खुद से एक सवाल करें, क्या मेरी वजह से मेरे पड़ोसी को कभी दुख पहुंचा? क्या मेरी खामोशी मेरी बेहसी तो नहीं बन गई है? ये सारे सवाल हमें खुद से पूछ लेने चाहिए।
0: देखिए, दिलचस्प सवालात हैं और ऐसे सवाल अपने आप से पूछे तो ज़िंदगी यकीनन खूबसूरत बनेगी।

0: जैसमीन पाम सुबह की नशात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियोज से। मैं हूं फुरकान मजीद और आज की नशात में मेरे साथ हैं
1: तस्लीम।
0: तस्लीम, बात हो रही है हमसायों पर, पड़ोसियों की बात हो रही है। जब हम पड़ोसी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि ये वो शख्स है या ये वो घर है जो हमारे बहुत करीब है।
1: जी, कहते हैं कि हमसाया का घर रोशन रहे तो खैर है, अपनी दयारे दिल में इखलाक के गुलाब खिलते हैं। आज के दौर में पड़ोसियों के दरमियान बढ़ती हुई दूरी और तर के ताल्लुकात ने तो हमारे मुआशराती ढांचे को अंदर से खोखला कर दिया है फुरकान, और इसके असरात सिर्फ जाती सतह तक महदूद नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी खामोश बहरान से गुजर रही है। अगर देखें तो आज देखने में आया है अजनबियत का जो एहसास है, लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स जो है वो देखने में आ रहा है। पहले ज़माने में पड़ोसियों का घर जो था दूसरा घर समझा जाता था, और आज सूरत हाल ये है कि लोग अपने ही मोहल्ले में अजनबियों की तरह रह रहे हैं। और असर इसका यह है कि जब हम अपने साथ रहने वाले इंसानों को नहीं जानते तो हम में समाजी बेगानगी यानी सोशल एलिनेशन पैदा हो जाती है। इससे इंसान तन्हाई का शिकार होता है फुरकान, और नफसियाती तौर पर खुद को माशरे से कटा हुआ महसूस करने लगता है। एंड आई होप कि जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे उनको ये बिल्कुल महसूस होता होगा कि ऐसा हो रहा है हमारे आसपास। हिफाजती हिसार का खात्मा हो चुका है, रोजन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। पड़ोसी किसी भी इलाके का पहला सिक्योरिटी गार्ड होता है। आज जब हम एक दूसरे से ताल्लुक तोड़ चुके हैं, लातअल्लुक हो चुके हैं, तो किसी के घर में चोरी हो जाए या कोई हंगामी सूरत हाल पेश आए तो पड़ोसियों को खबर तक नहीं होती, जिसका असर ये हुआ कि अदम तहफ़ का एहसास जो है वो बढ़ गया है। जब हमें मालूम नहीं होता कि हमारे साथ कौन रह रहा है तो हम हर वक्त एक गैर यकीनी और खौफ के माहौल में रहते हैं फुरकान।
0: बिल्कुल सही, देखिए ज़रूरी होता है इंसान को कि वो देखे कि उसके आसपास कौन है और किस तरह रह रहा है। और यकीन माने कि जब आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो किस हाल में हैं और उनकी खबर पुरसी के लिए हमेशा उतावले रहते हैं, और उससे आपकी ज़िंदगी में जो रोशन किरणें पड़ती हैं वो आप महसूस करते हैं। जब आप किसी से आप हाल चाल पूछते हैं तो खुद को भी खुशी मिलती है कि मेरा भी किसी ने हाल चाल पूछा। यानी

0: आप अपने हमसाये की बात करते हैं, ये वो हमसाया है जो आपकी सिर्फ गम में साथ नहीं होता, खुशी में साथ नहीं होता, बल्कि आपके जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में आपको देख रहा होता है। और इसका साथ देना यकीनन हम सब पे फर्ज है, और जहाँ तक दूरियों की कमी है उन दूरियों को मिटाने की ज़रूरत है। दूरियाँ मिट जाएंगे तो हम एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो ये माशरा खूबसूरत हो जाएगा।
1: पड़ोसियों के ताल्लुकात में दरारें इसलिए भी पड़ रही है फुरकान, क्योंकि हमने जो बर्दाश्त है ना, टॉलरेंस का मादा जो है वो हमने एक्चुअली खो दिया है, जिसका असर ये हुआ कि माशरे में अदम बर्दाश्त का ग्राफ ऊपर जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, अदालतों के चक्कर, थानों तक रसाई अब पड़ोसियों की आम कहानियां बन चुकी हैं। अगर पहले ज़माने में देखें तो ये सब कहीं नहीं था, इसका नामो निशान तक नहीं था। इससे माशरे का जो मिजाज है सख्त और जारहाना हो गया है। और अगर हम देखें जज्बाती व नफ्सियाती तन्हाई इंसान को एक समाजी हैवान भी कहा गया है, इसलिए क्योंकि एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इज़न में गुड़ने थी वो उनकी दशनस अथश खोरे अथश हमेश जरूरत पे वहाँ खोरे अथश हमेश दशनस अथ जरूरत पेवान। तो एक समाज में रहते हुए इससे खुशी और गम बांटने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है। जब हम पड़ोसियों से कट जाते हैं तो हमारे पास अपने जज्बात शेयर करने के लिए कोई करीबी जरिया नहीं बचता, और इसी से जहनी दबाव यानी स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे मसाइल में इजाफा हुआ है। और आज आप देखेंगे कि कितना मतलब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहते हैं, कितने डिप्रेशन के मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, और हम अब अपने दुखों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करके हल तलाश करते रहते, जबकि हकीकी सहारा देने वाले हाथ हमारे बराबर के घर में मौजूद होते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं।
0: देखिए आपने सही बात की, और बात टॉलरेंस की है तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना है, आपने दूसरों को समझना है, अपने आप को समझना है कि अगर आप किसी माशरे में रह रहे हैं तो आप ताल्लुक मुनक़ता करके नहीं रह सकते। आपके ताल्लुकात आपके हमसाये से हों, आपके ताल्लुकात अपने आसपास के लोगों के साथ हों, तो फिर आपको चाहे सोशल मीडिया हो या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। और आजकल के इस दौर में भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा खुशहाल वो घराने हैं और सबसे ज़्यादा खुशहाल वो लोग होते हैं जिनके आसपास मशीनों के अलावा इंसान भी रहते हैं और जिनके इंसानों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और एक अच्छा इंसान वही है जिसके ताल्लुकात दूसरों के साथ अच्छे हों, वो खुद को भी परखता है और दूसरों को भी परखता है, और इससे एक दूसरे की इस्लाह होती है, और फिर यही इस्लाह उनकी ज़िंदगी को संवार देती है। वह ज़रूरत इस बात की है कि आपस की दूरियों को मिटाने के लिए कि हमने अपने ताल्लुकात इस तरह उस्तवार करने हैं ताकि हम अपना भी और अपने हमसायों का भी ख्याल रख पाएं।
1: वैसे पड़ोसी का हक अदा करना तो इंसानियत का इम्तहान था, जब ये इम्तहान ख़त्म हो गया तो इसके नतीजे में माशरे से एहसास ख़त्म हो गया। तो जब तो ऐसी याद मुनकिस तेज होती हुई छाँ फरकान दूर दराज इलाकन मस के हमसाय तो हमसाय सुना दवारी आग नसमस, और ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चलता है कि किम सिंह घर किम सिंह मकान वल सुन कुछ आंगन तो कूता छो। तो ऐसे होता था ना पहले ज़माने में, कोई दीवार नहीं होती थी, कहाँ दोस्त उस न आसान, बल्कि उस आसान अकिस हाथ उस पर सोरी बाग सोरी आंगन यल तो सारे घर के मतलब सारी घर वाल ये तह घर यीत से बस्ती आसान तम फ्रिक्वेंटली अक सुन यवान गसान सीन पियों तो आसान जरूरत तम खतर गसान इवन इनफैक्ट मैं बूझमत कि अगर पलव ते आसान कसे आसान नई पलव तमिस उस आसान सालस गसन या कुन जाय गसन सो उस गसान जान पहमत कसे हमसाय से निश तमिस उम्मीद उस आसान के निश आसे जान का लिबास तो उनसे वो ले लेते थे, वो लेके अपनी पार्टीज़ वगैरह में जाते थे, और ये तसव्वुर ही उसने कि मैंने इसको दे दिया या मैं इससे क्यों लूँगा, कोई ईगो भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एक अपनापन, एक अपना रिश्ता था। समझ में नहीं आता वो रिश्ता कहाँ गया आखिर।
0: तो ये ज़बरदस्त कहा, विच कशीर मज उस रिवायत ये अथरोट करान, और ये रिवायत सान ये कशीर मज ये ज़्यादा आम जे थज कादर मज ते हमसाय पानवन अख सुन साथ दिवान या खांदरन खांदरन खुंदरन पेट अख एक सुन गसान अख किस अथरोट ते करान तो अख किस पोशान करान ते अम सत क्या उस गसान कि उस सनस हमसाय सुन हक सत उस अदा गसान और अम सत उस यीत सबदान कि पानवन उस मोहब्बत ये माय ते मिलसार यु सु फलसफ छु सत उस समझ वा और अम सत उस ऐसे पानवन ये माय बढ़त पत उस यही इस पन्न नवन हालन ते हिचनावान ब्रोंट ब्रोंट पकनावान तवे उस शायद दसन ते

समीन शब के 9:30 पर कश्मीरी ड्रामा समाप्त करें बदर नतापस। तहरीर रहीम रहबर। शब के 10 गीत बड़ी कहानी समाप्त करें। मौजू है आग और धुआं। तहरीर बालराज। मेजबान है रशीद निजामी। समीन सेहत से मुतालिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समाप्त करें सुबह 8:45 पर सेहत बदन। मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां नशर होंगी सुबह 9:00। कश्मीरी मौसीकी समाप्त करें सुबह 9:30 पर। समीन प्रोग्राम सूफी सदा नशर होता है सुबह 10:00। प्रोग्राम सूफी शायर मोमिन साहब से मुतालिक है। तहरीर निशात अंसारी।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और

0: असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार

0: इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
1: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में

0: दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं।
3: पयामे सुबह,
4: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
3: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
4: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
3: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
4: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
3: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
2: जैसमीन, पयाम सुबह की नशियात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियो से। दोबारा आपका खैर मकदम। ये वक्त है पयाम सुबह की नशियात में और कुछ आपसे साझा करने की। मैं हूँ आपका मेजबान फुरकान मजीद और मेरे साथ है
5: तस्लीम अख्तर। फुरकान, बात करेंगे तारीख के हवाले से आज के दिन की।
2: बिल्कुल सही, और ये वक्त है तारीख के हवालों का। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में अपने सामीन से ये बात शेयर करते हैं कि 1534 को आज ही के रोज़ यानी कि 13 जुलाई को ओटोमन फौज ने फारस यानी पर्शिया में तबरेज पर कब्जा किया।
5: और आज ही के दिन यानी 13 जुलाई 1645 में एलेक्से रोमानोव अपने वालिद माइकल की जगह रूस के हुक्मरान बने।
2: आज ही के रोज 1771 में बरतानवे यानी ब्रिटेन के मशहूर जेम्स कुक की जमीन के जुनूबी निसफ कर कुर्रा यानी

0: जैसमीन पैम सुबह की नशियात आप आकाशवाणी सभी नगर के स्टूडियो से सुन रहे हैं और इस वक्त तारीख के हवाले हम दे रहे हैं। तो आइए 1930 की बात करते हैं। 13 जुलाई 1930 की बात अगर करें तो पहला फीफा वर्ल्ड कप यूरुग्वे में शुरू हुआ।
1: और आज ही के दिन 1932 में हिंदी फिल्मों की मारूफ अदाकारा बीना रॉय का जन्म हुआ।
0: 1942 को आज ही के रोज हिंदी और अंग्रेजी के जदीद अफसान और नावल निगार सुनीता जैन की पैदाइश भी हुई।
1: और 1945 में आज ही के दिन पहला न्यूक्लियाई बम धमाका न्यू मैक्सिको में किया गया।
0: 1962 में अमेरिका में यानी अमेरिका ने नेवाडा में न्यूक्लियाई तजुर्बा टेस्ट भी किया।
1: और 1974 में आज ही के दिन हेरिंग्ले में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला एक रोजा क्रिकेट मैच यानी वन डे इंटरनेशनल मैच हुआ।
0: समीर वहीं दूसरी जन्म 1977 में इंडोनेशिया में कश्ती हादसे में 77 लोगों की मौत हुई।
1: और 2000 में आज ही के दिन फिजी में महेंद्र चौधरी समेत 18 कैदी रिहा हुए।
0: समीर सन 2004 में रूसी सदर पुतिन ने साइबेरिया और मुल्क के मशरकी बाईं यानी फार ईस्ट के इलाकों की तरक्की के लिए हिंदुस्तान ने इंडिया के साथ मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया।
1: और 13 जुलाई यानी आज ही के दिन 2006 में न्यूक्लियाई बम बनाने से मुतलक ईरान का मामला अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सुपुर्द कर दिया गया।
0: 2011 में आज ही के रोज मुल्क के मालियाती दारुलहुकूमत यानी मुंबई के जवेरी बाजार और ओपेरा हाउस और दादर में बम धमाकों में 26 अफराद हलाक और 130 जख्मी हुए।
1: 2013 में आज ही के दिन हिंदुस्तानी खातून मुसन्निफा शर्मिला रेगे का इंतकाल हुआ।
0: 2014 में आज ही के रोज बैनुल अक़वामी स्टेशन यानी बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा कार्गो रॉकेट ऑर्बिटल यानी साइंस कॉर्प ऑर्बिटल साइंस कॉर्प लॉन्च किया गया।
1: और आज ही के दिन 2014 में अमरीकी सदर बाराक ओबामा के मुआखजे के लिए सियासी मुखालिफिन की तजवीज को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी ने मुस्तरद कर दिया।
0: समय और आखिर पर ये तारीख हवाला कि 2016 में आज ही के रोज बर्तानिया की कंजर्वेटिव पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट ने वजीर अजम थेरेसा मे को मुंतखब किया। समय ये थे तारीख के हवाले जो हमने आप तक पहुँचाए।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कवानीन मंजूर किए थे वो रियासत में आज से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कवानीन में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक कानून 2026 के तहत समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कोई शख्स या वो शख्स जो मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो सकता हो उसे रोकथाम के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह के किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। रियासती सरकार ने कहा है कि इस नए कानून से समाज मुखालिफ सरगर्मियों, फसादात, पुलिस अमले पर हमलों और मुनज्जम जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वज़ीर-ए-आला सुविंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि मुजाहिरों के नाम पर तशद्दुद

0: या अवामी नज़्मो नस्क में रखना अंदाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि नया कानून खवातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैनुल अक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैनुल अक्वामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट।
0: तबीयात के 56वें बैन अल-अक़वामी ओलंपियाड में इन नौजवान माहिरीन तबीयात ने इस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तलाई तमगा जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कंशिक जैन, इंदौर के रिधर्श आनंद बंदाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सूर्या और अहमदाबाद के सावित्र जोशी। इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जुनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाज़ा होता है, जिसकी क़्यादत साइंसी तालीम के होमी भाभा मरकज़ ने की, जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज़ है। सोमिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहिरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीकारों का पहला बैन अल-अक़वामी मुकाबला और समिट भी मुनक़िद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद होगी। इस बावक़ार आलमी फोरम में, जिसकी मेज़बानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है, आला शख्सियतें शिरकत करेंगी, जिसमें वजीर आला भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
0: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज करेंगे, जिसमें मसनू जहानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबोरेटरी का भी आगाज करेंगे, जो मौके वारदात पर शवाहिद बरवक्त इकट्ठा करने की सलाहियत की हामिल है। इस तकरीब की खास बात यह है कि आला तकनीक से मुतालिक नुमाइश भी, जिसमें गूगल समेत दुनिया के 30 से ज्यादा बड़े मुल्कों के जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी शामिल हैं। वजीर दाखिला दोपहर बाद सेकार से समृद्धि का खाका पेश करेंगे। वो धीगम का दौरा करेंगे और अमृत महोत्सव तकरीबात के दौरान सब्जियों के एक नए तामीर शुदा APMC अहाते को अवाम के लिए वक्फ करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज सुपहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। वो उन्नाव में 49 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का मुआयना करेंगे। भारत की दूसरी सबसे तवील कॉरिडोर के साथ 63 किलोमीटर 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है, जिसे ऑटोमेटिक और जदीद मशीन और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी तरक्की का तीसरा इजलास MPTech ग्रोथ कॉन्क्लेव स्वयं मुनक़िद किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मुकम्मल इजलास में असल तवज्जो सलाहियत के आलमी मरकजों, डेटा मरकजों और सेमीकंडक्टर शोबे के फरोग पर मरकूज की जाएगी। डॉक्टर यादव टेक्नोलॉजी पर मबनी सनअती तरक्की से मुतालिक रियासती सरकार के खाके की भी जानकारी देंगे। वो सरमायाकारी और नए प्रोजेक्टों पर बातचीत के लिए सरकर्दा सनअतकारों में से हरेक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस इजलास में भारत और बैरूनी मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदे, सरमायाकार, स्टार्टअप्स, सनअती इदारे और तालीमी इदारे यकजा होंगे। बिहार में आज हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सियाहती खिदमात शुरू की जा रही है। वजीराला सम्राट चौधरी पटना से इस स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के पहले मरहले के तहत जिन मकामात को शामिल किया गया है, उनमें मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले में मां मंदेश्वरी और नालंदा जिले में राजगीर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
0: सियात और शहरी हवाबाजी के महकमे के जरिए ये

0: टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1-800-117-800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। ये इजलास इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान माली मामलात पर गौर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तकरीबन 8 तरमीमी बिलों का भी ऐलान करेगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अमृत महोत्सव के दौरान सब्जी के नए सबयार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान जनाब शाह एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे और APMC के अमृत महोत्सव के मौके पर तैयार की गई एक यादगारी किताब का इजरा करेंगे। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी का कल इंतकाल हो गया था। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा आज कोई सरकारी तकरीब मुनक़द नहीं की जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में इस खबर को अहमियत के साथ सफाए अव्वल पर शाया किया है कि ईरान के पासदाना ने इनकलाब के इंतबाह के बावजूद अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाज़ों के लिए खुला रहेगा जो कानूनी तौर पर यहाँ से गुजरना चाहते हैं। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, अम्मान के साहिल पर तिजारती जहाज पर हमला। वजारत खारजा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कशीदगी को कम किया जाए और सिफारती बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाए।
0: आखिर में खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असम्बली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान हमले के मॉड्यूल निज़ाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैनुल अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2-3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज़्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये था आकाशवाणी श्रीनगर सामने मतलब 8:05 सपित पेश खदमत स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन।
3: سامعین پیش خدمت چھ سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تم واتن ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیفکو پلازا اپوزٹ بس سٹینڈ بٹمالو سری نگر یہ تمام دادن تسلی بخش علاج سپدان ڈسک یا پائلز یا استن پروسٹیٹ ان دادن آپریشن ورائے خالص دواب ستی شفا ملان فون
2: 7051 5487 88 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحت بدن پروگرام ہے آج دس خدمت مز حاضر بہ چون میزبان رشید نظامی ویسے ٹھیک پہ اللہ تعالیٰ تھی تھی سارے خوش تو خوشحال آج ڈاکٹر صاحب سن اسٹوڈیوس مجھ تشریف تھے آج ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر بٹمالو سری نگر ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب تشریف تھے فیروز خرم
4: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب آج اس موضوع زورمت یہ بڑے دلچسپ موضوع ام لحاظ امی شکایت مز زیادہ سو زن گئی زن اس وچان وائٹمن یت مزن وائٹمن B12 بی ون تو بی وائٹمن ڈی تو بیاک اک چیز اک یت ٹی ایس ایچ ونان ات سرسی پہ سپد آج کت مگر شروعات مز کر بہت تھائرائڈی چی کت یم سات یہ ٹی ایس ایچ ٹیسٹ یوزن یم سات ات مز ہیر پھیر آسان دپان ڈاکٹر امس ہسا تھائرائڈ ات تھائرائڈس متعلق ونتو گڈنیت اس یہ کیا بیمار
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نظامی صاحب چونکہ اس تھائرائڈ کت تھی کران یہ امہ برو تس ڈسکس کورمت دراصل میون از ون غرض و غایت بدل اخ چیز گڑے ونو تھائیڈ گو سہ کہ ٹی ایس ایچ لیول اگر زیادہ

0: एक्सेस रोड लेवल्स विजिटर्स स्ट्रैन एंड सोनामर्ग।
1: कतर ने समंदरी सरगर्मियां गैर मुआयना मुद्दत तक मुअत्तल कर दी, ईरानी हमलों की शदीद मुज़म्मत।
0: पुलिस इंटेंसिफाई विजिलेंस आफ्टर क्लाउड बर्स्ट। एक और सुर्खी है अंग्रेजी अखबार की, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस इनवाइट्स फिल्म एंट्रीज फॉर IFFJK 2026 फेस्टिवल टू शोकेस यूनिक हेरिटेज ट्रेडिशंस लैंडस्केप्स कल्चरल एथोस ऑफ J&K।
1: दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई मुतासिर होने और कीमतों में उछाल आने का फिर एक बार खतरा।
0: लद्दाख गेट 17 न्यू तहसील्स टोटल 32 ले 5 करगिल 7 चंगथंग 4 नोब्रा 6 जंस्कार 4 और एंड शैम 5 ड्रास 1।
1: आबनाए हुर्मुज में फिर कशीदगी, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, दो ईरानी फौजी मारे गए।
0: यात्रा कंटिन्यूस पीसफुली डिस्पाइट चैलेंजिंग वेदर।
1: समीन एक अखबार की सुर्खी है, अक्वाम मुतहदा के बाहर चीनी नस्ली एतिहाद कानून के खिलाफ तिब्बती कारकुनों का एहतजाज।
0: 22 क्लाउड बर्स्ट इन 42 डेज इज जेएन के वेदर टर्निंग मोर वायलेंट 15 रिपोर्टेड इन जम्मू रीजन 8 इन कश्मीर पहलगाम इंसिडेंट वेक अप कॉल एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट्स कॉल फॉर स्ट्रिक्ट लैंड यूज प्लानिंग रेगुलेशन।
1: समीन आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 92% आबादी जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर कैंसर से मुतासिर होगी।
0: हमारे उर्दू अखबार के हमारे यहाँ छपने वाले एक उर्दू अखबार की एक और सुर्खी आप तक पहुँचाते हैं, आबी वसाइल के शोबे में मरकज और रियासतों के दरमियान हम आहंगे, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के आबी वसाइल के महकमों के सेक्रेटरियों की कॉन्फ्रेंस आज होगी।
1: आलमी जौहरी अमन का रास्ता अमरीकी एहतियातियों के हथियारों के खात्मे से ही मुमकिन है, शुमाली कोरिया।
0: बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज, शजरकारी मुहिम अब माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की पर मरकूज, एक मुल्क गिर अवामी तहरीक बन चुकी है अमित शाह।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मेलबोर्न दौरे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत, तआवुन के नए बाब खुल गए।
0: नूरबाग कंबरवारी सड़क की खस्ताहाली हादसात का मौज पाइन, शहर में सड़कों की बेहतरी का काम मरहलावार जारी हुकाम।
1: चीन के पैसिफिक मिसाइल लॉन्च ने इलाकाई खतरे की घंटी बजा दी।
0: गैर कानूनी कानकुनी गांधरबल में 5 ट्रक पकड़े गए।
1: चीन की नायाब मादनियात की दौड़ से दरियाए मैकॉनिंग आलूदा, जनूबी मशरक एशिया के लिए संगीन खतरा। समीन ये थी मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीम पायम सुबह की नशियात जारी है, मैं फुरकान मजीद और मेरे साथ तस्लीमा है, लेकिन यहाँ रुकते हैं
0: गजल के लिए।

0: Пяме и Суб.
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
0: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियत से बात,
1: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगू रोज सिर्फ आपके लिए।
0: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
0: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
2: यासमीन पयाम सुबह की नशियात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियोज से। मैं हूं फुरकान मजीद और मेरे साथ हैं
3: तस्लीमा अख्तर।
2: तस्लीमा, हम अपने सामीन के साथ रूबरू हो रहे हैं माइक्रोफोन के जरिए।
3: जी बिल्कुल,
2: जदीद टेक्नोलॉजी का दौर चारों तरफ है, लेकिन एक खास बात आज की तारीख के हवाले से है, और वो भी रेडियो से मुतल्लिक है।
3: बिल्कुल,
2: यानी
3: आज का खास दिन आप अपने सामिन के साथ शेयर कीजिए।
2: ओके,
3: मैं बता देता। के हवाले से हम बात करने वाले हैं,
2: बात करने वाले हैं आज की इस तारीखी दिन के हवाले से। वो इस तरह कि आज का जो दिन है, जब टेक्नोलॉजी के इस दौरे में हम किसी भी चीज़ की ईजाद करते हैं और फिर उस ईजाद को हम अपने नाम करते हैं, उस ईजाद की एक्सेप्टेंस को या उस ईजाद को मनवाने के लिए हमने पूरी दुनिया में एक पेटेंट यानी एक तरीक़ेकार जो है वाजा करना होता है। तो आज के दिन ये तारीखी कारनामा हुआ, और मिला भी किस शख्स को जिनका नाम था
3: गैलिलियो मार्कोनी। 13 जुलाई 1897 को मार्कोनी को अमेरिकी पेटेंट नंबर 586,193 दिया गया, जिसका अनुमान वायरलेस टेलीग्राफिक निज़ाम के लिए बेहतरी इम्प्रूवमेंट इन अप्रोप्रिएटस फॉर वायरलेस टेलीग्राफी।
2: ये छोटी सी जानकारी हमने आप तक शेयर की, और आपको बताना चाहेंगे कि रेडियो पर हम बात कर रहे हैं और रेडियो पर बात होती रहेगी। पयाम सुबह की ये नशरियात भी जारी रहेगी, मजीद भी बात होगी, लेकिन अभी 9:20 हो रहे हैं, ये वक्फा हो रहा है यानी ये वक्त है खबरों का। आइए पहले खबरें सुनते हैं, पहले कश्मीरी में, उसके फौरन बाद उर्दू में।
4: आदाब, आकाशवाणी श्रीनगर 9:02 सपद खुर्शीद अहमद बोजनाव खबर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत भारत सारे खुद बोड़ ताकत अमिच अजीम रूहानी सायसी तो सकाफती शनाख्त, तो वो यह अजीम तहजीबी वरासत जम्मू कश्मीर के नौजवान खुद इनसारी तो यूटी हिंद तमीर बापत वत हावक बनान वक् आमुत। तम लाल दैद लिटरेचर अवार्ड तो डॉक्टर वैदी तमन सस्नीफ लाल दैद दि मदर आफ कश्मीर च रस्म रोनमई हिज तकरीब खिताब करान। तमो वो अत मौक पे जानव असलाफो सायंस तो रूहानी कदर मं तवजुन कायम कर सबित कर्मुत हिंदुस्तान च तमीर तरक्की बापत सायंसदानन तो रूहानी पेशवान जरूरत। मनोज सिन्हा वोन नौजवान पन्नस तहजीबस सोड़ तो तिम मकसद सान सठा सोचनस कुन मोल फिर अदीबन जिम्मेदारी।
5: एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवित्री ललित के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सदियों पहले रचे गए ललित के वाक आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते। डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललदेव को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है।
4: तकरीब में उत्तराखंड के सबक वजीर आला तीरथ सिंह रावत, पद्मश्री डॉक्टर एस पी वर्मा तो कैचो मुमताज शख्सियतों अलावा पुलिस तो सिविल इंतजामी अफसर तौजूद। उमूरी नौजवान तो खेल कूद मरकजी वजारत मेरा भारत युवा दस मुलगीर मुहिम नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत के दोम मरल आगाज कर्मुत। अत मुहिमें तहत किन त्रेन सुथरन पे मुकाबल मनकद कर अंदर 15-30 वहर नौजवान हिस्सा नित हकन। अत मुहिमें तहत किन गोड़ जिला सुथरस पे पत रियाती तो अखरस पे कौमी सुथर।

0: छोटे छोटे कंकर हों या साहिली इलाकों की बुलंद बाला चट्टाने।
1: तस्मा, ये दिन अगर हम माहरीन अर्जियात का सुने या यूं कहें कि माहरीन अर्जियात हैं उसातिज़ा या पत्थरों के शौकीन जमा कुनंदगान हैं या तजस्सुस बरे ज़हन रखने वाले ख़ानदानों या सब के लिए अगर समझें तो ये दिन यकसर अहमियत रखता है, कशिश रखता है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि ज़मीन से मुतालिक उलूम को हर उम्र और हर पस मंज़र के अफराद के लिए आसान, दिलचस्प और काबिल रसाई बनाया जाए।
0: अब बैन अलाक़वामी रॉक डे की अहमियत क्यों है, क्यों ये दिन अहमियत रखता है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, मगर गॉड बोझना होता है आँख कश और खूबसूरत।

0: है, लेकिन अलम अर्जियात यानी जियोलॉजी को समझना हमें पानी और कुदरती वसाइल तलाश करने में मदद देता है, जलजलों और लैंडस्लाइड जैसी कुदरती आफात का पेशगी अंदाजा लगाने में मुआविन साबित होता है, और ये जानने में भी मदद करता है कि जमीन तवील अरसे के दौरान किस तरह तब्दील हो रही है।
1: बिल्कुल सही। और बैन अक्वामी रॉक डे यानी इंटरनेशनल रॉक डे दरअसल इन्हीं कुदरती अवामिल के बारे में तजस्सुस को मजीद गहरा करने की तरकीब देता है और आने वाली नस्लों को माहिर अर्जियात बनने की तरफ माइल करने में अहम किरदार अदा करता है।
0: निबासन फुरकान इस करो बे आत्मतलिक का आत्मतलिक ये ताकत करो तीसा चकामी मगर गड़ बोझो आ खूबसूरत कश्तर मुद्रत में उठ बात।

0: छोटा सा जर्रा कभी कभी इस्तेमाल में इतना बड़ा होता है जिसपे हमारी जिंदगी का इन्हिसार होता है, जिंदगी टिकी होती है। इसलिए किसी भी चीज के साथ हमें कभी भी इस तरह से उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या उसके साथ ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो उसको उसका उसके जिया का इस्तेमाल उसके जिया की वजह बन जाए। और किसी चीज को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये इंसानियत के दायरे में ये मानते हर कोई कुदरती वसैल ज़राया ऐसे आमदन हासिल तिमन मुतलिक हयाकत कि अस पज कहीं चीज निगलेक्ट कर चीज बुरा इस्तेमाल कर।
1: देखिए तस्वीर जो बात आपने की इससे एक बात का तासुर मिलता है कि ये जो रॉक्स हैं जो चट्टाने हैं ये भी एक नेचुरल रिसोर्स हैं और हमें इसकी कदर करनी बहुत ज़रूरी है। और इनसे जो मालूम हमें हासिल होती है उस मालूम को न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को खुश असलूबी से चलाने के लिए हम इस्तेमाल करें बल्कि इनका भी उसी तरह से ख्याल रखें जिस तरह से हम दीगर नेचुरल रिसोर्स का ख्याल रखते हैं। और यह हमारी ज़िम्मेदारी है। एक बाशऊर माशरे में यही होता है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्स को हमेशा हमेशा के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे उनकी तंगी जो है वो महसूस ना हो और उनसे कोई गलत जो तरीके इस्तेमाल हो वहाँ वो ना हो। यानी कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि कुदरत का हर कोई ज़खीरा हमारे लिए बामकसद है और उसका एक मकसद है, तभी वो हमारे लिए ज़मीन में रखा गया है।
0: चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो, कोई शय हमारे लिए नाकारा है ऐसा कभी नहीं सोचना है। और कभी कभी हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे दायरे में नहीं आती है, लेकिन जब हम इसकी मालूमात हासिल करते हैं तो बहुत ही दिलचस्प लगता है और अच्छा लगता है और फिर पता चलता है कि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है।
1: समीन ये थी पैगाम सुबह की अभी तक की नशरियात का एक और अहम हिस्सा, अभी तक की नशरियात। और सुबह के 10 बज रहे हैं, मेरा जो साथी है वो मेरी तरफ देख रहे हैं।
0: जी हाँ, सूफी सदा प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। आप सूफी सदा का जो है अपने सामीन तक डिटेल्स पहुंचाइए और उसके बाद हम उसके बाद जुड़ जाते हैं उस प्रोग्राम के बाद।
1: सूफी सदा प्रोग्राम आप जरूर सुनिएगा सामीन, लेकिन यहाँ तस्लीमा और आप सबसे मैं इजाजत लेता हूँ। आप पयाम सुबह सुनिए, वो आकाशवाणी श्रीनगर स्टूडियो से जारी है। मुझे यहाँ पे इजाजत दीजिए।
0: पेश प्रोग्राम सूफी सदा वैल्यू बोझो से।

0: SWR PVC pipes and fittings. जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC pipes and fittings. बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC pipes and fittings.
1: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS voice stabilizers. Power fluctuation sorted. Long life for your appliances guaranteed. BS voice, that's best service. Call now 9419001960.
2: सूफी सदा यह प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेट सुबह 10 बजे पेट साढ़े 10 बजे तक नश सदान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा.
3: समीन तो इसी बोजान प्रोग्राम सूफी सदा रावी तो पेशकश गुलाम रसूल आखून यह छ आकाशवाणी श्रीनगर सोन दो मैलान बोजे हो. हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है. मीडियम वेव 268.81 यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. समीन 10:30 हुए हैं. हमारे पयामी सुबह की नशरियात जारी है. पेश है हमारा लाइव मॉर्निंग शो, इंटरैक्टिव लाइव शो, जो हमारे साथ मेरी साथी तस्लीमा और हमारे आज के मेहमान हैं. तो आइए सुनते हैं अगली आवाज़ तस्लीमा की.
4: जी फहमीदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. समीन फिर से एक बार आपका वेलकम कर रही हूँ आपके होस्ट के पास. आपका फिर से इस्तकबाल. पैमिसो बुक की ये जो लाइव मॉर्निंग शो जो नशरियात है वो अभी जारी है. इसका आखिरी हिस्सा है हमारा आज का इंटरैक्टिव शो, जिसमें हम आज आपकी मुलाकात एक मेहमान से कराते हैं. आज भी कराएंगे, रोज़ कराते हैं. और आज चूंकि आप जानते हैं कि हमारा जो थीम है आज के प्रोग्राम का, आज के दिन के हवाले से जो होता है, क्लाइमेट को लेके होता है, एनवायरनमेंट को लेके होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके होता है, तो हमने आज अपने शो में एक ख़ास शख्सियत को मधु किया है. एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं हमारे बीच जिनकी शख्सियत एक हमजहत यानी मल्टी डायमेंशनल सफ़र की अक्कास है. एक वकील, एक सियाहती माहिर और एक फाल समाज व माहौलियाती कारकुन का हसीन इम्तिजाज. जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमने मधु किया है फैज़ बख्शी साहब को. सर, आपका इस प्रोग्राम में हम तहे दिल से खुश आमदीद करते हैं.
5: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ आपका.
4: एक छोटा सा तारुफ आपसे लेना चाहेंगे आपके बारे में, ताकि जो हमारे सामीन हैं, सुनने वाले हैं, वो आपके बारे में थोड़ा बहुत जान सकें कि आज हमारे बीच कौन है.
5: मैं तालीम मैंने कानून की है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से. उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी कई साल करी लोअर कोर्ट में यहाँ. उसके बाद मैंने टूरिज्म ज्वाइन किया. हमारे फादर साहब ने होटल बनवाया तो मुझे ज्वाइन करना, उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे वो ज्वाइन करना पड़ा.
4: जी जी.
5: लेकिन बचपन से ही एक रुचि थी, क्योंकि CM स्कूल लाल चौक जो है वहाँ पढ़ाई करी
4: जी.
5: तो पहले हमारा काम होता था कि हम ग्राउंड का चक्कर लगाएं, बहुत बड़ा चक्कर है, तो वहाँ जो कागज़ वगैरह जो ये कूड़ा करके वो हमको उठा कर वहाँ डस्टबिन में डालना पड़ता. तो ये माहौलियात का जो शौक़ है या इसकी ट्रेनिंग मेरे ख्याल में 10 साल की उम्र से हुई है.

0: इतनी कुदरती वसाइल हमें दिए हैं, वह हैज़ बीन वेरी काइंड एंड बाउंटीफुल टू अस, जो भी लैंडस्केप दिए, जंगला दिए, पानी दिए, झीलें दिए, झरने दिए, इसका शुक्रगुजार हैं। और यही हमारा प्रोडक्ट है कि हम जिसको हम बेच कर टूरिज्म और टूरिस्ट को यहाँ कर, ये आजकल नहीं, पिछले 10-15 दिन, ये मुगल्स के टाइम से 1586 में जब बाबर ने फतेह किया, उसको जनरल ने कहा कि अगर आपने कश्मीर नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा,
1: कुछ नहीं देखा,
0: तो उसने कहा कैसे जाएगा, आर्मी तो गई थी पहाड़ों पर, उन्हें 6 महीने लगाकर मुगल रोड बनाया, 3,500 उसमें कारकुन थे, यानी कानाजान वगैरह, छः महीने में 3,500 वो लगे आओ, फिर एक रास्ता बना। और अकबर, जब अकबर बादशाह ने देखा है डल लेक वगैरह खूबसूरत, उसको उन्हें कहा था हम रोड बनाएंगे, उन्हें कहा नहीं ये ऐसे नहीं, तो ये कुदरती है ये। फिर जो आप देखते हैं आजकल का डल लेक,
1: मतलब उन्होंने कहा था कि ये कुदरती वसाइल है, एज इट इज नेचुरली रहने दें, इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए।
0: नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यहाँ डल गेट बना है, ये ज़ैनुल आबिदीन के यानी ग्रैंडफादर सुल्तान शहाबुद्दीन के टाइम में ये बना। उस टाइम सुल्तान शहाबुद्दीन का ये डल जो होता था, या तो ये दलदल हो जाता, बंड वगैरह कोई था नहीं, या तो सैलाब आता था जो नुकसान करता था, या फिर ये दलदल की सूरत में, तो दोनों सूरतों में ठीक है। फिर उसने एक टीम इंजीनियरिंग जो थी उस टाइम, उन्होंने उनको गवादर भेजा, क्योंकि गवादर में पोर्ट था तब, उन्होंने कहा आप देखो गवादर में वो कैसे मेंटेन करते हैं पोर्ट को, पानी की लेवल वगैरह कैसे करते, तो उन्होंने वहाँ उनको भेजा, वहाँ से वो 4 फैमिलीज आई, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, उन्हें कहा हम आपको ठीक करके देंगे, हम पानी रहेगा जिसमें हमें चाहिए, बाकी छोड़ेंगे। तो उनको उन्होंने हक दिया एग्रीमेंट से कि आपको डल लेक में पैदावार उगाने का हक है, रहने का हक नहीं। तो राद वाला सिस्टम तब से आया।
1: अच्छा।
0: फिर और उनको कहते हैं मीर बहरी, मीर बहरी है जो समंदर को मीर कंट्रोल करे, तो उनको वहाँ मीर बहरी कहते हैं। डल लेक में भी आप देखेंगे मीर बहरी का इलाका, मीर बहरी वो थे शुरुआत में जो लोग आए, जो फैमिलीज आए, वही डल लेक में शुरू से वही थे, बाकी जहल में हाउस बोट वगैरह डूंगे वगैरह पूरे जहल में थे, वहाँ से बाद में मेरे ख्याल में 60s या 70s में वहाँ से चले। अब आपका सवाल है कि माहौल, माहौल को क्या,
1: इसमें कैसे बैलेंस,
0: हाँ बैलेंस कैसे,
1: क्योंकि टूरिज्म तो कुछ जरूरी मगर माहौल से इक्वली एस खतरवारी है इम्पॉर्टेंट, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो टूरिज्म का उस बढ़ता हुआ जो दबाव है, उससे कहीं ना कहीं हमारा माहौल इफेक्टेड होता है।
0: हमें देखना है कि कुदरती वसाइल क्या है, एक तो हवा है, एक तो सूरज की किरणें हैं, पानी है, ज़मीन है, जंगलात है या मैदनियात है, मैदनियात वगैरह जो है ये अल्लाह ताला की, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। जैसे अभी कोल है या कि इसमें हम नहीं कर सकते,
1: ये हमारा पर्सनल नहीं, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ।
0: इनको हमें मेंटेन करना है, इनको हमें कंजर्व करना है, अगर ये कंजर्व हम करें हमारा टूरिस्ट आएगा। 1988 में हमारा हाईएस्ट टूरिस्ट रहा 90 से पहले
1: जी,
0: कोई 7,80,000, जिसमें 95,000 फॉरेन टूरिस्ट थे। क्योंकि उस टाइम में ये बड़ी फेवरेट जगह थी, यानी ये जो फॉरेन टूरिस्ट वगैरह यहाँ भी थे। लेकिन फिर 20-30 साल वैसे रहे जिसमें बड़े डिस्टर्ब रहे। आजकल हमारी कमी ये है कि हम अगर कोई डेस्टिनेशन डेवलप करें तो हम पहले वहाँ बनाते हैं उसके बाद हम मास्टर प्लान बनाते हैं। आज मैं आपको गुरेज की मिसाल देता हूँ, गुरेज, दत्त पथरी, ये 2-3 जगह है वो ऑलरेडी बन चुका है। गुरेज में दरिया के किनारे, यानी एक बफर होना चाहिए दरिया और जहाँ बना सकते हैं 100 मीटर 200 मीटर, जैसे डाली के 200 मीटर
1: साहिलों को पाक रखना जरूरी है।
0: तो अगर हम वो नहीं करते हैं, उसके बाद एक बाज़ाब्ता एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: कि कितना ये लोड बैर और एक कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। पहलगाम, सोनमर्ग के लिए कैरिंग कैपेसिटी की गई, गुलमर्ग के लिए कैरिंग कैपेसिटी की गई है 4,000 पर डे जा सकता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन 20-25 हज़ार चला जाता और उसमें 1,000-2,000 तो गोड़े होते हैं। अब ये प्रॉब्लम है, एक वो इस पर बोझ है घोड़ों का, हर घोड़े के साथ घोड़े वाला भी है, फिर गाड़ियाँ चली जाती। अगर हम ये बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, एक दिन होगा अल्लाह न करे कि हमारा टूरिज्म के इससे हमारा नाम मिट जाए। काफ़ी जगह हुआ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हुआ डेवलपमेंट। एक अंग्रेज़ आया 1980s में,

0: लैंडस्केप मशहूर, दुनिया का मशहूर तरीन लैंडस्केप मिस्टर जॉन राइट था, तो उनने किताब लिखी 1900 मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन्स का दुनिया में, उस पर किताब लिखी। उसमें हमारे 7 बाग थे, 7 सुनिए, 7 चश्मा शाही, परी महल, शालमोर, निशात, बी ओस अच्छबल, तो यम ऐसी 7। तो एंड शालीमार वाज रेटेड बाय हिम 3rd मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड। ये आप देखिए, ये 80 या 70 में उसकी किताब। आज हम कहाँ हैं आज, और इसके साथ उस किताब में मैं कहता हूँ लिखा उसने, उसने कहा कि जब मुगल प्रिंसेसेस मुगल गार्डन में जाती थी, वो नंगे पांव जाती, नंगे पैर। अब मैं चला जाता, मैं समावार लेकर, मैं कांगड़ी लेकर, मैं सब को और बच्चे को एक साइड से पेशाब कराता हूँ, और खाना शाना और स्टोव जलाता हूँ, गैस। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस, और ये आप देखिए, जब मुगल बनाते थे या कोई बनाते थे, वो पानी पानी होना था, क्योंकि दीज आर कॉल्ड गार्डन्स ऑफ पैराडाइज। वहाँ क्या है, फल फल है, दरख्त है, बारादरी है, और फिर वो कहते हैं शहद की नहरें, शहद की ये पानी है, और ये बाग वगैरह फूल ये सब वो बनाते थे, पानी नहीं होता। इसको इन्होंने हारवन से, उन्होंने मुगलों ने ये पानी लाया, जिसको आज शराब कोल कहते थे, ये उन्होंने बना के कि पानी चाहिए हमको, और जहाँ पानी नहीं होता उन्होंने वहाँ अफगानिस्तान या पाकिस्तान और जगह जहाँ पानी था उन्होंने पानी का इंतजाम किया वहाँ।
1: अब इतना खूबसूरत जो हमें माहौल मिला उसको हमने अभी इतना बिगाड़ के रखा हुआ है कि तात फॉर में मन सुनिए इनके स्कीइंग। बट सो माहौल बैलेंस करने खातिर क्या पजेस करूँ या क्या चु तुहन स्टेप्स आसान
0: वो यहाँ माहौल ऐसे बैलेंस कर
1: खान टूरिज्म का माहौल
0: चेक्स एंड बैलेंस थी
1: روزانہ
0: اگر اس کنتی جائے اس گرس میں سن رہا نو تو اس سن چائے اگر اس چیک بیلنس تھا نون سوڈر نون برابر تھا یا نیپٹن پہ کھانڈ وغیرہ برابر تھا سو میں
1: دیکھ وہ ٹیسٹ نہیں دے گا
0: اتھے کم چھ آسا سائنٹیفک شات اتھ میکانزم کر سائنٹیفک میکانزم چھ گور یل کان ڈیسٹینیشن چھ چھ اچھ ون ڈیولپ گمس اینڈ الیگلی एंड मशरूम तरीके से एंड अनप्लान्ड। परसों आपने देखा पहलगाम में क्या हुआ, क्योंकि वो पहाड़ पर उन्हें होटल बनाए, पहाड़ काट छाट के, तो अल्लाह ताला का जो निजाम होता है वो फिर अपना बदला लेता है।
1: इट इज वेरी थ्रेटनिंग सिचुएशंस की जो अभी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था।
0: वो
1: नहीं, पहलगाम को लेकर ही बात करें तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। सो कुदरती तौर से जाए यूजन मतलब वारिया आलूदगी निष्पाक।
0: तस्लिमा जी भवन तो है, रेगुलेशन की कमी है जो मैं रेगुलेशन करूँ। एक मैं खुद हूँ, मैं एक मैं बनाता हूँ, मैंने नहीं देखा आजकल मेरे घर में कोई आया म्यूनसिपलिटी का एज भाई आप बनाओ, नहीं, मैं ही पहल मैं ही करता हूँ, फिर मैं ही शिकायत भी करता हूँ, फिर वो मैं कहता हूँ कि मुझे क्यों बनाने दिया। भाई आप देखो कायदा कानून जो आपको का अकल भी है, इन लोगों ने ऑर्चर्ड्स ख़त्म करके एग्रीकल्चर लैंड खत्म करके ये होटल वगैरह कंस्ट्रक्शन करें।
1: एक आम इंसान की बात करेंगे हम, एक आम इंसान ने किया जिसको अभी गौर करने की जरूरत है कि इन सब चीजों से आने वाले अभी जो अलार्मिंग सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं उसको देखकर हमें ये गौर करने की जरूरत है कि अगर इस इथे पर ब्रोहन क्या है कनगसित कम सिचुएशन है कनगसित। आबी वसाइल की बात आपने की, अगर हमारे मुल्क में जो आबी वसाइल है उनकी बात करें, इनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और इनके तहफ़ के लिए कौन से बुनियादी इकदाम जो है वो दरकार है।
0: देखिए हमारे तो आबी वसाइल जो है वो ग्लेशियर्स है
1: जी,
0: बर्फबारी हो जाएगी तो ग्लेशियर हो जाएगा, बारिश हो गई टाइम पर हो जाएगा तो वही हमारे जो हाई आल्टीट्यूड लेक्स वगैरह वहाँ हैं उनमें वो जमा रहता है वो हमारा आबी। और हमारे आबी वसाइल हैं जो स्प्रिंग्स आप अच्छा बल कोकरनाग इस साइड में और डल लेक में भी कुछ इस किस्म के स्प्रिंग जहाँ जाए, लेकिन हमारे अक्सर स्प्रिंग्स मर चुके हैं, डेड एंड। ये कि हमारी अपनी ही, अगर मेरे वहाँ हमने उसको गंद किया, हमने कूड़ा करकट डाल दिया, अब मैं अपना हालांकि मेरे महल में है डस्टबिन है या मैं अपना कूड़ा करकट डस्टबिन में नहीं ले जाता हूँ नहीं डालता हूँ तो मैं बाहर डालता हूँ, अगर दरिया है मैं दरिया में डाल देता हूँ, अगर लेक है लेक में डाल देता हूँ। हमने मैं नारकरा की मिसाल आपको देता

0: जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे मज़ीद जो अपनी बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। सर हम यार पोल्यूशन की बात कर रहे थे, हमामन हंस बात करो तो ही या बटन हंस बात करो, इंडस्ट्रियल स्टेट की बात की जहाँ पर ये दुबे वगैरह का जो हमारा सिलसिला है हिमच सोदिमन ग्लाशियरन अटैक करान, और हमारा जो जो हवा है वो आलूदा हो रहा है, जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। तो एयर पोल्यूशन कितना हमारा बढ़ चुका है और इसके क्या क्या नुकसान थे, या फिर एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए?
1: देखिए, एयर पोल्यूशन में काफ़ी फैक्टर्स आते हैं। एक दो मैंने कहा, डस्ट होता है गाड़ियों वगैरह का, धुआं, फिर उसके अलावा जो हमारा अनट्रीटेड वेस्ट है,
0: ओके,
1: जो गार्बेज आप देखें गली कोचे सड़क पर, और अगर आप बीजबाड़ा जाएं तो एक किलोमीटर के वहाँ एक किलोमीटर ज़मीन पर है, गुलमर्ग में, गुलमर्ग में जो वहाँ वहाँ गार्बेज होता है उसको बाबा ऋषि के पहाड़ की तरफ फेंकते हैं, या टंगमर्ग में एक वहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ है जमा, आप बारामला जाए सोपर जगह जगह पड़ा हुआ। यहाँ आप देख लीजिए, मैं श्रीनगर की बात करता हूँ, श्रीनगर में अच्छन है, अच्छन मैं एक दोस्त को देखने गया, वो हमारा करीब पांचवें फ्लोर में हम देख रहे हैं शाम के टाइम, मैंने दोस्त को कहा वो देखो भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है फिफ्थ फ्लोर में उसी के लेवल में, उसने कहा कंस्ट्रक्शन नहीं ये अच्छन है, ये अच्छन में वो जेसीबी चल रहा था वो कचरा वगैरह उसको लेवल कर रहा था, यानी आप देखिए पांच फ्लोर, और उसके बाद हमने उसमें
0: और उसका रुकबा भी माशाल्लाह अच्छा खासा है असन का, अगर हम देखें जहाँ पर ये गार्बेज डंपिंग होती है, और कितना बड़ा रुकबा है वो भी भर गया है एज पर योर स्टेटमेंट, तीन फ्लोर तक ये पहुँच गया,
1: पांच फ्लोर तक
0: ये पहुँच गया है।
1: इसका ये असर है कि एक तो वो पूरी आबादी है, आप कहें ना एयर पोल्यूशन, ये तो वहाँ जो स्टेंच है जहाँ बदबू है वहाँ आप देख लीजिए हवल वगैरह, वहाँ एरिया सो रहा और ईदगाह तक वो कहते हैं भाई हम खिड़की नहीं खोल सकते, और उन्होंने एक बार कहा कि हमारी बेटी तो बया ही जाती है दूसरे में, लेकिन कोई हम बेटी देने के लिए इस एरिया में तैयार नहीं, वो कहता है इतनी बदबू, यानी इसका सोशल इम्पैक्ट इतना। अब इतने साल ये तो 40-50 साल से हो रहा है, हमारे दोस्त हैं राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, वो एनजीटी में गए, एनजीटी ने इसका ऑर्डर इशू, 3-4 बार टीम्स उन्होंने यहाँ भेजे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक इसका जामिया प्रोग्राम बना है गवर्नमेंट ने कि हम बनाए 345 करोड़ या 341 करोड़ गवर्नमेंट ने अब इसके लिए मुख्स किए हैं, लेकिन वो हमें कोर्ट में जाना पड़ा, हमें दिल्ली दौड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो काम यहाँ कर सकते, जो ड्यूटी यहाँ इनकी है उसमें हमारी भी आई सोसाइटी भी है कुछ, क्योंकि हम अपना वेस्ट अलग, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट हम उसको घर में नहीं अलग।
0: आई थिंक असल में ये हमारी ही पहली जिम्मेदारी है, जब हम इंफरादी तौर पर अपने घरों से ये जिम्मेदारी उठाएंगे तभी इसका कोई सलूशन निकल सकता है।
1: अब देखिए, अगर लिक्विड वेस्ट है जो किचन का उसकी खाद बन सकती है, अगर मेरे पास जमीन आदि करना थोड़ी सी मैं गड्ढा खोदूँ उसमें मैं डाल सकता हूँ, वो साल भर के बाद वो खाद मुझे बाहर से 1,000-2,500 की वो खाद नहीं लानी पड़ेगी,
0: या फिर आप उसको बेच भी सकते हैं किसी को, दे भी सकते हैं,
1: आप बेच भी सकते हैं। अभी बाहर वाले ये लड़के वगैरह हैं वो प्लास्टिक और पॉलिथीन अलग करते हैं, गत्ते को अलग करते हैं, मुझे लगता है अगर वो भी नहीं है अब यहाँ बंगाल बिहार के तो हम कचरे के ढेर में दफन हो जाएंगे, ये जो आपने हमारे। उसके अलावा ये है कि इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 थे गवर्नमेंट ने जो बनाए, भाई आप किस तरह इसको करो। अब उन्होंने दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2020 अभी है 2024 में दोबारा कह रहे हैं कि भाई इसको आप इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारा एनवायरमेंट पॉलिसी ग्रुप हाई कोर्ट में हमने अपील करी हुई है, हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करी कि गवर्नमेंट को बताएं कि भाई आपका ये काम है ये आप करो, जो आप बाकी चीज़ें करते हो ये भी करो, बेसिक तो सफाई है, और उसी से जो आपने एयर पोल्यूशन कहा बाकी फैक्टर्स, ये जो स्टेंच इसका है दैट इज एंड इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं हजारों में, उसका ये फैक्टर, और एक फैक्टर उसका जो मेन है कि जो फर्टिलाइजर्स हमारे
0: फर्टिलाइजर्स
1: होते हैं उसका, और इससे क्या हो, एक और चीज से हमारे असर ये भी है हमारी खुराक पर असर है, एक रिपोर्ट है कि 2030 तक पूरी कंट्री में देश में 60

0: परसेंट गला हमको और चाहिए जो 15 साल पहले, इसलिए उस पर ज़्यादा जोर दो। हमारी ज़मीनें तो सुकड़ रही हैं, ज़मीनों पर हम मकान बना रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर हम मकान बना रहे हैं।
1: अभी वसाइल कम हो रहे हैं, इरिगेशन का कोई मामला ही नहीं हो सकता।
0: और मैं आपको बताऊं कि 1 kg चावल, चावल के दाने, इसको तैयार करने में 4,500 लीटर पानी
1: चाहिए।
0: अब आप देखिए कितना हमें पानी, पानी के वसाइल कम हो रहे हैं सचिन को छोड़ के, क्योंकि वो था 200-300 साल कर सकता है अभी, वो बहुत दैट इज द लार्जेस्ट एंड दैट इज द डीपेस्ट। लेकिन आप बाकी देख ले, पिछले फरवरी में शीशनाग में 6.5 फुट बर्फ थी खड़े, हमारा दोस्त ट्रैकिंग करता 12 में। इस फरवरी में 26 फरवरी वहाँ 18 इंच से 22 इंच तक जमा। ये आप देख सकते, ये शीशनाग यहाँ पहलगाम के ऊपर, ये हमारी ग्लेशियर्स का हाल। जब ऊपर ग्लेशियर नहीं है, पानी नहीं और बारिशें नहीं हो रही, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा वेदर पैटर्न, फरवरी में कह रहा था कि 28 डिग्री 27 डिग्री था, फिर मई में 6 डिग्री था, ये है आजकल भी देखिए बारिश हम हाहा कर रहे हैं कि 32, 33, 34, 35 डिग्री ये टेम्परेचर रहता है, एसी लगने लगे हैं, ये इसका सारा असर है। अगर हम नहीं इनको सजबाव करें, हमें सोसाइटी के ऊपर भी, हमें घर घर में ये अवेयरनेस करनी चाहिए, हमारी माँ, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई, हमें खुद ही सफाई, हमें खुद ही जो हमारा अपना वेस्ट है वो खुद ही डस्टबिन में करें, ताकि माँ पर बोझ नहीं पड़े, वो बोझ नहीं पड़े। ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम होना चाहिए, हम उसमें के लिए स्कूल्स कॉलेज में चले जाते हैं, हम अवेयरनेस के प्रोग्राम देते हैं, लेकिन खुद ही शुरू करते हैं। आपने जो फुटबॉल की बात करी, फुटबॉल का एक पोलो ग्रांड फुटबॉल एकेडमी मैं चला रहा हूँ, उसमें 150 बच्चे हैं,
1: जहाँ पर बच्चों को आप इन सरगर्मी में डालकर फिर माहौल का भी शऊर दे रहे हैं।
0: उनके तो एक तो है 6 साल से 20 साल 22 साल के बच्चे हैं और वीकर सेक्शन के हैं, एस पी कॉलेज ग्राउंड में कुछ प्रैक्टिस देते हैं, या कल मैच था TRC में या वो बाकी जगह, उनको हम तो एक तो भाई सफाई सफाई हमारा आधे मान, उसके भाई घर में माँ बाप की
1: ड्यूरिंग देयर स्पोर्ट्स पीरियड,
0: हाँ जो आप उनको ट्रेनिंग देते हैं लेक्चर वगैरह, और गार्बेज पिट होते हर संडे को, कोई मेरे ख्याल में 10-15-20% SP कॉलेज के ग्राउंड वो बेचारे साफ करते हैं। और उसको बाद उनको हम ये देते, और उनके अलावा हम वहाँ रैंडम ड्रग टेस्ट कराते।
1: अच्छा,
0: या कि भाई क्योंकि ये पता नहीं चलता, ये आमतौर पर आपको नहीं लगेगा एक स्टेज था कि ये ड्रग है, वो जब उनको वो देते, एक तो माँ बाप की इताअत करो घर में, फुटबॉल ग्राउंड में कोच जो है आपका उसका ये करो, और क्योंकि ये सब फाइनली माहौल याद पर है ना।
1: ये हाँ बिल्कुल, ये माहौल के साथ ही कनेक्ट हो रहा है सारा। ये आपका बहुत ही अच्छा खुशायंद कदम है कि आप स्पोर्ट्स में जो इनका इनकी रहनुमाई करते हैं और उसके साथ साथ इनको माहौल का शऊर भी देते हैं। तो मैं जानना चाहेंगे हम यहाँ पे कि जो आपका ये स्टेप है कितना कामयाब रहा है और इससे कितना फ़ायदा लग रहा है आपको, हुआ है कितना सक्सेसफुल आपका ये मोमेंट, ये स्टेप हो गया है, ये जो आपने लिया है, ये कदम जो आपने उठाया, कितना सक्सेसफुल रहा। लाइक आप इन बच्चों को जो स्पोर्ट्स में आते हैं, इनको आप बड़े ही तरीके सलीके से माहौल दोस्त बनाते हैं, इनको माहौल की क्लीनिंग सिखाते हैं, माहौल को बचाने, माहौल का तहफ़ कैसे करते हैं, तो कितना आपको लगता है कि आपका ये मूव सक्सेसफुल रहा।
0: इनकी माएँ भी आती हैं ग्राउंड में।
1: अच्छा।
0: इनके पेरेंट्स, इनके वालदेन आते हैं, वो उनको लेकर आते हैं। एक बार मैंने देखा 2 माएँ थी, मैंने उस मैनेजर से पूछा ये क्यों आती, कहा ये बच्चों को साथ लेकर आती। मैं उनके पास गया, मैंने कहा क्या बात है, कहा नहीं हम देखना चाहते थे ये कहाँ जाते हैं, यहाँ क्या माहौल क्या है, क्या करते क्या सीखते। फिर वो दोनों रोने लगी, मैंने कहा आप क्यों रो रहे, क्या एक ने कहा हमारा पड़ोसी का बच्चा ड्रग्स में लग गया, दूसरे ने कहा हमारे रिश्ते में कोई वो ड्रग्स में लग गया, वो कहे वो खानदान बर्बाद हो गए, उनकी लाखों रुपया उन पर खर्चा आता, उनने जेवर बेचे, जमीन किसी की थी, वहाँ के एसेट्स बेचे, लेकिन हम आंसू यही हैं कि हमारे बच्चे ठीक लगे। एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन, ग्राउंड एडिक्शन, जिस बच्चे को ग्राउंड की एडिक्शन लग गई ना खेल कूद की, वो चले, ये हमने आपने कहा असर, -4, -5 माइनस ज़्यादा होता है, मैं आपको कहा बंद करो ट्रेनिंग पे, वक्त तब कहते हम आएंगे, हम माइनस में भी आएंगे, हम माइनस में, अब बहुत गर्मी होती है आजकल 33-34, वो प्रैक्टिस कर आज 5 बजे 5:30 बजे अमर सिंह कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं, या

0: पोलो ग्राउंड में कहते हैं एसपी कॉलेज या वहाँ राजबाग, जहाँ भी ग्राउंड मिले वहाँ वो ये एडिक्ट रहा है, उनको कहते हैं अमर सिंह कॉलेज, वो आ जाते हैं। और ये इनको हम ये बिल्कुल ये एक ये भी एक सोसाइटी, ये भी एनवायरनमेंट तो ये भी है, अगर कैंसर वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, सफाई है, ड्रग एडिक्शन है। अगर आप एक तीर से दो तीन शिकार मार सकते हैं, व्हाई नॉट,
1: तो मार देने
0: अगर आप उनको फुटबॉल के एक टैलेंट उसको उजागर करें, उसको उबारें, उसके साथ इनको एनवायरनमेंट, सफाई, माहौलियत का भी दर्ज दे, ड्रग से दूर रखने की भी तरगीब दे, और घर में डिसिप्लिन भी, कोच वगैरह, तो आप मैं समझता हूँ कि कुछ हम थोड़ा सा जो हम ये करना चाहिए शायद 2-3% हम उसमें काम करें।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत उम्दा। और यहाँ पर सुनने वालों को मैं यही बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को आप पॉजिटिव जो हमारी मुस्बत सरगर्मियाँ हैं जैसे स्पोर्ट्स हैं उनमें जाने दीजिए, उनको खेल कूद में जाने दीजिए, क्योंकि इंसान से फ्रस्ट्रेशन, बच्चों का जो फ्रस्ट्रेशन होता है, एरोगेशन होता है, वो निकल जाता है जब वो किसी खेल कूद में चले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और ऐसे में वो माहौल के साथ भी इक्वली जुड़ सकते हैं और माहौल का इनको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और बहुत सारी चीजें जो है वो एलिमिनेट भी होंगी, नेगेटिव थिंग्स इनमें से एलिमिनेट होंगी, जो बहुत ही खुश आयन बात है।
0: इसमें मैं आप ऐड करना चाहूंगा।
1: श्योर सर।
0: हमारे यहाँ यहाँ प्ले ग्राउंड बहुत कम है
1: जी,
0: जहां भी प्ले ग्राउंड था उसमें कंस्ट्रक्शन हो गई, गवर्नमेंट कुछ न कुछ बनाती है अभी, या ग्राउंड प्ले ग्राउंड अगर है भी वो बहुत खस्ता हालत में। एस पी कॉलेज का ग्राउंड जहाँ लाखों लोग, वो आज सिवेज डंप बन गया, वहाँ बच्चे खेल नहीं पाते, वहाँ पार्किंग करते हैं, अभी मैराथन होगी परसों, बसें वैसे गाड़ियाँ वहाँ प्ले ग्राउंड में, वो प्ले ग्राउंड में वो करते हैं, उसमें करते हैं, और फिर बारिश होती है जब बड़े हैवी वो हैवी वो गाड़ियाँ आती हैं उसमें करते हैं। प्ले ग्राउंड्स का एक तो इस्तेमाल नहीं करे एक्सेप्ट गार्ड, और गिंदुन राजबाग में बहुत अच्छा ग्राउंड, लेकिन उसमें पानी पानी वो अब गर्दा वो बच उससे बच्चों को खतरा है बीमार, वो छोटी सी एक पानी देना है उसको, बस छोटी सी
1: पानी देना है, बहुत सारी चीजें करनी है। और अगर चीज पान करो ना शुरू की बोलियो इस करो हमें शुरुआत, तो मगालता नहीं है कि आने वाले वक्त में हर कोई उस शुरुआत का हिस्सा बनकर एक बहुत बड़ी कामयाबी का मतलब नतीजा बन सकता, बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिल सकती है। सर आपके साथ और भी बातें करेंगे इस बारे में, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक नख़्मे के लिए।

0: समीन, आज बात हो रही है माहौल के बारे में और हमारे आज के मेहमान हमारे साथ हैं, इनके साथ बातचीत का यह सिलसिला जारी है। मजीद गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इनसे जानना चाहेंगे सर असकर असनजकात कि पांचन पोरन तामचुजन गार्बेज तथा डामचु का सान ये पांच फ्लोर तक फाइव फ्लोर तक पहुंचा है। इसी इसी सिचुएशन से सान कशीर में वारियन जाए यूजन वारिया वर्स सिचुएशन से जब इंसान देखता है तो परेशान हाल हो जाता है, देखना आंखों को अच्छा नहीं लगता है और जहां पर इसकी मतलब कंडीशन ज़्यादा वर्स है तो वहां पर जाना अच्छा नहीं लगता, वो जो उनकी बदबू उस चीज़ की होती है वो इंसान को इरिटेट करती है। तो इसका प्रॉपर वे जो डंपिंग है वो क्या है, वो क्या होना चाहिए, कमज़ोर कहाँ पर लैक हो रहा है, ये सब कुछ जो हम प्रॉपरली इसको डंप नहीं कर पा रहे हैं।
1: डंपिंग में
0: हालांकि असनस दिते कोतरे 73 करोड़ के तथन
1: देयर इज अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हमने साइंटिफिकली सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, उसके लिए हमें साइंटिफिक हमको उसके लिए वो सिस्टम हमें प्लांट लगाने हैं, उसके लिए प्लांट बाजाबता वो प्लांट होते हैं इंदौर वगैरह भोपाल वहाँ बाकी हैं, उन्होंने इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लमें हैं सॉल्व, लेकिन एक विल पावर होना चाहिए और पॉलिसी जो प्लानर्स हैं पॉलिसी वाले जो एग्जीक्यूटिव हैं इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी उनको वो करना है। मैं आपको बताऊँ अच्छन में 11 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट है जो जमा है और उसके ऊपर हर रोज 700-800 मीट्रिक टन और जमा हो जाता है। ये है कि ये टाइमली इस पर काम नहीं हुआ, अगर काम टाइमली हुआ होता वो नहीं क्या, हमने इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है, वहाँ भी ऑर्डर्स हैं लेकिन बदकिस्मती से ग्राउंड लेवल पर या वो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अगर ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि वो कानून का भाई कानून आपको ये कहता है, उसमें मैंने पहले भी कहा हमारा सिविल सोसाइटी हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम लिटर वेस्ट नहीं करें, वो अलग अलग करें, वो प्रॉपर जो डस्टबिन है वहाँ डालें। लेकिन ये अभी राजा मुजफ्फर साहब हमारे कुलीग हैं, हमारे साथ काम कर मैं ग्रीन सिटीजन काउंसिल के मेम्बर हैं, उनको NGT में जाना पड़ा, NGT से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के हाउसिंग अर्बन 2-3-4 पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिल्ली के वो टीम आ गई, उन्हें टीम इंस्पेक्ट 3 बार आए, वो इंस्पेक्ट करके फिर उन्हें ऑर्डर दिया भाई ये करो। अब गवर्नमेंट

0: मांगे 3 साल में आप करेंगे, 300 साढ़े 300 करोड़ उसके लिए उनने करा है, लेकिन आप उसमें हर एक क्रेडिट लेना। अभी एक पार्टी उठी, भाई इसमें हम यानी एक्सपर्ट बैठे, मैं लेकिन हमारी पूरी राय कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडेंस में होने चाहिए। उन्हीं ने इनिशिएटिव लिया है, उन्हीं ने ऑर्डर करे हैं, उन्हीं ने टीम भेजे हैं, वरना यहाँ टीम नहीं थे, यहाँ हमारे एक्सपर्ट नहीं थे, उनकी देख रेख में, एंड इट शुड बी अंडर देयर गाइडेंस एंड अकाउंटेबल एनजीटी को होना चाहिए, भाई हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं।
1: एक कानूनदान होने के नाते क्या आप ये मानते हैं कि जो हमारे पास माहौलियाती तहफ़ के लिए कवानीन मौजूद हैं उन पर ये जो अमल दरामद हैं उसमें रुकावटें हैं, और एज एन एडवोकेट कानून भी जानते हैं आप, तो क्या आपके स्टेप्स रहे हैं अभी तक, क्या कुछ किया है आपने अपनी तरफ से?
0: देखिए, हमने पब्लिक इंटरेस्ट
1: लिखी, कहीं पर ऐसा हुआ है कि जो रूल रेगुलेशन तोड़ा गया तो आपने अपने कानून
0: Public,
1: जानते हैं आप उसका,
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने की फ्लड्स पर भी और सॉलिड वेस्ट मैंने जो कहा था इसके पर भी, हमने काफी ऑर्डर्स वहाँ हाई कोर्ट जज दे वर वेरी काइंड, फैक्चुअल जो था कि ऑर्डर के स्पीकिंग ऑर्डर्स थे, लेकिन बदकिस्मत से नीचे लेवल पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं। मैं नारकरा की बात करता हूँ।
1: अच्छा।
0: नारकरा में हमने जब वहाँ डंपिंग हो रही थी हमने स्टे ऑर्डर लाया, जो अभी तक स्टे ऑर्डर है
1: जी।
0: लेकिन यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा जी ये वेटलैंड नहीं, नंबल नहीं, नंबल मीन्स वेटलैंड, ये बंजर कदीम है, बंजर कदीम है, नॉन प्रोडक्टिव लैंड। अरे भाई पानी जमा है, पानी है वहाँ, वहाँ मछलियाँ हैं, वहाँ जानवर हैं, वहाँ शिकार है, नॉन प्रोडक्ट, उसको डिफीट कर दें। सिटी वही है लेकिन पूरा नारकरा बड़ा जो जा चुका है और वहाँ मकान हजार सैकड़ों में बने, ये नॉन इम्प्लीमेंटेशन में थे ग्राउंड लेवल पर। आप इसके बाद आप दोबारा जाओ, आप यानी कंटेम्प्ट करो, वो करो, क्योंकि लीगल से ये तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन। अभी मैं कल की बात करता हूँ, हम होकर सर गए थे, होकर सर में ये दिस वॉज कॉल्ड क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, क्वीन ऑफ वेटलैंड, और ये दिस वॉज रिजर्व, और ये रामसर, रामसर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें 190 कंट्रीज साइंड है, ट्रीटी है जिसे इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसमें इंडिया भी, जिसमें इंडिया का भी इंडियनेटेड कर, अंडर दैट ट्रीटी वी आर सपोज टू प्रिजर्व एंड जो साइट्स हैं उनकी, हमारी वोलर है, शालबुग है, हाईगाम है और अक्सर वे आर प्रिजर्व दैट। उसके लिए हमने गवर्नमेंट के पीछे लगे 47 करोड़ के, उस वाटर लेवल होना चाहिए 4-4.5 फुट, उसको कंट्रोल रखते कि इनलेट और आउटलेट गेट बनवाया गया इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 47 करोड़, लेकिन वो अपनी मनमानी से गेट खोलते हैं, कोई भी बढ़ते हैं, क्योंकि और हमने देखा मछलियाँ मर चुकी हैं वहाँ, जो जानवर बच्चा कशी जिन्होंने जार कूट्स हैं मलार्स हैं जिन्होंने बच्चा कशी, जब पानी खत्म हो, जब पानी नहीं तो कुत्ते हमला करते। हमने वहाँ से बात करी, आज भी हम वो मसला उठा रहे हैं कि जो हमें करना चाहिए अंडर जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी, वो जैसे वो कैन नॉट डिसओबे दैट, लेकिन उनके भी आंखों में ये कि भाई ये ऐसा है तो एक टू बेनिफिट समबडी, क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा, मिट्टी है, मिट्टी उठाओ, मिट्टी के बड़े 2000-3000 में एक मिट्टी की गाड़ी।
1: तो लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आप वंचुन गसान रूल्स एंड रेगुलेशंस शुने फॉलो करा कहीं, मेनली कुछ आज रिस्पॉन्सिबल अक आम इंसान यूस यम चीज करान छु यूज एन आप खतर अप्रोच करान छु
0: बशुस पान जवार मे वो तो गोर मे छुन आमुत का म्युनिसिपैलिटी वोल सु बनाओ सरकार गौर को
1: अगर तिम चिला परवरी सान कम हैवान या तिम चुबा सान छो मतलब लंबा चौड़ा प्रोसीजर है या मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो अच्छा बासान कि एकिस आम इंसान पर पानी पानस पड़ी कदगन लगाऊं कि तिमन पज खतर ग
0: बिल्कुल पज अस अगर बिल्डिंग परमिशन छो 100 फुट अस पे 100 फुट बनाओ पत छो ना तुझो ना वचन एसेली वायलेट करा ओत लोग नार कतम हवल कि फायर ब्रिगेड आव ना क्या मे मकान बोर्ड बनोमुत पे सड़क फुट तम जम तीस कल मकान दजित खत्म गो लेकिन फायर यही गो सहलाबस मे अति।

0: سامعین تُہۍ ٲسِو چھکر تہٕ رو بوزان، پیش ٲسۍ کران پرویز احمد ڈار تہٕ سۭتی یِمنٕچ بوٗزِو تُہۍ کلام رحمان ڈار، یہِ چھِ آکاشوانی سری نگر سوندوی ملان، بوٗزِو یہ آکاشوانی سری نگر ہے، سامعین دن کے 12 بجنے والے ہیں، پیش ہے آکاشوانی دلی سے خبریں۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य

ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है, जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सामीन नगमे आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर से। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, 12:30 हो चुके हैं। पेश है हमारे यहाँ से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सईद मुबशिर रफाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी अजीम रूहानी, साइंसी और सकाफती शनाख्त है, और अब इस अजीम तहजीबी विरासत को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खुद इन्हिसारी और यूटी की तामीर के लिए मिशाल राह बनाने का वक्त आ गया है। वो ललित लिटरेचर अवार्ड और डॉक्टर वैद्यही तमन की तसनीफ ललित द मदर ऑफ कश्मीर की रस्मी रोनुमाई की तकरीब से खताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ ने साइंस और गहरे रूहानी अकदार में तवाजुन कायम करके ये साबित कर दिया है कि हिन्दुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साइंसदानों और रूहानियत के पेशवा दोनों की जरूरत है।
2: एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवित्री ललित के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सदियों पहले रचे गए ललित के वाक आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते। डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललित को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम से आसन तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3.25 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरियासना 7,754 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल 12वां काफिला आज वादी पहुंच गया, जिनमें से 2,896 ने बालतल जबकि 4,858 यात्रियों ने पहलगाम का रास्ता इख्तियार किया है। अदालती उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तीफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। इम्पा श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरान के लिए कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के तहत दो रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ। हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट की खबर दी है कि इस प्रोग्राम के दौरान श्रीनगर और जम्मू से ताल्लुक रखने वाले इन अफसरों को लोगों तक मौसर हुक्मरानी पहुंचाने, नीज सलाहियत साजी को बेहतर बनाने से मुतलिक अमूर से रूशनास कराया जा रहा है। अमूरी नौजवान और खेलकूद की मरकजी वजारत ने मेरा युवा भारत के जरिए चलाई जा रही मुड़गीर मुहिम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के दूसरे मरहले का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत 3 सतही फॉर्मेट में मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे, जिनमें 15 से 29 साल की उम्र के नौजवान हिस्सा ले सकते हैं। इस मुहिम के तहत पहले जिले सतह पर, बाद में रियासती और आखिर में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे। वजारत के मुताबिक माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। जिले सतह के मुकाबले इस माह की 24 से 27 तारीख तक मुनक्कद किए जाएंगे। महकमे इत्तलात व तालुकात आमा ने दुनिया भर के फिल्म साजों से जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में शिरकत के लिए फिल्में तलब की हैं। फिल्में 31 जुलाई 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं। मुत्तलकीन से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में मजीद जानकारी वेबसाइट www.iffjk.org से हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल 2026 7 से 10 सितम्बर तक SKICC श्रीनगर में मुनक्किद होगा, जिस का मकसद जम्मू कश्मीर को सिनेमा, सकाफत और तख्लीकी तबादले के लिए एक मुतहरिक मकाम के तौर पेश करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। ये इस रेडियो प्रोग्राम का 136वां शुमारा होगा। लोगों से कहा गया है कि वो अपनी आरा और तजावीज 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800 11 7800

नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए भेज सकते हैं। इसके अलावा उन 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करके अपनी आरा और तजावीज बराह रास्त वजीर आजम को भेज सकते हैं। फीफा आलमी कप 2026 सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है। पहला सेमीफाइनल बुध को फ्रांस और स्पेन के माबेन खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में जुमेरात को इंग्लैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: सफर का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, सामने दिन के 1 बजने वाले हैं, पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में 2 नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल RN रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6ठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर

0: and Bihar during the next 2 to 3 days, and isolated heavy falls in East Uttar Pradesh over 4 to 5 days. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex advanced 61 points to 77,631, while the Nifty added 5 points to 24,211 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है. मीडिया वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा आप हमें सुन रहे हैं FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. समय 1:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग.
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश.
3: और मैं हूं अजीत. नमस्कार और जय जोहार. आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने. लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है. जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए.
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए. और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश. तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का. राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है. लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता.
3: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना. सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था. प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है. चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है. विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे.
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था. इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद.
3: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है.
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी.
3: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का.
2: जी, इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का. वो लिखते हैं,
3: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है. हम तो नियमित श्रोता हैं. आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है. हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी. आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं.
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए. और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का.
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी.
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का.
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए. अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की.
3: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों.
2: श्रोताओं, इसका जवाब जान लेते हैं. मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं. उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं.
3: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए.
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों. इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है. पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं. तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है. कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है. कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है. साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है.
3: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए.
2: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं. बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़.
3: जी, अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था. हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए.
2: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है.

0: और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे घर के सारे सामान बह
3: जाएगा।
4: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी
5: फसल बह गई।
6: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
7: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
8: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
7: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
6: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
7: अरे
9: मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
6: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए

0: उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
1: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
4: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: अरे हमारे पशु पक्षी, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
8: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
5: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
8: सारी फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
8: सारे सामान
7: उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
8: चलो जल्दी ऊपर,
7: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
8: चलो चलो,
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
8: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
9: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया।

0: सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको

चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यही तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: गिंदौरी।
3: हाँ चाची।
1: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने
1: वाली बात नहीं है री।
4: हाँ?
1: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ, छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ,
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
1: हाँ, हाँ।
4: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद।

0: कहीं नहीं मिला और आज मिला है तो
1: छप्पर फाड़ कर
2: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
0: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
1: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
2: हाँ ठीक है ना, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।
2: वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ठीक रहेगा।
2: सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं। अच्छा। वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: क्या जंगल?
2: जल्दी आओ, हमारे जंगल काट रहे हैं।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21

0: स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं।
2: बिल्कुल,
1: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
3: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
1: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो प्राणों को। अरे हटो हथियार, हटो,
4: अरे अरे हटो,
1: हटो, पहले हम पर ये कुछ नहीं कर सकते। आप हम पेड़ों से चिपक गई हैं। अब चलाओ कुल्हाड़ी।
5: अभी देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
1: हम जान दे देंगे, मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या हो, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, शिब्बा तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
4: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पेड़ों से अलग कर दो। अरे खुदा, ये देवार, ये आगे बढ़ो, आगे चलो।
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
6: चिब्बू भाग ले यहां से,
7: बाद में गाली काटेंगे।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
8: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
9: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे क्या बात
10: भाई,
9: जीतती रहे बेटी, जीतती रहे।
1: हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
11: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
12: और विमलेश को
11: कुसुम लता,
12: जगबंधु,
11: चेतना
12: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
11: नमस्कार, नमस्कार।
13: उमंग उमंग उमंग उमंग।
14: सामीन, आप समाध कर रहे थे एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
15: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
16: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
17: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
16: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड

0: रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
1: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सामने 1:50 हुए हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार दे

शिफा जी भाई, ये नगमा आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म गैम्बलर से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ ये नगमा फिल्म अमर प्रेम से।

जी फौजी भाइयों, ये नगमा आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। दोस्तों आइए सुनते हैं अगला नगमा, मुद्दत फिल्म से मोहम्मद अजीज़ का गाया।

जी फौजी भाइयों, ये नगमा आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अनामिका से ये नगमा।

0: दोस्तों आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में फिल्म आखिर क्यों का ये नगमा।
1: दुश्मन

जी दोस्तों, कार फिल्म से अपनी मनाड़ी को सुना। दोस्तों आइए सुनते हैं इस निशस्त का ये आखिरी नगमा, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा।

जी फौजी दोस्तों, आज की निश्चय से दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद। ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। 3:50 हुए हैं। पेश है हमारे यहाँ से खबरें।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। पेश है खबरों का बुलेटिन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी शख्स की शहरियत का तायुन या उसे गैर मुल्की करार देने का अमल मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना और उसूल इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी अजीम रूहानी, साइंसी और सकाफती शनाख्त है और अब इस अजीम तहजीबी विरासत को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खुद इंसारी और यूटी की तामीर के लिए मशली राह बनाने का वक्त आ गया है। इम्पार्ड श्रीनगर में आज डीओपीटी के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने इम्पा और जेडी के इश्तराक से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरों के लिए 2 रोजा तरबेती प्रोग्राम की शुरुआत की और भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 कल से भारत मंडपन में नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी शख्स की शहरियत

इंसानी सलूक नाल इसको पूरा करना और उतना ही कम करालना ओही कम करालना जिहड़ा वो कर सकता हुआ है। उसकी ताकत थी ज्यादा पार चुआलना या पारी चीज चुआलना ये भी उनके हकूक पैरों तला मलने के बराबर है। इस दौर में मेहनत काश्त मजदूर को इतनी उजरत जरूर हो जो अपनी जायज जरूरियात को पूरा कर सके और समाज में जिंदगी गुजार सके और हलाल रिजक हासिल करने वाले की मदद करना भी जरूरी है। तसामीन आओ पहले सुन दिया मोहम्मद मकबूल खान की आवाज़ में एक गीत है।

रिसोर्सेज IUCN एक ग्रुप है। इससे रंग कंजर्वेशन प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज जितनी भी है स्कूलों में कॉलेजों में जुड़ी है या जड़ी भी एनजीओ इसमें काम कर रहे हैं उन्हें जड़ी फंडिंग हो रही है, इतनी फंडिंग इससे पहला नहीं जितनी आज हो रही है। वह नाल जरा ट्राइबल लोग हैं उनकी जो प्रैक्टिस है उनका जरा तौर तरीका उन्हें अपनाण में भी उन तरीकों तो सबक हासिल करने में भी जुड़ी है मदद उन लोगों से ट्राइब्स से ले रही है। कंजर्वेशन बायोलॉजी का जो मकासद है वो एक इंटीग्रेटेड और इंटरनेशनल साइंटिफिक एक्टिविटीज जोड़ के चलावे और जितनी भी हुकूमतों की पॉलिसी मेकिंग है कि बायोडाइवर्सिटी ने बचाया जाए पॉलिसी मेकिंग के बीच भी कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो जा दी गई है। कंजर्वेशन को मकसद यही है कि एक तो बड़ी ऑडियंस तक जी बायोडाइवर्सिटी ने बचाने वास्ते गलबात जी सोशल मीडिया मीडिया के जरिए जी गल लोगों तक पहुंचे ताकि अपनी नस्ल अगर हम बचाना चाहवा तो हमारा जी है मुख्तलिफ रंग बिरंगी जिंदगी जी उसकी जी नस्ल उन्हें बचाना है ता हम बच सका। तो कंजर्वेशन बायोलॉजी के कोर्सेज हैं या करिकुला जड़े मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी में जड़े या एकेडमिक्स में वे रिसर्च के जो मौजू है उसमें इजाफो की जा रही है तवज्जो इस तरफ दी जा रही है और एक यो आज का दौर में जुड़ो एक बुनियादी डिसिप्लिन बन गया है पूरी दुनिया का जितना भी इदारा है उनमें जुड़ो पढ़ाई जा रही है। एक तो यो इसने क्राइसिस डिसिप्लिन की जाए दुनिया में मुश्किल इस वक्त आई है माहौल न लेके उस जगह कंजर्वेशन नबातात और हैवानात को जुड़ा ये बड़ो अहम मौजू बन जाए। इसके अलावा इसकी जो हमने गल की कि इसमें वैल्यू है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्चेस हैं वे रैशनल हुए उसमें वैल्यू हुई हुआ है फैक्ट्स की स्टडी हुआ है ऑब्जेक्टिव स्टडी हुआ है तरीका अपनाया जाए वे तो साइंटिफिक है वे तो रैशनल है लेकिन रियलिटी में हम देखा या कंजर्वेशन का जो एफर्ट्स है कदे भी वैल्यू फ्री नहीं हो सकता उसमें मीनिंग्स और मोटिव्स जड़े जड़ी छपी हुई चीजें जो लोगों की माश है या एस्थेटिक वैल्यूज हैं माश को जो दारोमदार है या ट्राइब्स कम्युनिटीज को जो दारोमदार है जंगलात पर उसमें कितने कितने लोगों का मोटिव्स और मीनिंग जड़ी है वे भी छपी हुए हैं। तो एक मिशन ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है मेथोडोलॉजी जी हम साइंटिफिक जो तरीको अपनावा साइंटिफिक मेथड्स जो इसकी स्टडी वास्ते अपनावा वे तो बाजाफ्ता तौर पर ऑब्जेक्टिव किस्म का हुआ है लेकिन वैल्यू फ्री बिल्कुल नहीं क्योंकि हिडन जड़ी इसकी वैल्यू है वो जो लोगों ने मुतासर करा हम इसे नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव तरीका ने स्टडी की जाए लोगों ने जो फायदा इससे हासिल हो रही है वो जरूरी इसमें मद्देनजर रखी जाए बल्कि इसमें जो लोगों का ट्राइबल कम्युनिटीज का खासकर मफादात है उनका जो है हमेशा पॉलिसी मेकिंग में जो है जोड़े जाए कि वे कितना मुतासर हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज से या जितने भी के इर्द गिर्द जिसकी दारोमदार जिस जिंदगी पर थो वजह खत्म हो रही है पानी का जड़ा है जखायरे में कट हो रहे हैं या बाकी जितना भी कुदरती वसायल थे जिन्हें उनको दारोमदार थो उनमें जड़ी कमी हो रही है तो किसी सूरत में वो वैल्यू फ्री नहीं हो सकते या टूरिस्ट को जो फ्लो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज में या ट्राइबल एरियाज में उनमें जो प्लास्टिक पोल्यूशन है गाड़ियों की जी पोल्यूशन है धुआं की वजह से जी बर्बादी हो रही है माहौल की कदे भी यो वैल्यू फ्री नहीं हो सकते इस लोग इससे जरूर मुतासर हुए। कंजर्वेशन बायोलॉजी वैल्यू फ्री नहीं स्टडी को जो उसको तरीको है मेथडोलॉजी जी है वो वैल्यू फ्री हो सके। सामीन मोहतरम आगे हमारे कुल प्रोग्राम नाथ शरीफ है मोहम्मद इकबाल मलनगामी की आवाज़ में अब ये नाथ शरीफ सुन लें।

0: लाइट के बगैर इंसान रात वो चलेगा
1: जी
0: उतना, क्योंकि लाइट नहीं आ सकेगी, क्योंकि नजर नहीं आ सको कोई चीज की आगे दंदो या पड़ी है या दरिया या आगे के है के नहीं। तो लेकिन पढ़ियो इंसान वो उसकी अखा में लोभ है, उसने जानकारी वे, उसने सब कुछ समझदारी वे, तो वो सोच समझ के कि कोई कदम पटे भी गो तो सोच समझ के पटेगो। और उसने कानून को भी पता है कि अगर हूँ कोई गलती करूँगा उसको मना सुबह के सजा मिलेगी और इसको के जुर्मानों पे आएगा उससे, वो क्योंकि वो देखे, क्योंकि पढ़िया हो वो उसने देखे तो वो अपना उस गुना दे बच सके
1: जी।
0: तो एक तो हमारे वास्ते क्या है, दूजी जरा ये हमारा लोग है खन बदोश लोग है जरा ये पहाड़ा माँ इन माँ चले गया, नहीं कि यो मारो अच्छो पेशो या होना नहीं तो बहुत अच्छी गल है। लेकिन इसमें यह गल है कि हूँ बाकी का अपनी बरादरी ने भी यह गल कहूँ कि थोड़ी थोड़ी अगर कुनाल नहीं ले सकता, दस दस मरला पाँच पाँच मरला ले गए मकान की जगह ले गए बैस के अपना बच्चा ना पढ़ाओ, अपना बच्चा ना दीनी तालीम भी सिखाओ और यो दुनिया भी पढ़ाओ।
1: नहीं जी जरूरी नहीं, देखो तम अगर थारा का गुंजाइश नहीं तम इस जा के बेच आ के जगह नहीं ले सकता। अगर हम रजौरी की गाल करा, रजौरी का किसी भी जिला की गाल करा या हम रियासी की गाल करा, पौंछ की गाल करा, हर जा के बेच आम लोग बसनीक है ना
0: जी। हाँ।
1: ठीक है, और हम के करा कि हमारी कारोबार लागी या हम तो माल पारू ले लिया, पेड़ ले लिया लोगों की वे लेके तम इस साइड आ रहा, लेकिन नाल हम अपना बचन भी ले आवा, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। रशीद साहब जिंदगी के बेच कुछ खटी मिठी याद जुड़ी ने वे भी ताज़ा रह जाए, तमने काफ़ी वक्त गुजारिया हुआ है, तुम भी तमने गुजारिया हुआ है टोका में गुजारिया हुआ है या रियासी के भी तमरे आए, तो खास कर अगर हम टोकों की गल करा तो हम देखा कि टोकों के बीच हर तरह से वे पहले खेड़ खेड़ी जाए थी या एक अलग माहौल हुआ था, उस पास तम थोड़ा जानवर ले चलो कि तम के कुछ करे हुए था उस वक्त।
0: शोको साहब जिस वक्त हम टोका में पहुंचा था तो हमारे भी खुशी नसीब थी
1: जी,
0: कम चला था डेरा हमारा चला था कम से कम 30-40-10-20-15 इतना डेरा किट्ठा हुआ था
1: जी।
0: तो नौजवान जितना भी था या बुजुर्ग वह था, जो नौजवान जितना भी वह था तो वे चल गए उस वक्त के करे था, कोई कहता इटी खेड़ा
1: जी,
0: वे चल गए इटी खेड़े था, कोई कहता हम यो बां पकड़ा
1: जी,
0: बीणी पकड़ा था बीणी पकड़े था, तो कोई सियासी बोले था बुजुर्ग था जेड़ा वे अपनी गल ला लिया था अपना जमाना की अपना पेशा की वे गल ला लिया था। लेकिन उस वक्त हम क्या करा था खेड़ा था तो फिर कुश्ती करा था
1: जी,
0: क्या करा था कुश्ती चीड़ा कच्छो ला के हम क्या करा था एक दूजा का ना कुछ कुश्ती करा था, दे जिस देखा था जो कोई उसमें कुश्ती में पास आ गयो
1: जी,
0: तो उसने आम का दाल ला ला यो मारे में सारा मजोर में अच्छो था, यो माँ बाप ने अच्छो पाली उसने, इसने अच्छी खुराक दीती है, इसने की भी अच्छो खादो और दूध भी अच्छो पियो और माँ बाप ने जो पालियो भी सही है
1: जी।
0: तो उसने सारा उसने अच्छो रखे था, फिर जित किते कोई ब्याह शादी वह थी तो उत ले चले था उससे जोड़ो मारे माँ वो हेड बन जा तो जोड़ो उस ताकत माँ
1: जी
0: उसने ले चले था कि आगे चल गया था के करे था ब्याह शादी में कोई टमोल ला लिया था
1: जी,
0: तो एक बुधकुर साथ छुड़े था गटी
1: जी,
0: तो बुधकुर सटे था हम उसने कहा था बुधकुर गोल कोई बटो सट रहे था तो उसमें चल गया था, उसी बंदा ने कहता उसने बड़ा बड़ा बुजुर्ग भी कहता तो निक्का भी कहता था बड़ा भी सारा उसने कहता हे फलानिया तू आगे जा रहा तू चक्के को जा इस बटा ने चक तो
1: जी,
0: तो बटा ने चके था तो फेंके तो मार के परे तो बस पीछे चले थी जान जाके बैसे थी, फिर अगे कुड़ी आले कर बैस के निकाह करके फिर बाद में रोटी खा के दे वे अपने करे
1: के यो सिस्टम आज भी जा रही है, मतलब आज भी ये रस्म अपनाई जाए
0: ना जी, ये
1: शादियों में
0: आज नहीं
1: जी,
0: आज नहीं आज नहीं आज वे गल छोड़ दी थी, वे पुरानी जितनी गल भी थी ना
1: जी
0: वे छोड़ दी थी, उसके बीच के करे था वो कंगी परुंदो उस बच्ची को
1: जी
0: उसमें पार गए ते टोर छुड़े था, अल्लाह पाक उसको शर्मदार रखे था तो वह बिल्कुल कामयाब रहे थी मेरा शौकत साहब।
1: रशीद साहब हमने आज थारे नाल इस मुख्तसर जिहा वक्त के बीच थोड़ी बहुत गल की, सब ते पहला तालीम न ले के थारा रहन सहन न ले के उस ते बाद हमने अपना ब्याह शादियों की थोड़ी बहुत गल की, थारी जिंदगी के बारे में गल की, तमने बहुत अच्छा तरीका के ना अपना

0: श्रीनगर से 27 किलोमीटर दूर गांधरबल में है। एक मंदिर है और एक पानी को चश्मो है। मई माह एक मेलो लगे। इस दिन इस चश्मा को पानी अपना रंग तब्दील कर ले। सोनामर्ग श्रीनगर से 84 किलोमीटर दूर है। यह खूबसूरत जगह लद्दाख जाने वाली रोड पर वाका है। एक काफी बड़ो खूबसूरत मैदान है और ग्लेशियर है। अच्छा बल जिला अनंतनाग माँ है। एक खूबसूरत बाग के अलावा पानी की डाव भी बनी है जिसमें बेशुमार किस्म की मछली है। ये मछली खास तौर पर सैलानियों ने अपनी तरफ रागब करे। कोकरनाग श्रीनगर से 76 किलोमीटर की दूरी पर है। एक चश्मा निकला है जिसको पानी सेहत वास्ते काफी मुफीद समझो जाए। फेरी नाग श्रीनगर से 81 किलोमीटर की दूरी पर वाका है। एक चश्मा निकला है। इस चश्मा से दरियाई जहलम की शुरुआत हुआ है। पहलगाम श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है। पहलगाम सतह समुद्र से 2400 फुट की ऊंचाई पर है। पहलगाम में बड़ो मैदान है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा की तरफ राह चले। गुलमर्ग श्रीनगर से 54 किलोमीटर दूर है। यह भी कश्मीर की खूबसूरती के लिहाज नाल मनी हुई जगह है। इत बड़ा बड़ा मैदान है। इत को मौसम काफी खुशगवार हुआ है। इत बड़ी बड़ी मर गये। गुलमर्ग में बेशुमार किस्म का फूल है। गुलमर्ग में सियाल काफी बर्फ हुआ है। सियाल इत मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी आके सरमाई खेड़ खेड़े। गुलमर्ग से 4 किलोमीटर की मुसाफत पर खिलन मार्ग है या फूलों वास्ते मशहूर मार्ग है। गुलमर्ग से खिलन मार्ग तक सैलानी घोड़ा पर चले। कश्मीर का लोगों का एक बड़ा तबका को रोजगार सेहत सनत नाल किसी न किसी ढंग नाल जुड़े हुए है। मारा गुजर लोग भी इस सनत के नाल वाबस्ता है। कश्मीर की भी जगह जित सैलानी लोग सैल वास्ते चले। ज्यादातर ये खूबसूरत जगह ऊंचा ऊंचा पहाड़ा पर हुए जित आम दौरफत की उतनी सहूलत नहीं होती जितनी के शहरामा हुआ है। मसलन सोनामर्ग, गुलमर्ग, यूसमर्ग, पहलगाम वगैरह इन जगह पर सैलानियों ना घोड़ा की जरूरत हुआ है। मारा लोगों को सवारी वास्ते अच्छा घोड़ा हुए। ये घोड़ा सैलानियों ना काम आए और रेट भी मुनासिब हुआ है। इसके अलावा सैलानियों ना ऐसा मुकामी लोगों की जरूरत हुआ है जिरा की उस जगह की चंगी जानकारी हासिल रखता हुए उन्होंने उत्कार रस्म व रवाज रहन सहन तौर तरीका लोगों की माशी हालत ते समाजी जिंदगी बारे गलां ते वाकिफ कराए। मारा लोग इन जगह माची खासी तादाद में बसे। वे एक ते अपनी रोजी रोटी कमाए दूजे सैलानियों ना पेश आने वाली मुश्किलात में उनकी मदद करे। और फिर यह गल भी काबिल जिक्र है कि इन जगह ना खूबसूरत रखन में मारा लोगों को बड़ो हाथ है। बाहर का सैलानी और चीजों के अलावा इसका लोगों में इस्तेमाल होने वाली गजा का शौकीन हुए। और मारा लोग खालिस दूध की पनीर दें ते ताजो मांस भी सस्ती कीमतों पर सैलानियों ना फराहम करें ते लोग इस सनत नाल जोड़ के अपना रोजगार कमा रहे हैं।
1: कश्मीर की सियाह के नाल जुड़वा में देखा कि टूरिज्म जुड़ा मारो उसमें एक कुदरती नजारा देखना लोगों में या अमरनाथ यात्रा हो रही है पिलग्रिमेज टूरिज्म जिसने की जो रिलीजियस टूरिज्म है वो है। इसके अलावा तुम देखो कि हमारे जो है अच्छा लोग जो है स्पोर्ट्स का जरा मुख्तलिफ डल लेक में जरा कंपटीशन मुनक्कद किए जो उसमें लोग शराकत करें या माउंटेनियरिंग न लेके जो शौकीन लोग इस जगह आवे। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म है इकॉनमी जी हमारे लोगों की जी माश है वो भी इस टूरिज्म के नाल जुड़ी है। कुछ एक वक्त बचा क्योंकि यो शुमाली इलाकों है ठंडो इलाकों है 6-7 महीने बर्फ का असरात ने गुरेज से लेके तुलेल का इलाका तो लेके और मच्छल को इलाको है जितना बॉर्डर इलाके हैं या जरा हमारा इस्टेबलिश जरा सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग है सोनमर्ग है जी इस गलबात के बिच जिक्र भी हुआ उत जड़ा में सियावे। हम उम्मीद करें कि हमारी इकॉनमी में सियाह जड़े में जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमारे कुल कहानी है
2: आज की कहानी को नवाब ने पेड़ कातरी या तद की गल है जब वो निकलो जी तो खास इतना निकलो भी नहीं 13-14 सालों को खास उतरो थो अल्लाह बच के जमान लो हारना सिंगेरी मारे घुमंड बसे थो छड़ो जमान इन चाचो फ्रोजो चाची सैदो मिस्त्री गरीबो ते मौसी गुलामो सारा लो हार मीना हथा मोचाए हुए था। चाची सैदो ने हूं कई बार भी डीडियो डिंगा चीर कटिया ते बस्तो कश ना लो आगे मोगला सुकुल टोरियो मारा डेरा का उसने इतना काम किया था कि याद करके आज भी हम अखम आथरू आज ताम चाचा फ्रोजू गए जिसने मारी अखर जी रकड़ जमीन में आड़ मारी कह था ना कोई उस नाड़ू

चढ़ है ते ना कोई आल मारे। उसका डूंगा सैना के पीछे डिंगी जी लकड़ी लेके मैं भी कई बारी कूड़ा मूड़ा की आल मारी, पर सिंधी दे धंधा ना अपने तरह देख के कई बारी आल सट के इस तरह लठो जिस तरह टीपू सुल्तान ना देखे अंग्रेज जनरल मेजर बेली सचा मुचा की तोप सट के मैदान जंग से नठो थो। आए अग लगे इस नस पाजना या बस्ता करा ना सड़े ते बस्ता दिलन चढ़े। चाची सैदो ने बाढ़ के पनी जे सारी सिंगेरी बेटरी होगी। फरोजू धंधा ते रुड़े हो लतीफी बना दे पर चले गयो गरीबो बीमारी ते बुढ़िया मने मारियो ते गुलामो अज भी ठेला खाए थी। बेचारो जमान बूटा दे सो चढ़ियो जे कबर ही मजा जंगली मारी। उसका कुंजूसी का जुड़िया वा मेखा ते आलों का पैसा ते मारा दे सालो साल नहीं मिटालिया की ले ली ते बकरोटी। प्रकाश सीतिया और रामा इसरा बनो ही जिसरा हथ की तेरी ते तो आगे मेरी। जमान ने जिड़ी लेली मेरा ते कतराई वह भी मारा ही ते साल एक पहले अंटाली के लिए भी थी। उस रात जमान में ना जिद करके अपने घर ले गयो एनु पहला जी बसा की रोप थी कि जी को जी तेरा पहला बसो हुआ थो बसो ता याद है कि उस दिन बुढ़ो चाचो गुरियो नहाये थो त्यार गुरिया को पता हुआ कि ते बसवाई वाले दिन शिनान करे थो। खैर शिनाना ते पूजा की उसने खास लोड भी नहीं थी। मैल का खेपड़ा ने शक्लो ही मार के वो काली माता को खास भक्त बनाये वो थो। हूं उस रात लोहारन के कदे मेहमान शाही नहीं ते ता आजी सुलेमान को पूत होने की वजह से मेहमान सुलेमान जरूर थो। बड़ी खातर तवाजी हुई। चाची सैदो ने बां कुमाई कोल बसलियो। चाचा फरोजू ने मथा पर प्यार दे तो लतीफ ने खेडन वास्ते छिकी हो मौसी गुलामों को एक छूटो की ना ते एक गल मेरे नाल किनी पढ़ना है अठवी। मैं इस तरह आकड़ के जवाब देता हूँ जिस तरह मैं PhD कर ली वे। फिर दूजो उकीना छूटो लागे कुथे मोगले। मैं इस तरह गर्दन चाह के जवाब देता हूँ जिस तरह हूँ लंदन दे बोल रहे हो तो। फिर एक आख नूट के ते निकल जो ठेलो मार के पूछियो बिया कुथे कर से ना ना। मैं इस तरह सिर लायो जिस तरह मैं पक्को सन्यास ले लियो। मारे डिरे खुली चाह बने हुई थी व निमकी ए दो ही प्याली बनी वर मुझ मिठी गुड़ पमे कालो थो वर जीभ न डटो स्वाद आयो। जमान ने रात को कुटुंडो को आयो फातमा ने बनायो पानी इतनो करियो जिसरा बगी काकी गो सरबड़ को चाड़ो पतीलो है वर हुई खुश नसीब थो जिसना सालम चौड़ी आई कना टपुर में कहीं नचरा टीवी नहीं थी आई। इस राह की खिदमत मेरी कदी अपने डेरे नहीं थी हुई हर कोई मेरे आगे पीछे फिरे थो। अपना वजन ते कीमत को पार को पतो मैंने उससे चले हो जा दू खा पी गए कुन चीकनी जी खटके पर रात सुतो पर सख्ती पूछ के नहीं आती। जबान मेरी खट पर दमन धरा बैठो ते कहने लगो खान ले ली दी मोनी करी दी मैं क्यों मैं कदी पेड़ नहीं कतरी। इतना चाची सैदो बोली कहने लगी खान सुकूली मुंडा है इस कदो पेड़ कतरिया आपू ममसेन कतरी दे सी। जबान ने जवाब दितो ममसेन इंसी मकन अपथ नाले तमना ना पूरा लिहाजा कुछ उनकी मजबूरी ते कुछ अपनी शौक ऊंच तैयार हो गयो। मारे साल में त्रै बारी पेड़ कतरी वे थी एक बारी मंगर एक बारी चैत ते एक बारी पादरा मा पर मैं पेट कतरी छोड़ कदी गिनी भी नहीं थी। मेरा दिल ने क्यों खान यो ही मौको है ऐसी जाट सिख पेट कतरी गई ते पेट कतरन को है भी किए कात मार के ओनी लड़िए ते जाच ऐसी सिख आता पादरा मन रलम मामा यूनस पाई ते खाना काका और नमा दी छू। जमान मुझ खुश हुआ मैं उठ के तलन में एक चादर सटाई पेट गुड़ाई कात आत्मा लई ते एक सुई ते रेती कोल तराई रकात कितने खुंडी ना हो जाए। वे सारा इलाज सोचिया जिड़ा मारे पेट कातरा करी में था लतीफ ने दियो पकड़ायो ते बाकी सारा ना उन चुन वास्ते चिहरी बसाड़ियो एक मेलो लग गयो जिस राह पेट कतरो नहीं बल्कि नादर शाह पर हमलो करने लगो थो पर महमूद शाह रंगीला नाड़ू तावड़ो ही पिछा अट गयो। हूं सोचन लगो पहला पेट कातरी की तो शुरू करूं फिर कातरन का तरीका शरीका याद किया फिर सोचो चलो कंड की लमी लमी पहला कतर लियो तो बाद में देखांगा। पर वह गल मैंने सारी और नहीं पुरसे लेटे एक चुंडी में पकड़ कर जिसी में कात मारी क्रिचू हो इतनी ज्यादा पेट की चमड़ी मेरी चुंडी में आ गई। पड़ी हुई बुजुर्ग पेट तड़फन लगी तरत देखे हूं शिष्टर हो गयो जमान कर लायो हाय पेट भरी गई पेट न सूट तो एक ही छाल मारी ते कणक मजा बड़ी जी जमान का पैर में बस सुई चढ़ गई गड़ा पुगो ते दियो बिस्तर पर गिरी हो तो बिस्तर न आग लग गई एक रुआस पै गयो निका निका जद की पेट वास्ते रोन लगा आए सड़ी ले ली मैं तो आई लाई कोयला सटो
महाराज जब भी कोई पेट किसी ना कतरतन टोक रखे तो देंगे पीस के।

0: में था। फातिमा द्वारी कोठी थी, दौड़ के कोयला की बोरी तो ले आई और उस पर रात रहो नच नच के हम सारा काली माता का खास भक्त बन गया ते गुड़िया का चाचा का भाई बन गया। इचरा ना देखियो कि बिस्तरा ना आग ने काम कर लियो। लोग दौड़िया आग बुझाई, इससे पहला कि मेरे भी दो चार पटकार लगता हूँ नठो ते रातों रात अपने घर जा पुछे।
1: तो बायोडाइवर्सिटी ने क्या चार साल के बाद जो डाटो वो पेश क्यों जाए, इसके अलावा तुम देखो कि इस वक्त IUCN की रेड लिस्ट में जो है वो 55,926 से ज्यादा स्पीशीज डॉक्यूमेंट की गई हैं और उसमें 25,000 स्पीशीज करंटली बिल्कुल ना स्टडी की गई, उनकी इन्फॉर्मेशन जी है कॉलोजी जी है उनकी पॉपुलेशन साइज की है उनकी थ्रेट्स जो है किस किस्म के हैं उनको ये सारी स्पीशीज जी है ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप पर जी में दसी गई हैं। इसके नाल ही हमारा प्रोग्राम को विलम मुख्य प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी तमना दी इजाजत। अच्छा जी रब राखो।
2: समीन भी आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 5:50 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए गोजरी में खबरें।
1: आदाब, जो आकाशवाणी से नगर है, खबरों को बुलेटिन लेके आऊं अल्ताफ अहमद। पहला अहम खबरों की सुर्खी, मुल्क में शहरियत के नाल या किसी शख्स ने गैर मुल्की करार देन को अमल मुनसिफाना और इंसाफ का असूल पर मबनी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। भारत की तामीर और तरक्की में साइंसदाना और रूहानियत का पेशवा को कलीदी रोल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुनर सिन्हा को लल देर लिटरेचर अवार्ड तो मुतलिक मनकदा तकरीब में इजहार ख्याल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू वास्ते सालाना MBBS की मजीद 50 की नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी तय। श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला में आज और 20,000 तो ज्यादा यात्रियों ने कियो पवित्र गुफा में शिवलिंगम को दर्शन। उन तफसील के नाल खबर सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला में कहा कि किसी भी शख्स की शहरियत के नाल या उस न गैर मुल्की करार देन को अमल मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना और उसूल के मुताबिक होना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने आसाम का फॉरिनर ट्रिब्यूनल्स और गुवाहाटी हाईकोर्ट का उन फैसला नहीं मान्यो जिनके तहत 27 बंदा ने गैर मुल्की करार दिता गया था। अदालत उज़्मा ने हदायत दी है कि उन सारा मुकदमा की दोबारा समात फॉरिनर ट्रिब्यूनल्स में की जाए और इस दौरान दरख्वास्त गुजारा के खिलाफ कोई भी सख्त या जबरी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत की सारा तो बड़ी ताकत इसकी अजीम रूहानी साइंसी और सकाफती शनाख्त है और उन इस अजीम तहजीबी विरासत ने जम्मू कश्मीर का नौजवाना की खुद इंसारी और यूटी की तामीर वस्ते बढ़ावा देने को वक्त आ गया है। वे लाल देर लिटरेचर अवार्ड और डॉक्टर वेदी तमन की तसनीफ लाल देर द मदर ऑफ कश्मीर की रस्म रनवाई की तकरीब तो खिताब कर रहा था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा असलाफ ने साइंस और गहरा रूहानी इकदार में बराबरी कायम करके जो साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की वास्ते साइंसदाना और रूहानियत का पेशवा दुआ की जरूरत है।
2: एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवित्री ललदेव के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सदियों पहले रचे गए ललदेव के वाक आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते। डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललदेव को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है।
1: मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों की अपनी तहजीबी जड़ा ना जोड़नों और उन ना मकसद के नाल हद तो बार सोचने की तरकीब देनों अदीबा की जिम्मेदारी है। तकरीब में उत्तराखंड का साबिक वजीर आला तीरथ सिंह रावत, पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा और की मुमताज़

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर

0: और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अगर मीडियम वेव अक्सा सख्त तो शुरू किलो हर्ट्ज तो एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पे 5 मिनट पेट शबजे समीन पेश चु प्रोग्राम गर्मी बाइन हिंद खतर
3: ہم سی احسان رو
4: تو اہس منت
3: پنس ٹھس نبی رحمت
4: صلی اللہ علیہ وسلم
3: یہس امتی خدا وند کریمن بنائے تاز پیغمبر تم دپا کاش امتی
4: بے شک پیغمبر کر
3: پیغمبر دپان نہ امتی
4: ٹھس
3: نبی رحمت
4: صلی اللہ علیہ فرما صاحب صلی اللہ
3: علیہ
4: وسلم

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सब 6 करोड़ लोग 5 साल लक्षण ताम मुफ्त इलाज हकदार वनिकताम चु 2 करोड़ इलाज सपुद यम सीत गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षण करोड़ हंस बचत सब अस करियो आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनायो आयुष्मान कार्ड जानकारी बापत करियो 8455555 फोन नंबर।

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे आज के खास मौसवात हैं 13 जुलाई को लेकर सियासी जमातों का रद्दअमल बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के इल्जाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का किया ऐलान पहलगाम में हफ्ते को बादल फटने के वाक़े में कई होटलों और दीगर इमदाद को नुकसान डोडा में सैलाबी रेलों से मुतासर हुए कुम्मू और ताजरों के लिए खसूसी

0: पैकेज का मुतालबा। बारामूला में जाली कोर्ट आर्डर और डिग्री का मामला आया सामने। और भी मौजूदात हैं आज की शेयरबीन में, एक वक्त के बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई, SKICC श्रीनगर। चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
3: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरी शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
4: तो क्या शक्ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
3: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
4: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
3: मगर यह है आज सठा द्रो?
4: हाँ ना ना सुई कमत मज मुश्क ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
5: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनायु सेहत मंद। प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस मज दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन हिं जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट।
6: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
7: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
8: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
7: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
8: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू।
0: सामीन, त्रार सब डिवीजन के सूफीगुंड इलाके में बंदरों ने कोहराम मचा रखा है और लोग घरों से बाहर आने में खौफ महसूस कर रहे हैं। सूफीगुंड की आबादी का कहना है कि बंदर न सिर्फ उनके बल्कि उनकी फसल और दीगर इमला के दुश्मन बन चुके हैं।
9: अपील मेहरबानी तो मेहरबानी कर कंट्रोल रूम अत सूचित योर हम पंजन दिमो छको सतो तंग अच्छा कहें सब्जी कुल गरस मज ना बना सुबह नो सुबह लग बच्चे सत यार सदी हज पोस पत् कहें तुम बचो कर
0: सोपीगुंड त्राल के लोगों की फरियाद। इधर बांडीपुरा जिले के कई देहात के लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहां दरख्तों से छाल उतारने का सिलसिला कई रोज से जारी है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें अंदेशा है कि ऐसा जंगली दरिंदे कर रहे हैं और इस अमल से मेवा दरख्त अब सूखने लगे हैं। मुतल्लिका महकमों की तरफ से उनकी मामनत नहीं की जा रही है। फिरदौस की रिपोर्ट।
10: जिला बांडीपोरा के मुतजिद इलाकों जिनमें अरिन, सुमलर, धर्मामा और दीगर देहात शामिल हैं, गुजश्ता कई माह से सेब के बागात में एक पुरस्तार सिलसिला जारी है। नामालूम अनासर या जंगली जानवरों की जानिब से सेब के दरख्तों की छाल उतारे जाने के वाकात मुसलसल आ रहे हैं, जिसके बाद बाग मालकान को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मकामी बाग मालकान के मुताबिक रात की तारीखी में सेब के दरख्तों की छाल इस तरह उतारी जा रही है कि दरख्त आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगते हैं, जिससे न सिर्फ मौजूदा फसल बल्कि आइंदा कई बरसों की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। उनका कहना है कि ये सूरत हाल उनके लिए शदीद तशवीश और खौफ का बास बन चुकी है। बाग मालकान का कहना है कि उन्होंने इस मामले को पुलिस के इल्म में भी लाया और कई मरतबा मुतलिका हुकाम से

0: चुकी है कि गाड़ियों को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है, जबकि ड्राइवर और मुसाफिर हर वक्त अपनी जानों को खतरे में डालकर सफर करने पर मजबूर है। अवाम का इल्जाम है कि मुतलका महकमा ने इन सड़कों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है और इनकी बरवक्त मरम्मत या बहाली के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि बल छबरा सड़क 2005 से जेर तैमीर है, लेकिन दो दहाइयां गुजरने के बावजूद आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसे इलाके के अवाम में शदीद मायूसी पाई जाती है। मुकामी बाशिंदों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, जिला इंतजामिया रियासी, मुतलका महकमा और ग्रिफ हुकाम से मुतालबा किया है कि इन अहम सड़कों की फौरी मरम्मत और तमीराती काम को तेज किया जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो, हादसात की रोकथाम मुमकिन बन सके और दूर दराज इलाकों के लोगों को महफूज और बेहतर सफरी सहूलियत फराहम की जा सके।
1: आपने जायद मलिक की रिपोर्ट सुनी। सामी रामबन जिले के चंद्रकूट लंगर पॉइंट के नजदीक आज सुबह दो मिनी बसों के दरमियान टक्कर में ड्राइवर समेत कम से कम 8 अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस के ब्रेक मुबैन तौर पर फेल हुए, इसके नतीजे में वो सामने से आ रही दूसरी बस के साथ टकरा गई। हादसे में ज्यादातर मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि ब्रेक फेल होने वाली गाड़ी का ड्राइवर शदीद तौर जख्मी हुआ है। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। अब एक और मौसू। सैनिक स्कूल मानसबल के तलबा के वालिदे ने स्कूल में गुज़श्ता एक साल से मुस्तकिल प्रिंसिपल की अदम तकर्री पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से जल्द अज जल्द मुस्तकिल प्रिंसिपल तैनात करने का मुतालबा किया है। वालिदैन का कहना है कि इस वक्त कायम मकाम प्रिंसिपल बैक वक्त चीफ एजुकेशन ऑफिसर को पाड़ा डाइट गांधरबल के प्रिंसिपल और सैनिक स्कूल मानसबल के इंचार्ज प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और इस वजह से स्कूल के इंतजामी उमूर और तालीमी सरगर्मियों को मतलूबा तवज्जो नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इदारे के तालीमी मयार नज्म जब्त और मजमू तरक्की को बरकरार रखने के लिए मुस्तकिल प्रिंसिपल की फौरी तौर तकर्री नागजीर है। वालदेन ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी जायज दरखास्त पर फौरी तौर गौर किया जाएगा। जीडीओ जम्मू कश्मीर के सदर जेएम शाहिन की सदारत में आज एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें शोपियान जिले के मुंतजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शोपियान में बुनियादी सहूलियात के फुकदान का मामला भी उठा और जेएम शाहिन ने यकीन दिलाया कि शोपियान में लोगों को दरपेश मसाइल मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने पंचायत इलेक्शन की तैयारी पर भी जोर दिया। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौसवात मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरा समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है, आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में, जहां मिलेंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स, साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, लिटरेरी सेशंस, डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए। 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर, चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर। टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड।
4: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
5: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
6: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।

0: दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर मे विटामिन ई तो विटामिन बी हिच कमी द्राम
2: तो क्या शक्न फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलुक इस्तेमाल करान
1: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छु
2: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छु बराबर मकदारस मे त्रावन विटामिन ए छु सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छु अड़जी मजबूत करान दूध तो तेल छु बराबर मकदारस मे
1: मगर ये है आज सठा द्रोग
2: हाँ ना ना सुई कमत मज मुशक टेस्ट सुई छु बेहतर पोषण दिवान
3: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस मज दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन जानकारी खतर करो www.ffrc.fs

0: زٕ ساس شَتوُہَس منٛز شٲمِل سَپٕدمٕتۍ ٲسۍ تہٕ یوٗنیورسٹی ہِنٛدٮ۪ن اَنڈَر گرٛیجویٹ پرٛوگرامَن منٛز دٲخلہٕ حٲصِل کَرُن یَژھان آسَن ہٮ۪کَن یوٗنیورسٹی ہِنٛدِس ایڈمِشَن پورٹَلَس پٮ۪ٹھ آن لاین رجسٹریشن کٔرِتھ. یہِ عمل سَپُد 7 جُلاے پٮ۪ٹھ شروٗع تہٕ روزِ 19 جُلاے تام جٲری. فیٖفا عالمی کَپ 2007 چھُ سیمی فاینَل کِس مرحلَس منٛز دٲخل سَپُدمُت. گۄڈنیُک سیمی فاینَل یی بۄدوارِ دۄہ فرٛانٛس تہٕ سپینَس درمیان گِنٛدنہٕ، ییٚلہِ زَن دوٚیِم سیمی فاینَل برٛیسوارِ دۄہ اِنٛگلینٛڈ تہٕ اَرجنٹیناہَس درمیان گِنٛدنہٕ یی. محکمہ موسمیات کہِ اطلاع مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرَس منٛز یِنہٕ والہِ 24 گھنٹَن دوران کُنہِ کُنہِ جایہِ ہلکہٕ پٮ۪ٹھٕ درمیان درجُک روٗد یا گگراین وزمن سان رُدٕ پھیٖر والنُک اِمکان. سرینگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیَس تہٕ راتھ روزُن کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ. سرینگرَس چھُ پگہہ آفتاب کھسنُک وق 5:30، ییٚلہِ زَن آفتاب شامن 7:47 پٮ۪ٹھ لوسہِ. خبر واژ اند. خدا حافظ.
1: मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग.
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है.
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
3: आई नो ना.
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
7: सामिन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है. खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार. पहले अहम खबरों की सुर्खियां. मुल्क में शहरियत का तायुन या किसी शख्स को गैर मुल्की करार देने का अमल मुनसिफाना और उसूली इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट. भारत की तामीर तरक्की में साइंसदानों और रूहानियत के पेशवाओं का कलीदी रोल. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का लालदेद लिटरेचर अवार्ड से मुतालिक मुनाकिदा तकरीब में इजहार ख्याल. सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसन तरीके पर जारी. अब तक करीब 3 लाख यात्रियों ने गुफा में दी हाजिरी. और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कैंसर के चैलेंज से निमटने के लिए एक जामिया और इख्तिराई हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर दिया जोर. अब पेश है खबरों की तफसील. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी शख्स की शहरियत का तायुन या उसे गैर मुल्की करार देने का अमल मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना और उसूल इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आसाम के फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स और गुवाहाटी हाईकोर्ट के उन फैसलों को कालादम करार दिया है जिनके तहत 27 अफराद को गैर मुल्की करार दिया गया था. अदालत उजमा ने हिदायत दी है कि उन तमाम मुकदमात की दोबारा समात फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स में की जाए और इस दौरान दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कोई भी सख्त या जबरी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी अजीम रूहानी साइंसी और सकाफती शनाख्त है और अब इस अजीम तहजीबी विरासत को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खुद इंसारी और यूटी की तामीर के लिए मशेल राह बनाने का वक्त आ गया है. वो लालदेद लिटरेचर अवार्ड और डॉक्टर वैदही तमन की तसनीफ लालदेद द मदर ऑफ कश्मीर की रस्मी रोनुमाई की तकरीब से खिताब कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ ने साइंस और गहरे रूहानी अकदार में तवाजुन कायम करके ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साइंसदानों और रूहानियत के पेशवा दोनों की जरूरत है.
8: एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवित्री ललदेद के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है. सदियों पहले रचे गए ललदेद के वाक आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें यह स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते. डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललदेद को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है.
7: मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों को अपनी तहजीबी जड़ों से जोड़ना और उन्हें मकसद के साथ हदूद से बाहर सोचने की तरगीब देना अदीबों की जिम्मेदारी है. तकरीब में उत्तराखंड के साबिक वजीराला तीरथ सिंह रावत, पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा और कई मुमताज अदबी शख्सियात के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे. चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान यूटी में एक जामिया कैंसर कैरियर हिकमत अमली अपनाने से मुतालिक उमूर का जायजा लिया ताकि यूटी में इस मर्ज के मरीजों को आला मियार की तिब्बी सहूलियात मुयसर हो सकें. चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि कैंसर एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभर रहा है और इस पर काबू पाने के लिए इख्तियारी हिकमत अमली इख्तियार

0: करने की जरूरत है। उन्होंने यूटी के तमाम गवर्नमेंट कॉलेजों में एक फॉल प्रिवेंटिव फ्रेमवर्क वजूद में लाने की जरूरत पर जोर दिया। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में तिब्बी और खुशबूदार पौधों की तिजारती पैमाने पर काश्त करने को यकीनी बनाने से मुतालिक एक रोडमैप का जायजा लिया। इस मंसूबे का मकसद इस शोबे की वसी मुआशी सलाहियत को बरोकार लाना और जम्मू कश्मीर को हिमालयी खत्ते में आला अकदार के तिब्बी पौधों का अहम मरकज बनाना है। मीटिंग में ज़रात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सुकास्ट कश्मीर और सुकास्ट जम्मू के वाइस चांसलर, जंगलात के कमिश्नर सेक्रेटरी और दीगर कई सीनियर अफसर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव कुमार वर्मा ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान यूटी में मुजवजा चुनाव कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतलिक इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग में तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटियों और दीगर मुतालिकीन की शिरकत से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबों के नेटवर्क को मुस्तकम करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है और इसी सिलसिले में जम्मू में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान यूटी भर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबों को मुस्तकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इम्पा श्रीनगर में आज DOPT के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने इम्पा और GAD के इश्तराक से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरों के लिए दो रोजा तरबेती प्रोग्राम की शुरुआत की। कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के तहत मुनाकिदा इस तरबेती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इंतजामिया से जुड़े अफसरों की सलाहत साजी को यकीनी बनाना, नीज आवामी खदमात में बेहतरी लाना है। इस तरबेती प्रोग्राम के बारे में जब हमारे नुमाइंदे सोहेल भट्ट ने इम्पा की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुकाया अमीन के साथ बात की तो उन्होंने कहा
1: जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज जो है उनको इम्प्रूव किया जाए, जो हमारे कस्टमर्स आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनके साथ कैसे पेश आया जाए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस को ही सिर्फ अपडेट करना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ बिहेवियर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और ह्यूमनली पेश आ जाना कस्टमर के साथ जो बहुत ही मायने रखता है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने आज ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। कर्मयोगी के ये मेन कंपोनेंट है। इसमें हमारे आज के प्रोग्राम में तकरीबन 30 पार्टिसिपेंट्स हैं और इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ शुरू किया हुआ है।
0: तरबियत पाने वाली एक ऑफिसर रितिका कोल ने तरबियत के ताल्लुक से अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा,
2: ये प्रोग्राम जो है यूटी जितने भी अधिकारी है हमारे ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके रिगार्डिंग दी जाती है। ये एक व्यवहारिक संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हमारे सिटीजन्स जितने भी है प्राथमिकता देना जरूरी है हमें उनको, और इन सब से क्या होगा एक विकसित भारत के लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं।
0: नेशनल मेडिकल कमीशन ने जम्मू कश्मीर में तिब्बी तालीम के शोबे को मुस्तकम करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए MBBS की मजीद नशस्तों को मंजूरी दी है। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने कॉलेज के लिए 50 सीटों के इजाफी कोटे के लिए मंजूरी के एक खत को जारी किया है। इस तरह से कॉलेज में साल 2026-27 के लिए अब इन सीटों की तादाद 200 से 250 हो गई है। याद रहे कि रवां महीने की 10 तारीख को नेशनल मेडिकल कमीशन ने GMC श्रीनगर के लिए भी MBBS की 50 इजाफी सीटों को मंजूरी दी थी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों बालतल और पहलगाम से अहसन तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। आज दोपहर 5 बजे तक 24,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। दर्शन करने वाले यात्रियों में से बेशतर अपने अपने घरों को लौट गए हैं और वो यहां की बेमिसाल खूबसूरती और मेहमान नवाजी से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। दरियासना 7,754 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल 12वां काफिला आज वादी पहुंच गया, जिनमें से 2,896 बालतल जबकि 4,858 यात्री पहलगाम के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। ये इस ریڈیو پروگرام کا 136واں شمارہ ہوگا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی آرا

और तजावीज 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800, नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करके अपनी आरा और तजावीज बराए रास्त वजीर आजम को भेजे जा सकते हैं। श्रीनगर में आज महकमा ज़राअत की तरफ से एक रोज़ा ज़िलाई सतह का वर्कशॉप कम एग्जीबिशन का इनेकाद हुआ, जिसमें कमरवारी, ब्रेन और हारवन जोन के किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वर्कशॉप की सदारत नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने की। इस मौके पर उन्होंने दीही इलाकों में इक़्तिसादी तरक्की में बदलाव लाने के हवाले से बागबानी शोबे के रोल को उजागर किया। उन्होंने फ्लैगशिप हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दस्तियाब मौके से मुतलिक भी किसानों को जानकारी फराहम की। यूटी में जारी 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने आज सोपोर में एक मफरूर मनुष्यात स्मगलर की 1 करोड़ रुपए से जायद जायदाद अटैच की है। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक ये जायदाद मोहम्मद अशरफ मीर साकना जामिया कदीम सोपोर की है, जो कि इस वक्त क्रांक शिवन कॉलोनी निगीनबाग बी सोपोर में रिहाइश पजीर है। मजकूरा शख्स कई एनडीपीएस केसों में मुलवस है और अब तक फरार है। दरिया स्नान नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस स्टेशन कलामाबाद में एक थाना दिवस का इनेकाद हुआ, जिस दौरान मनुष्यात के मुजिर असरात, अवामी हिफाजत, ट्रैफिक मैनेजमेंट और नौजवानों से मुतालिक फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ मामलात जेर बहस आए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज श्रीनगर में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी महिला मोर्चाओं के जिला सदूर की एक मीटिंग मुनक्कद की। इस दौरान महिला मोर्चा के तंजीमी ढांचे के साथ साथ वादी में पार्टी के प्रोग्रामों की मौसर अमलावरी से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अशोक कौल ने इस मौके पर कहा कि खवातीन को पार्टी के तंजीमी ढांचे में कलीदी अहमियत हासिल है और खवातीन जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में एक अहम किरदार निभा रही हैं। 13 जुलाई की मुनासिबत से आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अलावा पार्टी के कई दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों के हकूक को तहफ़ देने के लिए काम करती रहेगी। इधर इंतजामिया ने शहर खास में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए थे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने पार्टी के रहनुमाओं से तलकीन की है कि वो पंचायती चुनाव की तैयारियों में सुरत लाए। वो आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर शोपियां से आए एक वफ्द से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आवामी मसाइल को उजागर करने की जरूरत पर भी जोर दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने तालीमी साल 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों के दाखिले के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। उम्मीदवार जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 में शामिल हुए हैं और यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के ख्वाह हैं, से कहा गया है कि वो यूनिवर्सिटी की एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। यह अमल जो 7 जुलाई से शुरू हुई है 19 जुलाई तक जारी रहेगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरकारी शोबे के बैंकों पर जोर दिया है कि वो बैरूनी मुल्क मुकीम भारतीयों तक अपनी रसाई मजीद बढ़ाएं और इनके लिए जदीद और पुरकशिश डिपॉजिट मसनूआत मुतारिफ कराएं। इन बातों का इजहार उन्होंने आज नई दिल्ली में बैंकों और अवामी मालियाती इदारों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों से गैर मुकीम भारतीय बैंक, गैर मुल्की करेंसी डिपॉजिट्स और ओवरसीज फॉरेन करेंसी कर्जों के स्वीप इकदाम पर तबादला ख्याल के दौरान किया। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 कल से भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इस 4 रोजा तकरीब के दौरान टेक्सटाइल्स, फैशन, देरपाइयत, टेक्नोलॉजी, इक्तरायत, सरमायाकारी और बैन अल-अक़वामी तिजारत में भारत की बढ़ती हुई आलमी लीडरशिप की अक्कासी की जा रही है। तकरीब के दौरान कारखानादारों, बरामदकारों, आलमी खरीदारों, सरमायाकारों, पॉलिसी साजों, बैन अल-अक़वामी वफूद, कारीगरों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी दस्तियाब कराने वालों को एक मुश्तरका प्लेटफार्म फराहम होगा। महकमा इतलात व तालुकात अमां ने दुनिया भर के फिल्म साजों से जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में शिरकत के लिए फिल्में तलब की हैं। फिल्में 31 जुलाई 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं। मुतलकिन से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में मजीद जानकारी वेबसाइट www.iffjk.org से हासिल करें। वाज़ह रहे कि जम्मू

उन्होंने दावा किया कि पीओके में कई दिनों से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हुकाम ने यह भी कहा कि सूरत हाल मुकम्मल हद तक वाजिया नहीं है क्योंकि इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं और मीडिया तक रसाई को सख्ती से रोक दिया गया है। एहतजाज करने वाली जमातों ने बैनुल अक्वामी इदारों पर जोर दिया है कि वो खित्ते का दौरा करें और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मकामी आबादी के खिलाफ किए जाने वाले मुबैना मजालिम का आजादाना तौर पर जायजा लें। JAAC ने इल्ज़ाम लगाया कि खित्ते के लोगों को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों रियासती सरपरस्ती जबर का सामना है और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो सूरत हाल का नोटिस लें और बात करें। अब ताज़ा अल्टीमेटम के साथ भारतीय एजेंसियों का ख्याल है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिश इससे भी ज़्यादा जारहाना अंदाज अपनाएगी। हुकाम ने खबरदार किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को तेज़ कर सकती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी मुतालबे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और वह एजिटेशन को दबाने के लिए बड़ी हद तक जाने के लिए तैयार है। समीन इस मामले पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप और हम समाप्त करते हैं ये फिल्मी नगमा।

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शिद्दत इख्तियार कर रहे एहतजाजों और पाकिस्तान

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। सामीन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से। मरकजी हुकूमत वसी बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और समाजी व इक्तिसादी इकदाम के लिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सरगर्म अमल है। मरकजी और मकामी हुकूमतें इलाके में शिफाफ तर्ज हुक्मरानी, सेहत की देखभाल की नई सहूलियात और इक्तिसादी मौके लाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। चंद साल पहले तक जम्मू कश्मीर को दुनिया के सामने बिल्कुल मुख्तलिफ रोशनी में पेश किया जाता था, ताहम आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तारीखी फैसलों के बाद जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन एक खत्ते के तौर पर देखा जाता है, जिसकी शिनाख्त अमन और इसके भरपूर सकाफती वर्से से होती है। मरकजी हुकूमत खत्ते के अमीर वर्से और सकाफत को बहाल करने और इसे दुनिया के सामने पेश करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के नौजवान और ख़वातीन, जिन्हें कभी एक अलग नज़र से देखा जाता था, अब वो अपनी अलग शिनाख्त बना रहे हैं और अपनी मेहनत और अज़्म के ज़रिए कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सियाहत को मजबूत बनाने के लिए मरकज़ की तरफ से की जाने वाली कोशिशों से यकीनी तौर पर लोगों की ज़िंदगियों पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे हैं। वज़ीर आज़म के विजन के तहत ख़वातीन को इज़्ज़त और मौके मिलते हैं। हुकूमत ने नौजवानों, ख़वातीन और समाज के तमाम तबका में वक़ार और ख़ुद एतमादी का एहसास पैदा किया है। उन्हें मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने की

0: इस फिल्मी नगमे के साथ ही प्राम वारी की आवाज़ का आज का अपना वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे लेते हैं इजाजत, खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूज़ा।

आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत सब 6 करोड़ लूक 5 लक्षन तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तम 2 करोड़ इलाज सपुद यम सत गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षन करोड़ हज बचत सपुद अव आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनव आयुष्मान कार्ड जान।

0: इंतकाम,
1: नई पहचान।
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 8:30 हुए हैं। समीन पेश खिदमत है खेलों से मुतलिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम।
0: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव में दाखिल। सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल, यानी अब महज चार टीमों के माबैन फैसला होना बाकी है। दरअसल ये वो चार टीमें हैं जो इससे कबल भी वर्ल्ड कप का खिताब हासिल कर चुकी हैं। अर्जेंटीना दिफाई चैंपियन है और वो कुल मिलाकर अभी तक 3 मरतबा आलमी कप का खिताब हासिल कर चुकी है। यूरोप का पावर हाउस होने के बावजूद फ्रांस को पहला खिताब हासिल करने के लिए कई दहाइयों का इंतजार करना पड़ा। बिलाखिर पिछली सदी के दौरान खेला गया वर्ल्ड कप का आखिरी एडिशन फ्रांस ने हासिल किया, जब इसने अपनी सरजमीन पर ब्राजील को फाइनल में बआसानी 3-0 से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप फुटबॉल के चैंपियन बनने का शरफ हासिल किया। इसके बाद फ्रांस ने फुटबॉल की तारीख भी बदलनी शुरू की। फ्रांस को इस बात का एतमाद होने लगा कि वर्ल्ड कप के दौरान अब वो बड़े मुकाबलों और बड़ी टीमों को हराने की सलाहियत और तरीकेकार से वाकिफ हो चुका है। यूरोपीय ममालिक की बात करें तो इससे कबल बेशतर या यूं कहिए कि वर्ल्ड कप की सारी ट्रॉफीज जर्मनी और इटली की जोली में चली जाती थीं। 2006 के वर्ल्ड कप में फ्रांस ने एक मरतबा फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां पेनल्टी शूटआउट में इससे इटली के हाथों 5-3 से हार का सामना करना पड़ा। रशिया में मुनक्किद 2018 के एडिशन के दौरान इसने क्रोएशिया को आसानी फाइनल में 4-2 से हराकर महज 2 दहाइयों के दौरान दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप का टाइटल हासिल किया, जबकि पिछले यानी 2022 के आलमी कप में फ्रांस को फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। अगर इस बार फ्रांस की टीम स्पेन को हराकर फाइनल में पहुंच जाती है तो यह मुसलसल तीसरा मौका है जब फ्रांस को हम वर्ल्ड कप के फाइनल में देख सकते हैं। फ्रांस अब न सिर्फ यूरोप बल्कि आलमी फुटबॉल का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन चुका है। दरअसल फ्रांस ने ही आलमी कप फुटबॉल में जर्मनी और इटली की मुतवातिर बालादस्ती को तोड़ दिया है। इसने यूरोप की दूसरी टीमों को भी इसके लिए इंस्पायर किया है। इसकी अहम मिसाल स्पेन है। स्पेन ही दुनियाई फुटबॉल का वो मुल्क है जहां की लीग्स में दुनिया के अजीम फुटबॉलर शिरकत कर चुके हैं या अब भी कर रहे हैं। यूरोपियन फुटबॉल का एक बेहद मजबूत मुल्क होने के बावजूद स्पेन पिछली सदी के दौरान महज एक मरतबा किसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। आज से 76 वर्ष कबल 1950 में स्पेन पहली और आखिरी मरतबा ऐसा कर पाया था। ताहम फ्रांस की पहली कामयाबी के महज 12 साल बाद ही यानी 2010 में स्पेन ने भी आलमी चैंपियन बनने का शरफ हासिल किया। दूसरा सेमीफाइनल जो कि दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और एक लंबे अरसे से वर्ल्ड कप की दूसरी ट्रॉफी का इंतजार कर रही इंग्लैंड की टीमों के माबैन खेला जा रहा है, इस पर आगे नजर डालेंगे। पहले बात ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की, जिसमें खवातीन के जुमरे में एक मरतबा फिर एक नई चैंपियन सामने आई है, जबकि यैनिक सिनर अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो गए। इस पर एक तफसीली रिपोर्ट के साथ हमारे साथी महराज मलिक।
3: लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब के ग्रास कोर्ट्स पर खेला गया विंबलडन 2026 टेनिस की तारीख का एक ऐसा बाब है जो शायकीन के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। मर्दों और खवातीन के सिंगल्स फाइनल ने हैरत अंगेज कमबैक्स, जज्बाती लम्हात और शानदार खेल के जरिए टेनिस की दुनिया को हैरत में डाल दिया। दुनिया की नंबर एक इटालवी खिलाड़ी जेनिक सिनर का मुकाबला आलमी नंबर 2 जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से हुआ। ये एक ऐसा मुकाबला था जो 3 घंटे और 46 मिनट तक जारी रहा और हर लम्हा सांस थामने वाला था। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव महज कुछ देर कबल ही फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतकर इंतहाई खतरनाक फॉर्म में विंबलडन खेलने आए। उन्होंने पहले सेट के टाई ब्रेक में जेनिक सिनर को जेर किया, मगर सिनर की शानदार सर्विस और जहनी पुख्तगी ने बिलाखर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला सेट हारने के बावजूद सिनर ने शानदार वापसी की। उन्होंने एंड्रू ज़्वेरेव को शिकस्त देकर अपना विंबलडन टाइटल कामयाबी से दिफा किया और करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। खवातीन के सिंगल्स फाइनल में चेक जमहूरिया की 2 मायानाज खिलाड़ियों के दरमियान एक आसाबी शिकन और ड्रामाई मुकाबला देखने को मिला। 21 साल लिंडा नोस्कुवा ने अपनी तजुर्बाकार हमवतन कैरोलिना एलेना मोचोवा को शिकस्त देकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल हासिल किया। अलेक्जेंडर ज़वेरेव का विमेल्डन में ये अब तक का बेहतरीन सफर था। वो इससे कबल विमेल्डन के चौथे राउंड से आगे कभी नहीं बढ़ सके थे, मगर फ्रेंच ओपन की फतह के एतमाद ने उन्हें इस साल

0: फाइनल तक पहुंचाया। उनकी ताकतवर सर्विस और लंबे कद का फायदा ग्रास कोर्ट पर नुमाया था। हर राउंड में उन्होंने अपने हरीफों को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी और साबित किया कि वो ग्रास कोर्ट्स पर भी उतने ही खतरनाक है जितने क्ले कोर्ट्स पर। जैनिक सिनर पूरे टूर्नामेंट में बादशाहत के अंदाज में खेले। फ्रेंच ओपन में जल्द बाहर होने के बाद उन्होंने विंबलडन के लिए खुद को शानदार तरीके से तैयार किया। उनकी सर्विस और बेसलाइन गेम हर राउंड में बेहतर होती गई। सिनर का विंबलडन 2024 का सफर हर राउंड में मजबूत होता गया। इब्तदाई राउंड से लेकर फाइनल तक उनकी कारकर्दगी में कोई कमी नहीं आई। कैरोलिना मोचवा का सफर भी उनकी जिस्मानी और जहनी मजबूती की अकासी करता है। वो इससे कबल 2023 के फ्रेंच ओपन फाइनल में भी खेल चुकी थी और यहाँ भी उन्होंने अपने तजुर्बे का भरपूर इस्तेमाल किया। फाइनल में दूसरे सेट का कमबैक उनके तजुर्बे और आसाब की बेहतरीन मिसाल थी। लिंडा नोस्कोवा का फाइनल तक का सफर वाकई मौजजाती था। तीसरे राउंड में सुवर्णा क्रिस्टी के खिलाफ सख्त मुश्किलात दरपेश रहे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय वो मैच जीता। ये लम्हा उनकी जहनी मजबूती की बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद हर राउंड में उन्होंने अपना खेल बेहतर किया और फाइनल तक पहुंचे। नोस्कोवा महज 21 साल की उम्र में विंबलडन चैंपियन बनी। उन्होंने दूसरे सेट में 5 चैंपियनशिप पॉइंट्स जाया किए, मगर फिर भी जीत दर्ज की। विंबलडन 2024 के फाइनल्स ने दो अलग अलग मगर यकसां दिलचस्प रकाबतें सामने लाई, एक मर्दों की दुनिया में और एक खवातीन की। दोनों मुकाबले पेशावराना होने के साथ साथ दोस्ताना भी थी, जो जदीद टेनिस की खूबसूरती को जाहिर करती है। दोनों मर्द खिलाड़ियों के दरमियान जदीद टेनिस की एक इंतहाई और दिलचस्प तारीख बन चुकी है। विंबलडन 2024 के फाइनल की फतेह अलेक्जेंडर ज़वेरेव के खिलाफ सिनर की मुसलसल 10वीं फतह थी, जिनमें से 5 सिर्फ 2024 के सीजन में आई। मैच के बाद ज़वेरेव ने अपनी रनर अप तकरीर में मजाया अंदाज में कहा, सच कहूं तो अब तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, क्योंकि मैं तुमसे लगातार 10 बार हार चुका हूं। ये मुस्कुराहटों से भरा तबसरा उनकी पेशावराना लेकिन सख्त हरीफाना फजा को जाहिर करता है। खवातीन खिलाड़ियों में ये रकाबत शदीद होने के साथ साथ दोस्ताना भी थी, क्योंकि दोनों हमवतन खिलाड़ी हैं और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में एक साथ डबल्स भी खेल चुके हैं। फाइनल के बाद कैरोलिना मोचवा ने मजाक में नोस्कोवा को अपनी साबिका दोस्त करार दिया, लेकिन साथ ही उनकी जबरदस्त तारीफ भी की। ये रकाबत टेनिस की तारीख में एक खूबसूरत बाब बन गई है। विंबलडन 2024 ने टेनिस की तारीख में कई ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए जो आने वाले बरसों तक याद रखे जाएंगे। ये रिकॉर्ड्स न सिर्फ आदादोशुमार हैं, बल्कि उनके पीछे खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और अजम की कहानियां हैं। सिनर ओपन एरा में विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल का कामयाबी से दिफा करने वाले 10वें मर्द खिलाड़ी बन गए हैं। अलावा अजी इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपने करियर की 100वीं ग्रैंड स्लैम मैच में जीत भी मुकम्मल की। ये एक ऐसा संग मील है जो बहुत कम खिलाड़ियों के नसीब में आता है। महज 21 साल की उम्र में विंबलडन जीतने के बाद लिंडा नोस्कोवा सबसे कम उम्र खातून खिलाड़ी बन गई। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद बरसों तक कायम रहेगा। नोस्कोवा गुज़श्ता 4 बरसों में विंबलडन जीतने वाली तीसरी चेक खातून बन गई। ओपन एरा की तारीख में ये छठी मर्तबा था कि दो हमवतन खवातीन ग्रैंड स्लैम फाइनल में मद्द मुकाबिल थी। आपको बता दें कि जब नोस्कोवा कोर्ट से बाहर जा रही थी तो उनकी नजर मेज पर रखी विंबलडन ट्रॉफीज पर पड़ी। इस एक ख्याल ने उनका जहन मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वो कोर्ट पर वापस आई तो उनके चेहरे पर एक नए अजम की झलक थी। तीसरे सेट में उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ खिलाड़ी का रूप धारा, ज्यादा जारहाना, ज्यादा पुर एतमाद। ये टेनिस की तारीख के लिए सबसे दिलचस्प और नफसियाती लम्हात में से एक बन गया है और साबित करता है कि कभी कभी एक लम्हे का ख्याल पूरे मैच का नतीजा बदल सकता है। ये अमल जहनी मजबूती और खुद एतमादी की अहमियत को जाहिर करता है कि खेल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी भी होता है। नोस्कोवा की वालिदा का 2 साल कबल इंतकाल हो गया था। टाइटल जीतने के बाद जब उन्होंने आसमान की तरफ बोसा उछालते हुए अपनी जीत आनजहानी वालिदा के दाम की तो पूरा स्टेडियम जज्बात से भर गया। ये लम्हा न सिर्फ नोस्कोवा के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए था जो अपने प्यारों की याद में कुछ हासिल करना चाहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फरवरी से मई 2025 के दरमियान जैनिक सिनर पर डोपिंग तनाजे की 22 वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी। ये उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था। मीडिया की तनकीद, शायकीन के शकूक और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल पेश आई। ताहम सिनर ने इस मुश्किल दौर से निकलकर जिस तरह 2026 में अपना पहला और मजमूई तौर पर 5वां ग्रैंड स्लैम जीता, वो उनकी मजबूती की आला तरीन मिसाल है। ویمبلڈن 2026 صرف ایک ٹورنامنٹ نہیں تھا، یہ ٹینس کی تاریخ کا وہ باب تھا جس میں عزم، جدوجہد، جذبات اور شاندار کھیل نے مل کر ایک ایسی کہانی رقم کی جو نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔
1: ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آرچ رائیولز ارجنٹینا اور انگلینڈ کے

0: आवेन खेला जाएगा। अर्जेंटीना दिफाई चैंपियन है जबकि इंग्लैंड दूसरा टाइटल हासिल करने के लिए पिछले करीबन 60 बरसों से इंतजार कर रहा है। वर्ल्ड कप मुकाबलों में इन दोनों ममालिक की राइवलरी की एक अलग कहानी है, तहम इस बार दोनों 24 बरसों के बाद वर्ल्ड कप के किसी बड़े मुकाबले में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों टीमें एक दूसरे की बराबरी पर हैं। एक फुटबॉल का हाई क्लास मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा, अगरचे इसमें दो मुख्तलिफ तर्ज यानी अमरीकन और यूरोपियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल भी देखने को मिल सकते हैं। तहम इसमें राइवलरी, माजी के तलख वाकयात की यादें और जज्बात की इंतहा भी देखने को मिल सकती है। खेल के एतबार से देखा जाए तो इस राइवलरी का आगाज दरअसल 1966 के वर्ल्ड कप के दौरान हुआ, जब क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। दरअसल इस मुकाबले में जर्मन रेफरी ने एक मुतनाज़ फैसले के जरिए अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटन को मैदान छोड़ने का हुक्म दिया। तहम रैटन बाहर जाने के बजाय रेफरी के साथ एक बेहद हीटिंग आर्गुमेंट में उलझ गए। खेल को करीबन 9 मिनटों तक रोकना पड़ा। बिलाकर मकामी पुलिस की मदद से रैटन जबरदस्ती मैदान से बाहर निकाले गए। बाद में रैटन ने कहा कि मुझे नहीं रेफरी की जर्मन और नहीं उनकी अंग्रेजी जुबान समझ में आ रही थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल पाया कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं। इस वाक्य ने फुटबॉल में कम्युनिकेशन के मसले को उबारा, जिसके बाद येलो और रेड कार्ड का वजूद अमल में लाया गया। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड की 1-0 की जीत को थेफ्ट ऑफ द सेंचुरी करार दिया। वाजह रहे कि एंटोनियो रैटन का इंतकाल इसी दिन हुआ जब मौजूदा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में कदम रखा। दरअसल इस राइवलरी ने सियासी रंग 1986 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में लिया। 4 साल कबल यानी 1982 में इन दोनों ममालिक के माबैन फॉकलैंड के तनाजे पर शदीद जंग हुई थी। 74 दिनों तक जारी रहने वाली इस जंग में 900 अफराद मारे गए। ये वो मुकाबला था जिसमें अजीम डियागो मैराडोना ने 2 गोल स्कोर किए, जिसमें एक इनफेमस गोल हैंड ऑफ गॉड गोल कहा जाता है वो भी इसमें शामिल था। जबकि महज 4 मिनट बाद ही इस मुकाबले में मैराडोना ने फुटबॉल की तारीख का शायद सबसे यादगार और खूबसूरत गोल स्कोर किया, जब वो अकेले 60 यार्ड तक गेंद को आगे ले जाने में कामयाब हुए और इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के 5 डिफेंडर्स को भी चकमा देकर गोल स्कोर किया। अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम एल डियागो में मैराडोना ने कबूल किया कि एक गोल इन्होंने अपने स्किल और दिमाग से जबकि दूसरा गोल गार्ड ने उनके हैंड से स्कोर किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये 1982 के फॉकलैंड वार का बदला था। 1998 के वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में दोनों एक मरतबा फिर एक दूसरे के मध्य मुकाबले थे। इसी मुकाबले में इंग्लैंड के नौजवान खिलाड़ी माइकल ओवन ने फुटबॉल तारीख का एक यादगार गोल स्कोर किया। मैच मुकर्रर वक्त के दौरान 2-2 से बराबर रहा, तहम पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने कामयाबी हासिल की। इसी मुकाबले में डेविड बेकहम को रेड कार्ड दिखाकर बाहर किया गया, जिसकी बदौलत रातों रात वो अंग्रेज तमाशाहों की नजर में विलन बन गए। उनका ख्याल था कि इन्होंने एक गैर जरूरी फाउल किया, जिसके बायस इंग्लैंड को 10 खिलाड़ियों से ही खेलना पड़ा। किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में दोनों टीमें आखिरी मरतबा 2002 में एक दूसरे के मध्य मुकाबले थी, जिसमें इंग्लैंड को 1-0 से कामयाबी मिली। ताहम इस राइवलरी को याद रखने के लिए 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान अर्जेंटीना के बेशतर तमाशाइयों ने ऐसे प्ले कार्ड्स हाथ में उठाए थे जिनमें दोनों ममालिक के माबैन हुई जंग और फुटबॉल राइवलरी को दर्शाया गया था। इन प्ले कार्ड्स में डियागो मैराडोना और लायोनल मेसी की तस्वीरें चस्पा थी और कैप्शन में उन फौजियों को याद किया गया था जो उस जंग के दौरान मारे गए थे। अजीम लायोनल मेसी 20 साल के अपने लंबे कैरियर के दौरान पहली मर्तबा इंग्लैंड के खिलाफ फुटबॉल का कोई भी मुकाबला खेलेंगे। तमाशाइयों के जरिए अनऑफिशियल एंथम की आवाजें उन तक जरूर पहुंचाई जाएंगी। यूं फुटबॉल का एक और अजीम खिलाड़ी इस राइवलरी की फहरिस्त में शामिल होगा और वो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनकर इससे आगे बढ़ाने में माविन साबित होगा। आज के स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: समीन, अभी आप खेलों से मुतलिक प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम की मेजबानी अंजाम दे रहे थे एजाज नाजगी। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन, ठीक 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से

संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोप

0: आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब

0: डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73.45 अरब डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर

0: लेते हुए भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का
1: गुड इवनिंग।
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9 बज चुके हैं। समीन पेश है चंद गजलें। आगाज में यह है गुलाम अली की आवाज़।

0: ख्याल करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि अगले दो बरस में उनकी वजारत उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को मुकम्मल करेगी।
1: अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है, और इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले 2 साल में मैं उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ।
0: जनाब गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में सड़क रबते के निजाम को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 63 किलोमीटर तवील 6 लेन पर मुश्तमिल इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के दरमियान सफर का वक्त कम होकर सिर्फ 35 से 45 मिनट रह जाएगा। इस शाहरा पर कार का टोल टैक्स 275 रुपये होगा, जबकि दोपहिया गाड़ियों को दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ये मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है जो खुदकार और तेज मशीनों से रहनुमाई हासिल करने वाली तामीराती टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर किया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक में इस्तेमाल होती है। इस एक्सप्रेसवे पर मस्नूई जहानत, AI पर मबनी रफ्तार की निगरानी का निज़ाम, हर 2 किलोमीटर पर हंगामी कॉल बॉक्स और 24 घंटे काम करने वाले 2 मरबूत कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। ये शाहरा 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के लिए डिज़ाइन की गई है और इस पर रवायती टोल बैरियर मौजूद नहीं है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाबतगियों में नामजद तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज प्रतिभा नारायणन ने हुक्म दिया कि मुलजिमों को दोबारा 27 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया जाए। खसूसी तहकीकती टीम SIT ने भी अपनी छानबीन शेयर करते हुए धर्म सेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। मुजवजा एक मुल्क एक इंतखाब फ्रेमवर्क के इम्कान पर गौर कर रही मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC ने आज लखनऊ में मुख्तलिफ शोबों के शराकत दारों और माहरीन से तबादला ख्याल किया। ये कमेटी मुल्कगीर मुशावरत के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, सिक्किम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्री गंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट और फिर मणिपुर के मशरक जुनूब मशरक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने कल मतला जुजवी अब्र आलूद रहने और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। नई दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: खवातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट जबकि सयाली सतघरे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खवातीन मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और कांसे का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मौजूदा बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद

0: को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नमस्कार श्रोताओं का
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو اخ ساس اکھ تو شرح کلو ہٹس تو ایف ایم اکھ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمین رس سز ساڑھے نو بجے پیش نثار سکڈا۔

0: ये एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अखत शुरा किलो हर्ट्स तो एफ एम अखत त्रशारिया पाँच मेगा हर्ट्ज़न पे समीन रस साढ़े नौ बजे पेश निसार सिकडाफरी सुंद लिखमुत कशुर ड्रामा

राजेश की माँ ने चाय लाकर रखी और बोली, तुम लोग बातें करो बेटा, मैं जरा घर का काम कर लूँ। माँ के जाने के बाद दोनों चाय पीने लगे तो राजेश ने कहा, देखो मीनाक्षी, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, बिल्कुल दुखी हो गया हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी ही छोड़ दूंगा। इन 3 वर्षों में जो काम मैं यहाँ कर सकता था, तुम्हारी वजह से वो कर ही नहीं सका। मुझे खामखा डिस्टर्ब करके तुम्हें क्या मिल जाता है? मैं ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता और उससे तुम्हारी ही कंपनी का नुकसान होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है?

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियां
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: दरअसल ये कंपनी मीनाक्षी के बाप की थी, जिसे अब वो और उसका भाई बलदेव मिलकर चलाते थे। राजेश और मीनाक्षी ने बिजनेस की ट्रेनिंग एक ही यूनिवर्सिटी से ली थी, और ये भी सही था कि मीनाक्षी उसे बचपन से देखती आई थी। हालांकि पैसे के लिहाज से मीनाक्षी से उसका कोई मुकाबला था ही नहीं, लेकिन अपनी शक्ल सूरत और रख रखाव से उसकी शख्सियत खासी पुरकशिश थी। शायद यही वजह थी कि मीनाक्षी बचपन से ही उसकी तरफ माइल हो गई। लेकिन राजेश किसी और लड़की से प्यार करता था, उसका नाम अंजलि था और वो स्कूल टीचर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मीनाक्षी का ये रवैया उसके लिए एक मुसलसल दर्द सर बन चुका था। आज फिर वो दफ्तर में बैठा यही सोच रहा था कि मीनाक्षी से कैसे जान छुड़ाई जाए। अचानक फोन की घंटी बजी, दूसरी तरफ मीनाक्षी थी। उसने कहा कि कुछ जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो होटल एक्सीलेंसी के कमरा नंबर 211 में आ जाए। वो जानता था कि ये कमरा होटल ही के मुस्तकिल इस्तेमाल में रहता है और वहां अक्सर कंपनी की मीटिंगें होती रहती थीं। आधे घंटे के बाद वो दाखिल हुआ तो उसे कमरे में हर तरफ अंधेरा नजर आया। फिर उसकी आंखें इस अंधेरे में किसी बल्ब की हल्की सी रोशनी की आदी होने लगी। उसने जोर से पूछा, कोई है?

गया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मीनाक्षी बोली, अगर जा रहे हो तो मेरी आखिरी बात सुन लो राजेश। मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है और देख रही हूं कि तुम मुझे ठुकरा रहे हो, मगर यह हमेशा याद रखना, और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ दूंगी, खत्म कर दूंगी उसे। राजेश ने उसके चेहरे पर खतरनाक तासुरात देखे तो कांप गया। उस रात राजेश को डरावने ख्वाब आते रहे।

राजेश दूसरे दिन दफ्तर नहीं गया। उसने फोन करके दो दिन के लिए छुट्टी के लिए कह दिया। वो सारा दिन कमरे में ही बंद रहा। शाम को तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो अंजलि को फोन करके वहीं मिलने के लिए कहा जहां वो अक्सर मिला करते थे। ये साहिल समंदर पर एक खामोश कैफेटेरिया था जिसकी तन्हाई सिर्फ नौजवान जोड़े ही आकर रफा करते थे। बाकियों की तरह राजेश और अंजलि भी इधर उधर भटकते रहे। राजेश ने सोचा था कि वो मीनाक्षी का मसला अंजलि के साथ हर हालत में आज डिस्कस करके कोई न कोई हल निकालेगा, मगर लाख चाहने के बावजूद वो ऐसा न कर सका। आसपास का माहौल ऐसा रोमांटिक था कि वो उसमें खो गया। रात जमा होती जा रही थी और आसमान पर खिला हुआ चांद उन्हें मुस्कुरा मुस्कुरा कर तकने लगा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए बस साहिल समंदर पर चलते रहे।

लेकिन सनोवर पार्क में पहुंचकर जब राजेश ने अंजलि को मीनाक्षी का मसला सुनाया तो दोनों का मूड ऑफ हो गया। मसला ऐसा था कि किसी के पास कोई हल था ही नहीं। सारा दिन यूं ही निकल गया। शाम को वापस आए तो किसी के चेहरे पर खुशी के आसार नहीं थे। अगले रोज राजेश ने दफ्तर जाकर फिर मीनाक्षी का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि मीनाक्षी गुस्से में बिफरी हुई दनदनाती हुई आ गई। उसने आते ही दफ्तर का दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठकर बड़ी देर अपने आप पर काबू

खेल रही हो। तो दोस्तों ये थी आज की गीतों भरी कहानी आग और धुआं, तहरीर बलराज बख्शी। कैसी लगी आज आपको हमारी ये कहानी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अब अपने मेजबान रशीद निजामी को दीजिए इजाजत, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।

0: سمین، آپ نے لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی میں آنند بخشی کے بول سنے، فلم کا نام راجپوت اور آواز محمد رفیع کی۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ شب کے 11 بجنے والے ہیں۔ اب آکاشوانی دلی سے سماچار نشر ہوں گے۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष

0: अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile,

हेलो, आपकी फरमाइश बुजू रस जदाई बच प्रोग्राम सुबह गाहे छु तुई पेट दो बोजान सानी मजलिस हिंदिस आगाजस मज शब जित 5:30 मिनटन पेट पाया में सुबह लाइव मॉर्निंग शो सब्द तुंदिस खदमतस मज पेश दह मिनट पेट सती अफन शो मोमूल च नशरियात अलावो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफर शामिल उस 8 बजे तो 5:30 मिनटन पेट नशर सब्द हम सफर प्रोग्राम पगुक मौजू छु आलमी मलाइका अलैहिस्सलाम मुकर्रर छ मौलाना फयाज अहमद जुरू अम प्रोग्राम प्रोड्यूसर छ सलीम एजाज कपड़ा मकामी अखबार हिंद सुर्खी वातन तह तमाम सुबह 9 बजे कशर मौसुकी पे मबनी प्रोग्राम फुली वन बुजू 9 बजे तो 30 मिनटन पे सूफी सदा छु तु प्रेथ दो बोजान सुबह 10 बजे पग अकिस प्रोग्राम जिकिर सूफी शायर मोमिन साहबस मुतलिक तहरीर निशात अंसारी लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह मू तु प्रे दो बोजान सुबह साढ़े 10 लाइव इंटरेक्टिव शो पग अकिस मेहमानस दावत दिसमुत इवन सत लाइव इंटरेक्टिव शो बुजू तु 10 बजे तो 30 मिनटन पे इवन सत हम कलाम शाइस्ता बुखारी सूफियाना मौसीकी करन उमर फारूक बट तिंद सी पेश इन नश बुजू तु मकामी दुगा तो मकामी रिहावी वक्त रोज बिलतरतीब सुबह 10 बजे 30 मिनट तो दोहल 2 बजे तो 30 मिनट गमी बो बोजन पन प्रोग्राम शाम 5 मिनट पे शे प्रोग्राम मज पी एम आवास योजना मुतलिक जिकिर पेश करन जारिया फारूक अम अलाव प्रोग्राम मज कत बात तो शामिल उस बशीर अहमद डार पेश कर अमुक मौजू रुवांगन फसल बेमार निश बचाव शहरबिन तु प्रे दो बोजान शाम 7 बजे तो रस 8 बजे वक् प्रोग्राम वादी की आवाज समीन यह खुलासा पगह नशर सपदन वाले क्या खास प्रोग्राम वनकस बजे 10 बजे तो 13 मिनट तो ठीक 20 सेकंड अस दियो यह मजलिस बर्खास्त कर इजाजत पगह सुबह सपदों 6 बजे तो 30 मिनटन पे पगह प्रोग्राम है तुंदिस खदमतस मज दोबारा हाजिर ऐसी तो तमाम इजाजत तुह तो खुदायस हवाले जय हिंद।

0: Welcome to Market Mantra. How do you view the entire Sensex edging up 47 points to close at 77,660? Sounds good.
1: If you see the what you read just now, you use the word gap down opening.
0: Yes, yes.
1: Because of the last 2 days' event, especially in the West Asia, where we are seeing that resumption of a strike by both US as well as Iran, that is having some impact on the global economic, global stock market, and that is also reflected there. Fortunately, some of the blue chips, especially from the tech sectors, they showed good performance after good quarterly result. And that is why you are seeing that the market was almost flat with a rise of 47 points in Sensex and nearly 2 or 3 points in Nifty. It was a flat. Going by the two events of last 2 days, we were apprehending that there will be some further reduction in the Sensex as well.
0: Yeah, exactly.
1: The Nifty.
0: Yeah, so this is a bit of a surprise.
1: But because of this tech, blue chip, some of the blue chip techs gave some support to the market, and that is why we are seeing some improvement. But the problem is that we do not know what is going to happen, and the ceasefire which was announced seems to be over, as announced by both the, whether we talk about US or whether we talk about Iran, and that is going to have some impact on the market in this week. So of course, the Monday has started on slightly positive note, but for the next 4 or 5 days, we do not see much relief kind of thing. There will be more volatility and more it will be towards the downward risk.
0: And more anxiety because Strait of Hormuz stands
1: closed again. Of course, we do not know what is happening. Somebody is saying that it has closed down. Somebody is saying, no, the ships are still going on, but there are problems which are affecting the moods or the sentiment in the market.
2: तो आपको क्या लगता है शशि जी बाजार की आज की हालत देख के हालांकि आखिर में थोड़ा मामूली बढ़त दिखाई दी लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लगातार ये उथल ये संकेत यही है कि इसी तरह से आगे चलेगा
1: बिल्कुल देखिए आज अगर मैं 2-3 सेक्टर्स की बात करूं जहां पर हमने नतीजे का असर देखने को कह सकते हैं जैसा मैंने कहा कि तकनीकी कंपनियों के शेयरों में अच्छे सुधार आए वही विमानन बाजार की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें हमने गिरावट देखी क्योंकि पश्चिम एशिया में अगर उथल पुथल होता है तो उसका असर हवाई ईंधन के ऊपर पड़ेगा हवाई ईंधन के दाम के ऊपर पड़ेगा दूसरी बात यह है कि कई उड़ानें जो हैं वो दोबारा से रद्द होने की आशंका है तो इन सब के बीच में विमानन सेक्टर में हमने देखा विमानन क्षेत्र में हमने देखा कि थोड़ा सा मामला जो है वो बहुत ही थोड़ा नहीं बहुत ही कमजोर था लेकिन एक अच्छी वही बात जो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो हमें सुधार देखने को मिल रहा है वो तकनीकी क्षेत्र में मिल रहा है और इसके अलावा थोड़ा बहुत हम FMCG सेक्टर में भी जो है वो हम सुधार देख सकते हैं लेकिन ये पूरे वीक की बात करें पूरे सप्ताह की बात करें तो बहुत ज्यादा कोई सुधार की उम्मीद जो है वो हमें नहीं दिख रही है
0: Alright, now we're joined by Sitaraman from Mumbai. Yes, Sitaraman ji, please ask a question.
3: I tell you, I hear your program occasionally, but one thing I find that you are not prepared to take the responsibility when you give some views or some opinion. You listen. Hamara kuch zimmedari hai. Tumko jaisa marne ka maro.
0: All right, I think the voice was not too clear, but anyway, let's move on.
2: एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9% की गिरावट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सूचकांक बन गया बाजार की गिरावट रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार 20 मिनट तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.1% और जापान का निकेई 1.9% तक गिरा दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में लगभग 0.2% की तेजी दर्ज की गई ताइवान का ताइएक्स और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों ही सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहे शशि जी जो खास चीज हमारा ध्यान आकर्षित करती है अगर दक्षिण कोरिया की हम बात करें जहां पर इतनी तेज गिरावट हमें देखने को मिली मोटे तौर पर और बाजारों में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति एशिया में हमें नहीं दिखाई दे रही
1: दक्षिण कोरिया की बात का जिक्र करना यहाँ पे ज्यादा अहम होगा क्योंकि कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया में

0: एक या दो ऐसी कंपनियां थी जिनके शेयरों में काफी तेज उछाल आया था, और उसकी वजह से दक्षिण कोरिया के जो कहते हैं कि बाजार पूंजीकरण जो है वो काफी आगे हो गया था, और ये कहा गया कि दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों की स्थिति देखिए। लेकिन उस समय भी अगर हम लोग अगर उस बात को दोबारा याद करें तो उस समय हमने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो, या ऐसे बाजार हो, इसमें एक या दो या तीन कंपनियां, चार कंपनियां जो है वो बाजार को ऊंचा ले जा रही हैं।
1: जी
0: जबकि हमारे यहाँ जो बाजार में स्थिति है कि हम एक विविध बाजार हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और उन सभी क्षेत्रों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। तो अगर एक लंबे समय की प्रवृत्ति की बात करें तो वो दक्षिण कोरिया हो या फिर ताइवान की बात करें या ऐसे बाजारों की बात करें, शायद वहां देखने को नहीं मिलेगा, जबकि भारतीय बाजारों में हमें वो स्थिति देखने को मिलेगी, और वो बात आज काफी हद तक जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है।
1: हाँ, यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सोमवार है और हर एक सोमवार की तरह हम श्रोताओं के प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। श्रोताओं, आप हमसे फोन करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं इन नंबरों पर 2331-4444 और 2331-0481, और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें।
2: Shishir, knowing the markets at the moment, as we said, it rose by 47 points now, and still the markets are volatile. No thanks to the war situation and the geopolitical situation and the Strait of Hormuz and the energy threat of energy security. After seeing all this, is this the right time to invest if somebody wants to invest? What is your overall, how would you analyze? The newcomers should wait and watch, or somebody with a high risk appetite should plunge into the stock market? How would you explain that?
0: So you have mentioned various factors starting from war to crude oil, but one more factor needs to be added, and that is the monsoon, which has much wider impact, because almost our aggregate economy is depending upon this thing. So what I mean to say that at this moment, when any kind of investor who is say a beginning, who is a beginner or newcomer in the market, it would be better if we just wait for some more time, because the volatility is too much, uncertainty is at high level, and even if he wants to invest, the mutual fund route is much better. And mutual fund, not just in the equity one, I would say go on the diversified one. Some part in equity, some part in debt, some part in the hybrid. That will give some more comfort. Entering into the market at this point of time, my advice would be it's not the good time.
2: Don't put all your eggs in one basket, as they say. All right, we're now joined by Ramanathan from Chennai. Yes, sir, Ramanathan ji, please ask a question. Yeah.
3: Yes, good evening, Market Mundra.
2: Good evening, ji.
3: Yeah. See, I have two questions.
2: Yeah, sure.
3: One is, how is this dollar index calculated? And one more question is, with this inflation going up, can we see any interest rate hike, repo rate hikes?
0: The first question is about the dollar index. It is basically composition of six foreign currencies, and any kind of changes in those six currencies impact the dollar index. And dollar index gives basically indication about that what is happening in the dollar, what kind of a strength we are going to have. Coming to your second part of the second question, which is about the inflation and the interest rate. Basically, the 4% rate is something which is sometime it is giving an indication. Is it a time for rate hike? I think we will have to wait for at least two more months. So that is why the number which we have seen today is more than 4%. That means the median rate of targeted inflation rate has been breached, that 4%, after January 2025. Now the expectation is that for the next 2 or 3 months, it could be in the range-bound manner, but depends upon that how the monsoon covers entire nation and what is the swing situation. So we are expecting that in the second half of the fiscal, there may be a rate hike, but that will depends upon that what kind of inflation we see in the month of August or September.
1: और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता के शुक्ला लाइन पे हैं। शुक्ला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
4: नमस्कार सभी को। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आज अभी भी गोल्ड का रेट इंग्लैंड में तय होता है?

0: है कभी, और गोल्ड और डॉलर में क्या संबंध है?
1: देखिए, गोल्ड के रेट की जहां तक हम लोग बात करें, कॉमेक्स के आधार पर जो है वो रेट लिया जाता है। और रहा सवाल कि डॉलर और उसके मुकाबले में क्या, देखिए डॉलर मजबूत होता है तो उसका जो है वो नकारात्मक असर हमें सोने को में देखने को मिलता है, और डॉलर कमजोर होता है तो सोने के भाव में तेजी आती है।
2: और रविना ज्वाइन बाय विशाल फ्रॉम दिल्ली। जी विशाल जी, सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, 3-4 दिन से आईटी सेक्टर थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कोई आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं?
1: देखिए, आईटी सेक्टर में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बीते दिनों जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अच्छे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि शायद आने वाले दिन भी अच्छे रहेंगे। उनका जो कहते हैं ना कि आउटलुक भी जो वो बता रहे हैं उसमें थोड़ी स्थिति बेहतर है। और अगर आप याद करिए तो जो हमारी देश की एक बड़ी आईटी कंपनी, उनके चेयरमैन साहब ने ये भी बात कही थी कि जो भी हम एआई की बात करते हैं, एआई के लिए भी हमें एचआई और जो ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से एनविद्या के अगर आप सीईओ की बात को याद करें तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं उनकी जरूरत बनी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके वजह से आप आईटी कंपनियों में तेजी देख रहे हैं। अब प्रश्न ये कि आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी, देखिए ये सब कुछ निर्भर करता है कि ये लड़ाई का जो माहौल है उसमें किस तरीके से सुधार होता है। अगर वो सुधार होता है, मांग बढ़ेगी और उस मांग का फायदा जो है वो आईटी कंपनियों को देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा ये जो 1-2 महीने है, थोड़े से अभी अनिश्चितता के समय में है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लड़ाई अभी दोबारा शुरू हुई है वो लंबा ना खींचे, तो इसका फायदा जो है हमें आईटी सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकता है।
2: और वी जॉइंड बाय तरुण फ्रॉम गुरुग्राम। जी तरुण जी, सवाल पूछिए अपना। जी
4: गुड इवनिंग, माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर टेक ऑन द डिफेंस स्टॉक इवन द करंट सिचुएशन? And second part of the question is specifically with respect to Kochi shipyard company's price.
1: Tarun, as a matter of policy, we cannot discuss name of any company. Any specific stock cannot be mentioned, but sector you have asked about the defense sector. Of course, defense sector is doing well, and at this moment, I feel that defense sector will have a potential to give a better return.
2: All right, moving on. HCL Technologies today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June. The company's revenue increased by 13.9% on an annual basis to 34,579. The company's revenue grew by 1.76% on sequential basis. The company's net profit rose by 3% to 4,624 crore rupees on quarterly basis. The country's third largest IT services company also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. And,
5: और चलते हैं अगली खबर की ओर। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। इस तरह इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई। शिशिर, बहुत ही अच्छी खबर है जिस तरह से हमारा निर्यात बढ़ा है।
1: बिल्कुल, देखिए निर्यात का बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन एक चीज और भी देखिए कि आयात भी बढ़ा है और जिसका असर जो है वो हमारे व्यापार घाटे पर देखने को मिला है। लेकिन अभी के समय में हमें आयात में ये भी देखना चाहिए कि आयात किस चीज का बढ़ा है। अगर कच्चे माल, मशीन, इन सब चीजों का आयात बढ़ रहा है तो वो बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आयात बढ़ने को लेकर के जब कभी भी हम चर्चा करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किन चीजों का आयात बढ़ा है

0: आयात में इस तरह के सामान हमें देखने को मिलते हैं तो उसको लेकर के हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसका असर एक सकारात्मक देखने
1: जी, जैसा आपने कहा शिव जी, अलग से हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वस्तुओं में और सेवाओं में दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयात में भी 26% की वृद्धि हुई।
2: एंड गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क बाय एक्सपेंडिंग इट्स बास्केट बाय आउटसोर्सिंग फ्रॉम आई मीन बोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
0: सर्टेनली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर कैपिटल गुड्स इन इंपोर्ट, मोर एंड मोर एपीआई इंपोर्ट्स आर देयर, दैट इज गुड फॉर अस। सो इंपोर्ट इज नॉट अ बैड वर्ड, द थिंग इज दैट व्हाट वी आर इंपोर्टिंग।
2: राइट।
1: और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे है। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
3: मेरा ना क्वेश्चन नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस।
1: जी
3: सर, मैंने ना 91 में सर जी 45,000 सर जी पोस्ट ऑफिस में लगाए थे, तो सर अब वो पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अपने पैसे निकाल लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है। तो सर

0: नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम NSS
1: जी।
0: सर मैंने ना 91 में सर जी 45,000 सर जी पोस्ट ऑफिस में लगाए थे, तो सर अब वो पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अपने पैसे निकाल लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है। तो सर मेरा सर से क्वेश्चन ये हैगा कि सर जब मैं पैसा निकालूँ क्या ये टैक्सेबल सर होगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा सर? और सर ये बजट में ना सर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, किसी ने मुझे बताया कि ये गवर्नमेंट बोला या आप निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, सर मैं सर की ओपिनियन जानना चाहता हूँ सर मैं।
2: देखिए नेशनल सेविंग स्कीम, अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या जिसको हम लोग NSC के नाम से जानते हैं, वो अब उस रूप में है। आप अगर पैसा निकालते हैं वो टैक्स ऑलरेडी कट गया है। इसका जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ETE, यानी कि जब आप पैसा लगाते हैं उस समय आपको एक निश्चित रकम तक कर में छूट मिलती है, उसके बाद जो उस पर ब्याज जोड़ता जाता है वहां पर टैक्स कटता है, और जब आप पैसा निकालते हैं तो ऑलरेडी चूंकि टैक्स कट चुका है तो वो आपके ऊपर वो एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है।
3: ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी, सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मार्केट अथॉरिटी सर, मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है, ना मार्केट से है ना फाइनेंस से है। मेरा सवाल सर ये कि हमारे यहाँ बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में सीवर लाइन डल रही है, सड़कें बन रही है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट अप टू द मार्क। ये बिकॉज ऑफ यू नो जो भी रीजन हो, L1 L2 के चक्कर में सबसे सस्ते को लिया जाता है और काम और सस्ता होता है, तो इसका क्या, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है?
3: Well, I think we can't take that question because we are limiting ourselves to anything which is related to the financial aspect of the country or the markets, right? So this is beyond our syllabus to be honest and to be precise. All right, let's move on with more news. India's retail inflation accelerated to 4.38% year on year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. The food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. According to the data, the increase in inflation in the previous month was mainly attributed to rising prices in personal care, social protection, restaurants and accommodation services, food and beverages and intoxicants. Your comment on this?
2: See, one factor is that there is a complete pass-through of petrol diesel price hike, and that is being reflected in the inflation number. The second is, of course, precious metal, whether we talk about silver jewelry or whether we talk about gold, diamond and platinum jewelry. In fact, silver jewelry, the inflation rate is 133%, which is not a small number.
3: Absolutely.
2: And the good thing is that the vegetable prices, I mean, especially when we talk about onion and potato, they are in the disinflation. That means they are in the negative territory. But one of the ingredient of our thali, which is ginger, adrak,
3: yes,
2: that is very costly. Jeera, that's a cummins, that is also very costly. So some of the food items are costly, some of the food products are costly. So we have the pass-through, then we have the precious metal and some of the food items. So combination of all those three have resulted in the 4.3% of the inflation for the month of June.
3: And we know that there is likely to be less monsoon, you know, as is being predicted by the IMD.
2: That's a bit of a worry. Yeah, that
3: right?
2: is a concern, and that is what we are expecting, that the inflation will be over 4% in the coming months also.
1: Aur hamare shrota Deepak humse jud chuke hain. Deepak ji namaskar, bataiye kya पूछना चाहते?
5: नमस्कार सर।
2: नमस्कार
1: जी, सवाल पूछो।
5: सर ये जैसे मार्केट में मैं ना पहले इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता था, निफ्टी और इन पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, तो ये गैप अप और गैप डाउन को जो मैकेनिज्म है ये मेरी समझ से बाहर है कि मतलब एक ही नाइट में सेंटीमेंट कैसे चेंज होता है। सुबह सुबह गैप अप होके, जैसे आज ही हुआ था गैप डाउन होकर, शाम तक गैप मतलब फिल हो गया था, तो इतनी जल्दी सेंटीमेंट कैसे चेंज होते हैं सर?
2: तकनीक में समय बहुत कम लगता है। तकनीक जो है वो सूचनाओं को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। तो जब आप कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि रात की घटनाएं, सुबह की घटनाएं असर करती हैं, लेकिन दोपहर के बाद अगर परिस्थितियां, मान लीजिए थोड़ी सी सकारात्मक खबरें आती हैं, कुछ क्षेत्र में अच्छी खबरें आती हैं, सरकार की तरफ से

0: खबरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका बदलाव देखने को मिलता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं इतना ही कहूँगा कि तकनीक की वजह से सूचनाओं का जो प्रवाह है जिसमें तेजी आई है उससे बाजार में भी जो है वो पल दो पल जिसको कहते हैं बदलाव देखने को मिलता है।
1: राइट Alright, let's talk about oil prices now. Well, global crude oil prices rose today after renewed military strikes between the United States and Iran reignited concerns over energy shipments through the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.4% up at $78.59 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% up at $73.89 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.3% lower at 2,20,140 rupees per kilogram a short while ago.
2: Aur multi commodity exchange mein August anubandh wala sona 1% ki giravat ke saath 1,42,066 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की गिरावट के साथ 2,19,823 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। शशि जी, आप क्या कहना चाहेंगे सोने के मूल्य के बारे में?
0: देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महंगाई दर में चांदी की महंगाई दर और सोने की महंगाई दर कितनी है, लेकिन हकीकत यह है कि दैनिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सोने और चांदी दोनों में जो है गिरावट देख रहे हैं और एक बहुत ही ऊंचे स्तर से गिरावट आई है क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हुआ है। तो वहां पर जो इतनी मजबूती आएगी उसका असर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह भी है कि जो वैश्विक अनिश्चितता का दौर था उसकी में कहा जाता था कि सोने के भाव बढ़ेंगे, लेकिन इस बार उल्टा रहा है। सोने में उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली है। उसकी एक वजह यह भी है कि डॉलर की स्थिति अगर अलग रही है तो उसका असर आपके सोने पर पड़ा है।
2: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शशि जी से कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नाउ द हेडलाइंस अगेन, थैंक यू शशि जी। वेल, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एजेस अप 47 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So from all of us here, goodbye.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

1974 में आई फिल्म रजनीगंधा का आपने ये गीत सुना, सलील चौधरी का संगीत और मुकेश की आवाज, और इस गीत को लिखा योगेश ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और मैं हूं आपके साथ ऋतिका।

0: तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। राखी आ चुकी है निशिगंधा कार्यक्रम लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय

0: ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अम्बरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। वियतनाम के फूक्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 6 अभी लापता हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा शोध, नवाचार और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with U.S. Trade Representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had a productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at 73.5

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

थक गए हैं? अरे जनाब, अभी तो सोमवार बीता है, पूरा हफ्ता बाकी है। जोश बनाए रखिए, मुस्कान सजाए रखिए, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो सफर का आखिर तक साथ निभाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन

के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़, काम का दबाव और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां चेहरे की मुस्कान कहीं छिपा देती हैं। लेकिन यकीन मानिए, मुस्कुराहट से खूबसूरत कोई गहना नहीं होता। तो अगर आज कोई आपसे कह दे मुस्कुराइए ना, तो बुरा मत मानिए, शायद वो आपकी मुस्कान की अहमियत जानता हो। यूं ही किसी शायर ने नहीं कहा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा हर दिल को अपना बना लेता है।

0: गोलमाल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया आरडी बर्मन ने। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो कभी ठहरती नहीं, हर पल आता है, अपनी कोई याद, कोई एहसास, कोई मुस्कान दे जाता है और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इसीलिए जो लम्हा इस वक्त आपकी मुट्ठी में है उसे खुलकर जी लीजिए। अपनों के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी उम्र भर की याद बन सकता है।
1: उठे सबके कदम, देखो रंग।

वक्त हुआ है 12:34 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जुर्माना फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर दिल में उत्साह हो और होठों पर कोई प्यारा सा गीत हो तो सफर भी आसान लगने लगता है। संगीत की यही खूबी है, ये थके हुए कदमों में भी नई ऊर्जा भर देता है, मुस्कुराने की वजह दे देता है और महफिल का रंग ही बदल देता है।

बिन फेरे हम तेरे फिल्म का गाना आपने सुना। रफी और उषा खन्ना की आवाज में असद भोपाली ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। दोस्ती का रिश्ता उन अनमोल रिश्तों में से एक है जिसे न किसी नाम की जरूरत होती है और न किसी शर्त की, बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा विश्वास और साथ निभाने का वादा। यही इसे उम्र भर के लिए खास बना देता है। जिंदगी के सफर में ऐसे दोस्त मिल जाएं जो हर खुशी में मुस्कुराएं और हर मुश्किल में साथ खड़े रहें तो राहें आसान लगने लगती हैं।

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी यादें वक्त के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। वाकई जब कोई जुदा होता है तो दिल पर यादों के तीर चलते हैं। हर धड़कन जैसे किसी पुराने पुराने लम्हे को पुकारती है। हर खामोशी किसी अधूरी बात का एहसास दिलाती है। शायद इसी एहसास का नाम मोहब्बत भी है, जो जुदाई के बाद भी दिल से कभी जुदा नहीं होती।

बेताब फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 18 सेकंड। आप गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।

0: एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीरों को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। देश भर में वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 33 तस्करों को गिरफ्तार किया है। DRI ने इस अभियान में 440 संरक्षित और लुप्त प्राय वन्य जीवों को बचाया और करीब 15 किलोग्राम हाथी दांत तथा उससे बनी वस्तुएं जब्त की हैं। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 186 रन पर सिमट गई। क्रांति गौड़ को 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods, and rice.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

ताजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कुछ चेहरे तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई तस्वीर, कोई आईना या चंद लफ्ज पूरी तरह बयान नहीं कर पाते। उनकी मुस्कान की मासूमियत, उनकी नजरों की गहराई और उनकी मौजूदगी की रौनक सिर्फ महसूस की जा सकती है।

आरती फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई मिसाल ही नहीं मिलती। फूलों की नजाकत, चांद की चांदनी, सुबह की पहली किरण या बहार की ताजगी, सब कुछ कम पड़ जाता है जब दिल किसी की अदा, मासूमियत और हुस्न का कायल हो जाए, तो अल्फाज भी ठहर से जाते हैं।

दिल दिया दर्द लिया फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। मोहब्बत हर बार मंजिल तक पहुंचा दे ऐसा जरूरी नहीं, कभी यही इस एहसास इंसान को इतनी गहरी चोट दे जाता है कि जिन लफ्जों से कभी जिंदगी बसती थी वही लफ्ज अजनबी लगने लगते हैं। दिल टूटता है तो शिकायत किसी एक शख्स से नहीं रहती, बल्कि कभी कभी मोहब्बत का नाम भी दर्द का दूसरा नाम बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया वसंत देसाई ने। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। दर्द जब शब्दों का सहारा लेता है तो कुछ इस तरह की ही धुनें बनती हैं जो अमर हो जाती हैं। एक टूटा हुआ दिल, बिखरे हुए अरमान और बिछड़ने की कसक।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इश्क जब अपनी हदें पार कर जाए तो होश और बेखुदी का फर्क मिट जाता है, फिर दिल बस उसी का नाम लेता है जिसकी याद हर सांस में बसी हो।

आह फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। इंतजार का हर पल उम्मीद से भरा होता है। जब दिल किसी अपने को पुकारता है तो उसकी सदा में दर्द भी होता है और मिलने की आस भी। आंसू बहते बहते जब गम भी थक जाए तब दिल से यही गुजारिश होती है, आ जा रे अब मेरा दिल पुकारा।

प्यासा फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कभी कभी मोहब्बत को इजहार के लिए बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए होते, बस एक नजर, एक मुस्कान या दो अनकहे शब्द और दिल अपनी कहानी खुद लिखने लगता है।

कील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद अली ने। मोहब्बत का सफर जितना हसीन होता है उतना ही नाजुक भी। यहाँ हर मोड़ पर उम्मीदें हैं, सपने हैं, तो कभी कभी इम्तिहान भी। इसलिए इस राह पर कदम बढ़ाइए तो दिल संभाल कर, क्योंकि एक छोटी सी आहट भी उम्र भर की याद बन सकती है।

वक्त हुआ है 1:53 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: देखता।
1: मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा और निराधार तथा भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें

0: चांद का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इनमें सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और मैला ढोने वाले शामिल हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निजी विद्यालयों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से राज्य के सभी निजी विद्यालयों की फीस पर सख्त निगरानी होगी। नए प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक शैक्षणिक वर्ष में वार्षिक फीस और अन्य शुल्क में 5% से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 और अंडर 19 में 8-8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post, the president said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the vice president prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each of deceased and 50,000 rupees for the injured. The decomposed bodies of the 9 fishermen who lost their lives due to

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। संगीत रातों को सुरमई बना देता है और सुरमई रातें दिल के एहसासों को और भी गहरा कर देती हैं।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, ये रातें आते जाते कहती हैं ढेर सारी कहानियां। चांद उसकी जुबान बन जाता है और सितारे उसके अल्फाज। बस सुनने वाला दिल चाहिए, हर खामोशी में एक दास्तान मिल जाती है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कभी कभी किसी की आंखों में ऐसे राज छिपे होते हैं जो लफ्जों से बयान नहीं हो पाते, बस एक नजर दिल तक उतर जाती है और एहसासों की खुशबू देर तक साथ रहती है।

0: पिया का घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का

पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 12 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दो रास्ते फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार शायद कभी लिख मगर इतना जरूर लिखा था कि तेरा साथ तेरी यादें और तेरा एहसास उम्र भर मेरे दिल के किसी कोने में महफूज रहेंगे। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते लेकिन उनकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती।

आपकी कसम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत दिया और इसे लिखा आनंद बख्शी ने। जिंदगी के सफर में कुछ मकाम ऐसे भी आते हैं जो एक बार गुजर जाएं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते। वक्त आगे बढ़ जाता है लेकिन उन लम्हों की महक, उसकी कसक और उनकी यादें उम्र भर दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं।

थोड़ी सी बेवफाई। फिल्म से आपने ये गाना सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। शायद यही सच्चे रिश्तों की पहचान है, जहां शिकायतें भी मोहब्बत से की जाती हैं और खामोशियां भी वफादारी निभाती हैं।

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 17 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने नज्म सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। इसे कैफी आजमी ने लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान के वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। विजेताओं और उनके कार्यों का प्रदर्शन वेव्स 2027 के दौरान आयोजित क्रिएटोस्फेयर में किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता

आता के रविंद्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर टाइम हुआ है रात के 3:10 और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही और मैं हूं पंकज आपके साथ और दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। अभी के लिए शुरुआत करते हैं वारिस मूवी के इस गाने के साथ।

के नाम प्यासी आंखें किशोर दा और आशा जी की रोमांटिक आवाज में ये गाना था। उषा खन्ना का म्यूजिक और इंदिवर के बोलते 14 जुलाई की इस आधी रात में मेरे यानी पंकज के साथ हमराही शो सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और इस पूरे घंटे हम सुनेंगे पुराने डुएट्स गाने। इन गानों को सुनकर रहना, मन की थकान मिट जाती है क्योंकि मन खुश तो सब खुश। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूं। अभी के लिए सुनिए हीरो फिल्म का गाना मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, और फिर मैं मिलता हूं आपसे इन गानों के बाद।

किशोर कुमार और आशा जी की आपके लिए गाते हुए फ्रॉम द मूवी ये वादा रहा। आर डी बर्मन का म्यूजिक और गुलशन बावरा के बोल थे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ। शो का नाम है हमराही। और पता है, दिल के सुकून को ना हर हाल में बचाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये खो जाए तो दुनिया की हर महफिल बेरंग लगती है। और प्यार और रिश्ते नातों में तो ये बात और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि रिश्ते बिगड़ने पर ना सुकून खो जाता है। मैं हूं पंकज आपके साथ। और एक चीज़ पता है, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि पसंद का रिश्ता अगर हमारी ज़िंदगी में है, खिली हुई चांदनी जैसा हो जाता है। यकीन मानिए, एक पसंदीदा इंसान आपकी ज़िंदगी में है ना, तो वो हज़ारों लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। वो इतनी खुशी आपको दे देगा कि फिर ऐसा लगेगा, यार जब इतना एक बंदा मेरे पास है तो मुझे हज़ारों की क्या ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो सच में बहुत अच्छा नसीब है आपका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बात है ना, आप अच्छे से मान लीजिए कि जिंदगी जो है एक प्यारे से रिश्ते के बिना चलानी बहुत मुश्किल है, इसलिए रिश्ते कमाइए। पैसे तो खैर हम सब कमा ही रहे हैं, लेकिन रिश्ते अगर अच्छे हो,

एक ही रिश्ता अगर अच्छा हो तो वो सारी खुशियों की वजह बन सकता है। बाकी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अब हमराही शो का समय जो है वो पूरा होने वाला है। सुबह 4 बजे से हिंदी और इंग्लिश में आप समाचार सुनेंगे और फिर सुबह 4:10 पर अगला शो होगा अरुणिमा। मैं पंकज आपके साथ फिर से उसी शो में मिलूंगा। तो अभी इन गानों का मजा लेते रहिए और गानों की बीट्स पर झूमते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविंद्र सदन में दिव्य कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम। अरुणिमा और मैं पंकज हूँ आपके साथ। तो इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूँ और अभी शुरुआत करते हैं इस गाने से। जहरीला इंसान फिल्म का नाम है और किशोर कुमार की आवाज़ है।

अमृता जी और नितिन मुकेश की आवाज में मेरी जंग फिल्म से ये गाना था। इस मूवी के लिए नूतन जी को और अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और बिल्कुल सही मिला था। अरुणिमा शो में मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के फिल्म गोल्ड चैनल पर। जिंदगी एक जंग तो है ही, लेकिन इसे धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी के बलबूते पर जीता जा सकता है, क्योंकि सत्य ही हमेशा जीतता है। 14 जुलाई मंगलवार की छोटी सी सुबह हो चुकी है और इन दो गाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा और कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस यहीं स्टूडियो की कुर्सी पे बैठकर आपके साथ गाने सुन रहा हूँ। आप उधर गाने सुनिए, मैं इधर गाने सुनता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाना जो है वो एक तरह से आई ओपनर का काम करता है, क्योंकि हमें मिले हुए पदार्थों का जो है अहंकार हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि बस ये चीज़ जो है हमारे पास है और हम ही इसके मालिक हैं। लेकिन फिर उसके बाद याद आता है कि ये सब तो एक दिन यहीं रह जाएगा। इंसान का शरीर जो है वो पंच तत्व में जाता है और रह जाती हैं सिर्फ यादें। हमारे कर्म ऐसे हों कि कोई हमें याद करे ना तो प्यार से याद करे और हमारे बारे में अच्छा बोले, कोई आपके जाने पर दुखी ना हो, मतलब कि कोई खुश ना हो कि नहीं भाई वो अच्छा हुआ वो चले गए। नहीं नहीं होना तो ये चाहिए कि लोग आपके बारे में अच्छा बोलें और ये कहें कि हाँ दुख तो हुआ वो गए हैं लेकिन जहाँ भी हो खुश रहें। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं हूँ पंकज आपके साथ। ज़िंदगी में खुशियाँ मिले ना तो उन्हें ज़रूर बांटिए, क्योंकि

0: सुबह के 4:41 हो चुके हैं और गाइड मूवी का ये गाना लता जी की आवाज में था, एसडी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के बोल थे। ये मूवी हमने देखी ही है, लेकिन बार बार इस फिल्म को देखने पर पता है जीवन के कई सूत्र हमें पता चलते हैं। एक सूत्र तो यही है कि जिंदगी में सुख और दुख जो है वो भोगने ही पड़ते हैं और चाहे जो हो। लेकिन न्यूज़ में कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो दुखों से हार जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि जिंदगी की जंग को जो है हम धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से जीत सकते हैं। बुरा समय अच्छा समय अपने पीछे छुपाकर लाता ही है और वो जो बुरा समय होता है वो एक तरह से हमारी परीक्षा होती है। चुपचाप सहकर परेशानियों को पार पाने दीजिए और फिर खुशियों का सूरज सामने चमकता दिखेगा। अरुणिमा सुनते रहिए, मैं पंकज सिर्फ आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: संग रहे ना को फिर दुख को अपना

ये जुलाई बारिश का मौसम है और घर से अगर आप बाहर जाएं तो छोटा छाता बैग में हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि धीरे धीरे सुबह जो है वो तेज़ हो रही है। और अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा तो मुझे सामने जो सड़कें हैं ना वो गीली गीली नज़र आई है। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि बारिश हुई है, और वैसे भी छोटी छोटी बूंदों का मुझे कुछ दिख रहा है, तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि बारिश अभी दिल्ली में हुई है। खैर, अगले शो भोर सुहानी में मैं पंकज आपसे मिलूंगा, और अभी के लिए अरुणिमा शो के ये बचे हुए गाने सुनिए। फिर सुबह 5 बजे आप हिंदी और अंग्रेजी में न्यूज सुनेंगे, और उसके बाद फिर 5:10 पर मैं पंकज भोर सुहानी में आपके लिए और गाने लेकर आऊंगा। तो आप ऐसे गाने सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, गानों का मजा लेते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक शांति, सुरक्षा और समता मूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का शांति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 शांति मिशनों में करीब 3 लाख शांति सैनिक भेज चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 मिशनों में 4,300 से अधिक भारतीय कर्मी तैनात हैं। उन्होंने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज जल डमरू मध्य से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका आज से हॉर्मूज जल डमरू मध्य में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करेगा। साथ ही ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीका के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अमरीकी सेना को मदद देने वाले किसी भी देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर लागू करने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। 15 भारतीय पर्यटकों के शव स्वदेश लाए गए हैं। इन भारतीय पर्यटकों की वियतनाम के फुकवॉक द्वीप पर स्पीड बोट की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई पहुंचे। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अभी भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो। दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं और रामलखन फिल्म के इस गाने के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं।

बीत गया वो एरा जब ऐसे गाने बनते थे सुनकर ही मतलब मजा आ जाता है। बेटा फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज थी, आनंद मिलिंद का म्यूजिक और समीर के लिरिक्स थे। और बहुत ही हसीन सुबह हो गई है, मतलब उससे भी ज्यादा तो अच्छा मौसम हो गया, थोड़ी सी बारिश हो गई है दिल्ली में और मौसम तो सच में इतना प्यारा हो गया है, मतलब स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। 14 जुलाई का आज मंगलवार है और मंदिरों में आज स्पेशली भगवान के दर्शनों की भीड़ होती है और दिल्ली में भी बहुत फेमस टेंपल्स हैं और ट्यूसडे को भी मतलब काफ़ी भीड़ लगती है मंदिरों में, यानी पूरी रौनक। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की जो है वो बात सबसे अलग है, यानी फुल ऑफ लाइफ। अब ये शहर है ही ऐसा। वैसे हाँ, बारिश हो चुकी है थोड़ी सी और बारिश का मौसम है और बाकी बहुत अच्छा मौसम है और आज मंगलवार है, बहुत सारे लोगों को अपने ऑफिस के लिए दुकान के लिए निकलना होगा, तो आप बाहर निकलें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास जरूर हो ताकि अगर बीच में बारिश आ जाए तो आप भीगे नहीं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूं आपके साथ, शो का नाम है भोर सुहानी। सुबह के 5:23, इन दो गाने के बाद आपसे फिर मिलता हूं।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः